पावे। चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे आरे आयत। देग तेग फाटवे वेद की पैज, पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोलबाले।

हर हर प्रभु कृपा दाता।

पौड़ी कपड़ रुख सुहावना।

स्वीकार कराए सी सौ सवक सेवा कृष्ण हुक्म बनाए सी हुक्म मने होवे प्रवान तक कसने का महल पाए सी कसने पावे सो करे मलो चलिया सो फल पाए सी तादर के पैदा जाए सी तादर के पैदा जाए सी।

उन्नत सुन रहे सी सुफियाना कलाम 103.6 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी दा ए अमृतसर केंद्र तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस तीन दी पंजाबी सेवा साडी स्टूडियो दे कडे मुताबिक इस वेले 6:29 बजे 40 सेकंड हुई ने साडे अगले ऐलान दा इंतजार करो।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 किलोहर्ट से तंहिं खां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डिफरेंट डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, तफ़सील कुझु नज़र आहिनि। थोरी देरि में तव्हां हमेशा भगत कोरम साहब जन जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसरो पेश कंदो ऐं जवान लोक संगीत प्रोग्राम तहत मुंहिंजा छंग

रोहत कलाम साहब जी मिठड़े आवाज में कलाम गिरी आकाशवाणी की सिंधी सर्विस आए यार पेश है तफसरो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मुंबई में मंगल डिहारे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो मुहूर्त कर भारत के फिनटेक यात्रा के उन सभी के माली तौर शुमार कर ए तकनीकी तब्दीली जो एक अहम ड्राइवर कर सको। इन अलावा इंदड़ पीढ़ी की इनोवेशन साइबर सुरक्षा ए ग्राहकों के बचाव डेण के सुधारन से जोर दिनों। फिनटेक शिल्पकार अगवान पर्डे भारत का बाहर पर्डे में शिल्पकार के खिताब कदे श्री मोदी चाहिए तो भारत जो वधंदड़ फिनटेक इकोसिस्टम जैसे हथी मिली है इनोवेशन नौजवान की हिस्सेदारी से इन अलावा जोखिम खड़ने की कोशिश से सो मुल्क के एक विकसित भारत यात्रा के अकीदे के पदरो कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के माली रिसेलेंस आलमी बेबकाई मंझ वधंदड़ भारत के माली कुवत के रोशनी में आणंदे चाहिए तो तकरार व्यापारी छिकताण ए तवानाई दबाव इन अलावा कमोडिटी सप्लाई चेन्स में रुकना जे इन सब ललकार के बावजूद भी भारत की 7.8% की माली वाद अप्रैल जून टन महीन दौरान बुधाए थी कि भारत तरक्की की राह से हली रो है जैसा आलम के भारत में एक नो अकीदो चेजे भरोसो मिली रो है। प्रधानमंत्री भारत के माली हासिलात के रोशनी में आनंदी बुधाया तो ही जापान की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारत के सॉवरन रेटिंग के बधाए कर ए कैटेगरी से आंदो है सो भी टन ढाकन का तेमा पतो तो पे कि भारत में अडावती सुधार अची रहा है माइक्रो इकोनॉमिक दायमत अची वही है तो सुधारा तेज रफ्तार से अगत हली रहा भारत के फिनटेक सुभाधी कहानी में प्रधानमंत्री यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस सिस्टम के रोशनी में आने चाहिए तो मुल्क की डिजिटल माली यात्रा है तेजी गाल यूपीआई बिना अधूरी रह चवी चाहिए तो इन प्लेटफॉर्म यूपीआई प्लेटफॉर्म लखे मानों की जिंदगी के तमाम सवलो बनाया हुआ है बस कुछ ही सेकेंड में एक हंध का बे हंध पैसा मोकलिया था वन इन तरह यो सिरिश्तो जो कि रस्मी बैंकिंग सिरिश्ते का डाकन का वी बाहर रहा है सो हमें भारत के फिनटेक तरक्की जो एक अहम जखीरो पो है। प्रधानमंत्री चाहिए तो फकत अगस्त महीने में 24 बिलियन ट्रांजेक्शन यूपीआई ट्रांजेक्शन थी हवाल दिनों फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रन के हवाले जो जैसे चाहिए तो यूपीआई को महज एक टेक्नोलॉजी कान्ने पर एक सभ्यता की तब्दीली है। इन वक्त यूपीआई 11 मुल्क में हली रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जोर दींदे चाहिए तो इंदड़ फेस में भारत के डिजिटल पेमेंट सिरिश्ते के बेन डेही पेमेंट नेटवर्क में शुमार करने की जरूरत है बेन मुल्क में पण आण की घुर्ज है इनसा उन मुल्क में मजबूत पेमेंट सिस्टम आणो पवंदो जिते जजी तादाद में भारतीय रहन था या जिते व्यापार कन था तो जो सदन रेमिटेंस खर्च में कटौती अची वे वो जल्दी पैसो सदन भारतीय परिवार वट घट वक्त के अंदर पहुंची वो भारत के फिनटेक इंडस्ट्री के सद दिनों तो वो पैं आलमी दर्जा तैयार कन प्रोटोकॉल्स तैयार कन बनस्पत पढ़े पेमेंट स्टैंडर्ड से दारोमदार रखने जे उनसे तो भारत की कोत जै उन मोड़ से पहुंची वही है जिते मुल्क पैंजा कायदा पैंजो सिरिश्तो आलमी माली सिरिश्ते में तैयार कर सके तो। श्री मोदी चाहिए तो भारत जो फिनटेक सेक्टर के हाँ डिजिटल पेमेंट्स का अगत बढ़ान घुर्ज तैमें ओधर वीमो बचत सीड़प ए पेंशन शुण डेण घुर्जन और फिनटेक सेवा के सदनों तो समाज में जो नंढा व्यापारी या थोड़ा पुठते पल तिनखे पिण समय माली तौर से शुमार किया वे इन ऐसे में प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि स्कीम के रोशनी में आंदो जैमें रस्मी क्रेडिट सिस्टम है जो तमाम ही नन्न नन्न व्यापार के दिनों इन सरकार चाहिए तो पीएम स्वनिधि स्कीम के साल 2030 तधाया वो है जैसा नन्न व्यापार के रस्मी ओधर जो लंघ मिली पव दे प्रधानमंत्री बुधा तो एजेंटिक एआई टोकनाइजेशन ए क्वांटम कंप्यूटिंग से पिण कम थे घुर्जे छो ये असाजे माली क्षेत्र में नवा वजह मैसर कराइंदा।
पंज तकरीर के पूरो कंदे प्रधानमंत्री फिनटेक हुनर के सॾनो त उहे उसूल तयार कनि जेके भारत जे डिजिटल यात्रा खे वसी समत ते वठी वञनि। तंहिं में सलामती ज़रूरी आहे ऐं अवाम जो भरोसो लाज़मी आहे। तव्हां तबसरो ॿुधी रहिया हुआ।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: पेश आहे लोकगीत में प्रोग्राम। अॼु अवां लोक संगीत प्रोग्राम तहत भगत जसम ॿुधंदा। भगत पेश कंदड़ आहिनि भगत छमूमल।

जिसम में तवां भगत छांगमल खां भगत बुझाई आकाशवाणी जी सिंधी सरसा है लोकेशन खास खास खबरों मर्कज़ी काबीना 8 रेलवे जे मल्टी ट्रैकिंग कमन के मंजूरी डिनी है जिनकी लागत थींदी अंदाजन 20,800 करोड़ रुपया इनके नवन परगणन में अमल में आंदो वेंदो जैसा गांडापो अना वधिक वधंदो भारत श्रीलंका सूझबूझ के चिट्ठन से सही कई है जैसा L-70 गन्स ए बचा तावन के वधिक अपडेट कर वेंदो कोलंबो दलासो डनो आए तो संदस जमीन के नई दिल्ली खिलाफ कदें भी कतब को आंदो वेंदो हाथी बागिन पारा सऊदी अरेबिया मथा थियल हमलन जी भारत सख्त निंदा कई है ये हमला बब एल मदीब स्ट्रेट में नेविगेशन जे आजादी के ललकारे रहा है अमेरिका ईरान तकरार तेज रफ्तार ते वधीक वधी वियो आए वही दुनिया एक बेजे मथा एक बेजे फौजी निशानन ए तजारती शिपिंग मथा ताजा हमला कर रहे हैं अहमदाबाद में हलंदड़ वर्ल्ड आर्करी पैरा सीरीज में भारत 15 बिला खटे हैं तेमें 4 सोने का बिला है

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। उहो तव्हां सां गॾिजाणी थींदी सुभाणे सुबुह जो, यानी कि भारतीय वक़्त मुताबिक़ 6:30 ताईं ॾींदा इजाज़त सदाईंदड़।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सरकार ने 20,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रमुख मार्गों पर लाइन क्षमता बढ़ाना, परिचालन दक्षता में सुधार करना और भीड़भाड़ कम करना है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 10,783 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों को कवर करेंगी। इसके साथ ही मौजूदा रेलवे नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर का विस्तार होगा। लगभग 1,021 करोड़ रुपए की लागत वाली अन्य 5 परियोजनाएं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों को कवर करेगी। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि सरकार ने लगभग 11,000 किलोमीटर लंबे सभी 7 उच्च घनत्व वाले रेलवे कॉरिडोर को चौगुना करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं पर मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि होगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल

आयरलैंड सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम स्किल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी पहल के अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। यह अभियान निगम के सभी 12 जोन में चलाया जा रहा है। MCD ने कल 34 ध्वस्त करने संबंधी कार्रवाई की। इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गई, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्त करने संबंधी आदेश पारित किए गए। मंगलवार को भी MCD ने कार्रवाई करते हुए 17 संपत्तियों को ध्वस्त किया और 5 अन्य संपत्तियों को सील किया था। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि उनकी इस यात्रा के दौरान सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ चल रहे सहयोग की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही विकास और सामुदायिक पहलों पर सहयोग की संभावनाओं का भी पता चलेगा। आगा खान विकास नेटवर्क के अध्यक्ष प्रिंस रहीम आगा खान उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के निमंत्रण पर इस महीने की 15 तारीख तक भारत दौरे पर हैं। केरलम में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज वर्षा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे पिछले 3 दिनों से पड़ रहा भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। शुक्रवार और शनिवार के लिए 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ने आज से कल सुबह तक तिरुवनंतपुरम जिले के तटीय इलाकों में ऊंची लहरों और समुद्र के कटाव को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिका ओपन टेनिस में अमेरिका के बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आनंद संगीत के कार्यक्रम में अभी आप आनंद उठा रहे थे करण किशोर मिश्रा द्वारा गाए भजनों का। आपके साथ संगत कर रहे थे सितार पर अकील अहमद, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना, तबले पर ऋतु मिश्रा और हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। 7:30 और पूरे 40 सेकेंड हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

दिया सुप्रभात दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट मॉर्निंग शो और मैं हूँ आपकी आज की रेडियो दोस्त एंड होस्ट अर्चना। स्वागत करते हैं आप सभी श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम में। दोस्तों सुबह का समय है, चाय की प्याली है और एक नया दिन हमारे सामने खड़ा है, लेकिन आज जरा अपने दिन की शुरुआत करने से पहले खुद को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। जी हाँ, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि घर से निकलने के बाद दो कदम चलकर अचानक लगता हो कि अरे भाई गैस बंद की थी कि नहीं, ये सोचा है कभी? फिर वापस जाकर देखते हैं तो गैस बंद होती है। लेकिन देखिए इससे कैसे पता चलता है ना कि आप कितने सतर्क है अपनी सेफ्टी को लेके, अपनी सिक्योरिटी को लेके और गैस को लेके, क्योंकि गैस अगर बंद नहीं होगी ना दोस्त, पूरे दिन आप बाहर रहेंगे और वो गैस चलती रहेगी और बहुत बड़ा वाला ना नुकसान हो जाएगा। या फिर कभी ऐसे भी हुआ है कि मोबाइल हाथ में लेकर 5 मिनट तक मोबाइल को ही ढूंढते रहे हो, जस्ट लाइक दैट कि चश्मा सर पे लगा हुआ है और घर में पूरी जगह आप ढूंढ रहे कि अरे भाई मेरा चश्मा कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है। तो ऐसा होता है ना, तो बस आज हम ना कुछ ऐसी ही आदतों के बारे में बात करेंगे।

जी सच ही कहा जाता है कि कुछ कुछ आदतें ऐसी होती है जिससे आपका दिन वाकई में गजब हो जाता है, और इस गजब दिन के साथ अपना पूरा दिन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चीजें है ना जो थोड़ी सी मैसअप हो जाती हैं और उन्हें सॉर्ट आउट करने के चक्कर में लाइफ की तो बस लग जाती है।

दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी तो नहीं, खैर अक्सर ऐसा होता है कि हम सुबह सो रहे होते हैं और हमारा अलार्म बजता है और हम सोचते हैं यार बस पांच मिनट और सो जाए, उसके बाद आराम करूंगा या फिर आराम से उठूंगा, ऐसा हम अक्सर सोचते हैं। लेकिन जब आंख खुलती है ना दोस्तों, वो जो पांच मिनट है ना, वो आधा घंटा, एक घंटा और कभी कभी तो दो घंटे में तब्दील हो चुका होता है। और जो आपका काम शुरू करने का वक्त होता है ना, वो ऑलमोस्ट निकलने के कगार पर होता है और आप अटक जाते हैं अपनी उस लाइफ में कि यार वो पांच मिनट अगर मैं उस वक्त उठ जाता या उठ जाती तो आज इतना लेट नहीं होता, हमारे जो काम है ना वक्त पर शुरू हो चुका होता।

इसलिए आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसी कितनी ही छोटी छोटी आदतें होती हैं जिनके बारे में हम किसी से बात नहीं करते, लेकिन यही छोटी आदतें ना हमारी पर्सनालिटी का एक मजेदार हिस्सा बन जाती हैं। एक छोटी सी बात कभी गौर किया है आपने कि कुछ लोग जब चाय पीने से पहले चाय की खुशबू लेते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं कि चाय में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ लोग किताब खोलकर पहले उसका पहला पन्ना सूंघते हैं। एक मतलब बहुत ही कहते हैं ना, कुछ कुछ लोगों की वियर्ड आदतें होती हैं, वियर्ड हैबिट्स होती हैं जिनके बारे में अभी हम बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये उन्हीं आदतों के में एक वियर्ड आदत है कि जैसे नई कोई बुक आती है या नई कॉपी आती है, बच्चे भी अक्सर आपने देखा होगा कि उसे फर्स्ट पेज को सूंघते हैं, उसकी खुशबू को महसूस करते हैं। कुछ लोग खाना खाने से पहले उसकी फोटो लेते हैं। ये तो आजकल का वैसे भी ना देखा जाए तो ट्रेंड हो चुका है कि अगर आप बाहर कहीं खाना खाने जा रहे हैं या घर में भी आपने कुछ अच्छा सा बनाया है ना, तो आप सबसे पहले उसकी फोटो खींच के अपने स्टेटस में डालेंगे और साथ में इमोजी डाल देंगे, एक टेस्ट वाली जो होती है ना, जिसमें से लाल टपक रही होती है, वैसी वाली इमोजी डाल देते हैं और लिख देते हैं यम फूड। और कुछ लोग कोई नया सामान खरीद कर उसका पैकेट खोलने में इतनी खुशी महसूस करते हैं कि सामान से ज्यादा ना पैकेजिंग की याद रहती है। यही तो है मजेदार, जो जिंदगी को और भी मजेदार बनाता है, मजेदार आदतें जो हमारी जिंदगी को और भी ज्यादा मजेदार बनाते हैं। क्या हो रहा है आज? हम सोचते हैं कि हमारी आदतें है ना बहुत छोटी हैं, लेकिन कई बार इन्हीं छोटी चीजों में हमारा असली स्वभाव छुपा होता है दोस्तों। जैसे कि आप हमें बताइए कि आपकी ऐसी कौन सी आदत है जिसे आपके घर वाले सबसे अच्छी तरह जानते हैं कि भाई ये बंदा अगर उठा है या जा रहा है तो ये काम जरूर करेगा, ये इसकी आदत में शुमार है। तो बस खैर आप हमें बता तो नहीं सकते, लेकिन हाँ हम आपसे बात करके आपको बता सकते हैं कि अक्सर लोगों में ऐसी कौन सी आदतें होती हैं, ऐसी कौन सी वियर्ड आदतें होती हैं जो दूसरों के लिए तो वियर्ड होती है बट उसके पर्सनालिटी में वो इंक्लूड होती है, वो जुड़ी हुई होती है उसकी पर्सनालिटी के साथ।

सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों पर गुड मॉर्निंग और आपके साथ हूँ मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। बात यहाँ चल रही है, गीत भी बहुत खूबसूरत चल रहे हैं, लेकिन बात यहाँ चल रही है ना वो ये कि ऐसी कौन सी आदतें जो आपके पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती हैं, बस उन्हीं के बारे में कुछ कुछ बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं आप अपने आज के शो में। दोस्तों पता है क्या होता है कि हमारी कई आदतें वो ऐसी होती हैं जो बचपन से हमारे साथ चलती आती है। बचपन में कोई अपना पसंदीदा खिलौना लेकर सोता था, कोई कहानी रोज सुनना चाहता था और कोई कहानी बगैर सुने सोना नहीं चाहता था। कोई स्कूल बैग रात में ही तैयार करता था तो कोई सुबह सुबह उठकर जल्दी करता था। वैसे ये आदत जो है ना वो आज भी मतलब होता है ना कि बचपन में तो बचपन से आप जब जवान हो जाते हैं बड़े हो जाते हैं तब तक आपके साथ रहती है, लेकिन वो जो स्कूल बैग है ना वो ऑफिस के बैग में तब्दील हो जाता है और आदत वही रहती है कि भाई रात को लगाना है या फिर अर्ली मॉर्निंग उठकर जल्दी जल्दी उठ के उसको सेट कर लेना है अपने बैग को, ऑफिस बैग हो चाहे स्कूल बैग। तो खैर होता ही है, बच्चों का होता है, लेकिन अगर आप बड़े हो गए तो आप उसको ऑफिस जा रहे हो तो उस बैग को रात को लगा सकते हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग में भागते भागते भागते भागते कहते हैं ना कि भाई ये सामान रह गया वो सामान रह गया उस बैग में डाल देते हैं। और जब उम्र बढ़ गई, स्कूल से कॉलेज गए, कॉलेज से नौकरी और जिंदगी आगे बढ़ती गई, लेकिन वो आदतें जो है ना वो हमारे साथ अभी तक रहती है। मतलब कहते हैं ना कि बस जब तक आप काम करते रहेंगे जीते रहेंगे तो वो आदतें आपके साथ हमेशा बनी रहेंगी। तो कुछ ऐसी ही आदतें होती हैं जो हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन कहते हैं कि शायद यही आदतें हमें हमारे पुराने वर्जन से भी जोड़े रखती है। वाकई में जो आपके बचपन की आदतें होती है ना, अगर आपके साथ जवानी में भी वो आदतें आपके साथ हैं तो आपको आपके बचपन से कभी भी दूर नहीं ले जाती हैं दोस्तों। वो हमेशा आपके आसपास रहता है, आपके करीब रहता है, आपके दिल में रहता है।

जी हाँ, कार्यक्रम चल रहा है गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और बात यहाँ चल रही है कुछ ऐसी आदतों की जो आपकी पर्सनालिटी के साथ ना जुड़ जाती है, और सामने वाला आपको देखते ही बोल देता है कि ये आया है ना तो जरूर ये काम जरूर करेगा, क्योंकि इसकी आदत में शुमार है ये आदत। जैसे कि कुछ लोग दरवाजा लॉक करने के बाद 2-3 बार हैंडल खींच खींच कर चेक करते हैं, और कई बार तो क्या होता है ना कि लोग लॉक्स जब लगाते हैं ना तो उसको भी खींच खींच कर चेक करते हैं कि वाकई में ठीक प्रकार से बंद हो गया है कि नहीं हो गया है। कुछ लोग सोने से पहले मोबाइल की बैटरीज को चेक करते हैं कि भाई कितनी है। अच्छा, ये वाली आदत ना मुझ में भी है, मैं भी जब सोती हूँ ना उससे पहले अपने मोबाइल फोन की ना बैटरी फुल करके सोती हूँ। वो आदत भी कह सकते हैं उसको, और उसको ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए और अगर हमारा फोन बैटरी नहीं है उसमें, तो हम उस इमरजेंसी टाइम पर फोन को कैसे यूज कर पाएंगे। तो भाई मेरी तो ये आदत है कि अर्जेंसी को देखते हुए अपने फोन की बैटरी ना मैं हमेशा फुल रखती हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि 90% तो ऑलवेज रहे, हमेशा रहे, उससे कम होती तो मुझे टेंशन हो जाती है। ये एक बहुत अजीब सी आदत है मुझे, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। मेरे घर वाले भी कई बार कहते थे कि परेशान हो जाते, कहते कि अरे भाई फोन तो पूरी बैटरी पे है, 90% है, और इससे ज्यादा कितना चाहिए, 70% है और कितना चाहिए, इतना ही चलता है, बहुत रहेगा। लेकिन नहीं, मेरी आदत है मैं अपनी बैटरी को हमेशा फुल करके रखती हूँ, हमेशा अपने साथ बैटरी बैंक भी जो है ना वो कैरी करती हूँ, ताकि मुझे कहीं पे भी ना अपने फोन को सिर्फ इसलिए उसको छोड़ना ना पड़े कि भाई मेरे फोन में बैटरी नहीं थी, या किसी को डिसअपॉइंटमेंट ना हो मेरी तरफ से कि भाई मैंने कॉल नहीं किया जस्ट बिकॉज कि मेरे फोन की बैटरी नहीं थी। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कमरे में जाकर भूल जाते कि वहां आखिर वो गए क्यों थे। कई बार होता है जैसे हम किचन में जा रहे हैं, फ्रिज पानी पीने जा रहे हैं, लेकिन पानी नहीं पीकर आते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर बाद में सोचते हैं यार पानी क्यों नहीं पिया, मतलब प्यास लग रही है, पानी पीने गए थे, पानी क्यों नहीं पिया। होता है कई बार ऐसी आदतें हमारे साथ होती है और अक्सर हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा भी बन जाती है। तो अब इसी बात पर एक छोटी सी शायरी जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अजीब सी आदतों का भी अपना अंदाज होता है, अजीब सी आदतों का भी अपना अंदाज होता है, कभी हंसी कभी यादों का एहसास होता है, कभी चाय की चुस्की कभी पूरा कोई पुराना गीत, कभी चाय की चुस्की कभी कोई पुराना गीत, इन्हीं छोटी छोटी बातों में छुपी जिंदगी का एहसास होता है। वाकई में ये जो छोटी छोटी वियर्ड सी आदतें हैं ये हमें हमेशा अपनी जिंदगी के साथ और उसे अच्छे तरीके से जीने के लिए ना प्रेरित करती है।

जी हमारी जिंदगी में जो हमारी आदतें होती है ना, वो भी कुछ इसी तरीके से हमारी जिंदगी को संवारती भी है और कभी कभी ना हम मुश्किल में भी डाल देती है। कुछ लोगों को भूलने की भी आदत होती है, ये अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग कुछ चीजों को भूल जाते हैं और फिर मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो इस आदत को थोड़ा सा सुधारिए जनाब, ताकि आप हर मुश्किल से जो है ना अपने आप को बचा सकें और अपनी जिंदगी को खूब खुशी के साथ एंजॉय कर सकें।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग और आपके साथ हूं मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। फिलहाल वक्त हो चुका है 7:57 और ये हुए पूरे 25 सेकेंड। बात यहां चल रही है हमारी आदतों की, जो हमारे अक्सर जो है ना पर्सनालिटी को सूट करती है या पर्सनालिटी के साथ जुड़ जाती है। और हमें देखते ही लोग जो कहते हैं ना अक्सर कि भाई ये आए हैं, ये है तो ये जरूर होगा, ये काम जरूर करते हैं, इनकी एक ये आदत है कि ये तो जरूर ही करते हैं, ऐसी अक्सर बातें सुनने को मिलती हैं। तो भाई कुछ आदतें होती है अच्छी होती है जो दूसरों को खुशी देती है, और कुछ आदतें होती है जो थोड़ी सी वियर्ड होती है, दूसरों के लिए मुश्किल का सबब बन जाती है। तो बस ऐसी खट्टी मीठी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी छोटी छोटी आदतों के साथ आप यूं ही जो है अपने जीवन को चलाएं, अपने जीवन को जिए और खुशी के साथ जिए। और होपफुली आपको ये कार्यक्रम भी पसंद आया होगा, हमारे द्वारा यहां से पेशकश जो होती है गीतों की वो भी आपको पसंद आई होगी। और इसी तरीके से आप ना हमारे साथ जुड़े रहे और अपना प्यार जो है ना वो हम तक यूं ही लुटाते रहे, क्योंकि आपका जो जुड़ाव है हमारे साथ वही आपका प्यार है हमारे साथ। और इसी आशा के साथ है कि जल्दी आपसे फिर से मिलूंगी कुछ नई अच्छी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों के साथ, बहुत खूबसूरत गीतों के साथ। इसी आशा के साथ आपसे विदा चाहती हूँ मैं, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। और आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, बुजुर्गों का ख्याल रखिए, स्वच्छता रखिए। टेक केयर, बाय बाय।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 8 बजने को सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु नियमों का पालन न करने को लेकर ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
2: खड़गपुर से लेके ओडिशा में झारसुगड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर फोर्थ लाइन बन जाने से

0: बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 52 लाख की आबादी वाले लगभग 2100 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सबसे व्यस्त सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लाइन का बनाने का फैसला किया है। इनमें दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई शामिल है। इनमें से करीब 2000 किलोमीटर रेल मार्ग को पहले ही 4 लाइन का बनाया जा चुका है।
0: वापसी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पर आ जाएगी।
1: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और सूरत से वापी तक प्रारंभिक 100 किलोमीटर का खंड जल्द ही खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से विरासत और वन्यजीव पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा सकें। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं।
4: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।

0: सेल्फ ग्रुप्स।
1: लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा 4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर 30 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरेनी अमरसूर्या से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर हरेनी अमरसूर्या को श्रीलंका और भारत दोनों में महिलाओं के लिए एक आदर्श और महिला सशक्तिकरण तथा नारी शक्ति का प्रतीक बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 35 सदस्यीय बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट किया। ये कदम अमरीका और ईरान के बीच महीनों से जारी सैन्य टकराव और बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष सुहिन कौर पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार मुंबई।
1: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुंचा। एक रिपोर्ट।
3: 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। इनमें कीचड़ बचाव सूट, गैस डिटेक्टर, श्वास यंत्र, पोर्टेबल जनरेटर, प्रकाश टावर और जल निकासी पंप शामिल हैं। पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए भारत ने DNA किट, अभिक्रमक और DNA प्रोफाइलिंग उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के मंत्री महावीर पुन को राहत सामग्री सौंपी। इस बीच भारत के विशेष सुरंग बचाव दल ने नेपाल की सेना के साथ मिलकर चिले में और लॉन्गटोंग में दो उच्च जोखिम वाले स्थलों पर संयुक्त अभियान शुरू किया। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2 से 3 दिन के भीतर पूरा होने की आशा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। केरला में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अमरीकी ओपन पुरुष एकल सेमीफाइनल में बेन शेल्टन की टक्कर फ्रांसिस टियाफो से होगी। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में

0: आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़ रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी खबरों को कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। ब्रिक्स इंडिया सम्मेलन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार सीमा पार डिजिटल सेवा आसान करेंगे ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देशों की डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में पांचवा स्थान। राजस्थान पत्रिका का कहना है, ब्रिक्स पर भारत का बड़ा दांव, सीमा पार व्यापार और स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर जोर। पत्र ने लिखा है, चीन से सीधी उड़ान, ईरान से चाबहार और रूस से सुखोई फाइटर पर होंगे समझौते। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने की खबर है, कच्चा तेल $100 के पार, पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में तेजी से 3 महीने के निचले स्तर पर बाजार। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर वंदे मातरम के पूरे गायन पर कांग्रेस की आपत्ति के जवाब में दैनिक जागरण ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान प्रकाशित किया है, वंदे मातरम कितना और कैसे गाना है, कांग्रेस ये सहयोगियों को ना सिखाए। जनसत्ता की खबर है, ओडिशा में बालासोर के जंगल में मिले 5 वनमानुष, मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन वनमानुष के ओडिशा पहुंचने की जांच शुरू। लौटते मानसून से होगी राजस्थान समेत कई राज्यों में अच्छी बारिश, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 11 से 15 सितंबर तक चलेगा नया दौर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए, राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Union Cabinet approves Railways 8 multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi says Cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. India calls upon BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. India ramps up Nepal flood relief with 8th aid flight, specialized tunnel team and forensic experts. IAEA refers Iran to UN Security Council over nuclear non-compliance. IMD issues red alert for heavy rainfall in Odisha today. And in tennis, Ben Shelton and Francis Tiafoe set up an All-American men's singles semifinal at US Open in New York. Union Cabinet has approved 8 multi-tracking railway projects at a total cost of over 20,800 crore rupees. Briefing media after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav said, of these projects, 3 multi-tracking railway projects have been approved at a total cost of 10,783 crore rupees. Mr. Vaishnav said these projects cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, increasing the existing network of Indian Railways by about 656 kilometers. Mr. Vaishnav said that these projects are Kharagpur and Jharsuguda, 4th line Katni to Pendra Road, 4th line and Bilaspur to Pendra Road, 3rd line. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav further informed that the other 5 multi-tracking projects have been approved at a cost of nearly 10,000 and 21.

0: शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो के दरमियान मुकाबला होगा। क्वार्टर फाइनल में आठवें नंबर के खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के सनसनीखेज मुकाबले में पिछली बार के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हरा दिया, जबकि टियाफो ने अपने हमवतन एलेक्स माइकलसन को शिकस्त दी। इधर खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में कल पिछली बार की चैंपियन इरीना सबालेंका का मुकाबला तीसरे नंबर की खिलाड़ी जेसिका पेगुला से होगा, जबकि चौथे नंबर के खिलाड़ी कोकोगाफ कजाखिस्तान की एलिना रिबाकीना का सामना करेंगी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात ने आज अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार बरताव ने हुकूमत के जरिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में रेल लाइनों की सलाहियत बढ़ाने के लिए 5 प्रोजेक्टों को मंजूरी दिए जाने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव के हवाले से लिखता है, इन प्रोजेक्टों से रेल नेटवर्क में 540 किलोमीटर का इजाफा होगा। इसके अखबार की एक और सुर्खी है, वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने श्रीलंका से समुद्री ताउन बढ़ाने पर दिया जोर, कहा महफूज समुद्री रास्ता और बिला तातुल तजारत जरूरी। नेपाल में 26 अगस्त को आए तबाहकुन सैलाब के बाद भारत की जानिब से इमदाद और बचाव का ऑपरेशन बदस्तूर जारी, इस खबर को इनकलाब ने सफे अव्वल पर जगह दी है। अखबारात ने नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन के इस बयान को भी नुमाया किया है कि कबायली बिरादरियां भारत का मुस्तकबिल संवारने में शराकत दार हैं।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने रेलवे के 20,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 8 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काबीना के फैसले से मुसाफिरों की तेजी के साथ आमदोरफ्त मजबूत कनेक्टिविटी और कार प्रदान की सहायत में इजाफे को यकीनी बनाया जा सकेगा। भारत ने ब्रिक्स मुल्कों पर जोर दिया है कि वो बैन अल-अक़वामी तजारत में कारोबार करने वाली खवातीन और खवातीन की ज़ेर क़यादत इदारों के लिए मौके बढ़ाने की खातिर मिलकर काम करें। भारत ने सैलाब से मुतासर नेपाल के लिए इमदादी सामान की 8वीं परवाज मखसूस टनल टीम और फॉरेंसिक माहिरीन के साथ इमदाद तेज कर दी है। एटमी तवानाई से मुतालिक बैन अल-अक़वामी एजेंसी ने एटमी मामले पर काम न करने पर ईरान का मामला अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के पास भेजा है। मौसमियात महकमे ने आज ओडिशा में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 8:45 और 15 सेकेंड हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज आप आनंद उठाएंगे ऋत्विम सान्याल द्वारा राग जौनपुरी में गायन का। आपके साथ संगत कर रहे हैं पखावज पर श्रीकांत मिश्रा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप आनंद उठा रहे थे। ऋत्विन सान्याल द्वारा राग जौनपुरी में गायन का आपके साथ संगत कर रहे थे पखावज पर श्रीकांत मिश्रा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर।

स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 9:15 होने को है। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।

0: उद्योग पत्रिका।
1: नमस्कार, उद्योग पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। सभी श्रोताओं को कमल किशोर का नमस्कार। साथियों, आज चिकित्सा सेवाओं का दायरा केवल दवाओं के निर्माण और वितरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संसाधनों का कुशल प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण, आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल तकनीक और रोगी केंद्रित सेवाएं भी शामिल हैं। इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर संगीता जी मगन जी को। संगीता जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: आप एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, प्रशिक्षक, लेखिका और सलाहकार हैं और आपको फार्मेसी, प्रबंधन शिक्षा, नेतृत्व विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में 3 दशकों से भी ज्यादा का अनुभव आपके पास है। आज आप हमारे साथ फार्मेसी और प्रबंधन विज्ञान के विकसित होते संबंधों, स्वास्थ्य सेवा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और भविष्य की संभावनाओं पर अपने विचार साझा करेंगे, हम आपसे जानकारियां लेंगे। संगीता जी, जब भी कभी हम बाजार जाते हैं कोई दवाई लेने के लिए, दवा लेने के लिए, तो अक्सर हम फार्मासिस्ट, केमिस्ट और ड्रगिस्ट, इन 2-3 शब्दों से रूबरू होते हैं, तो क्या इनमें कोई समानता है या कोई अंतर है?
2: पहले तो थैंक यू सो मच, मेरे लिए ही ऑनर है कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ आप लोगों के बीच में। बात करते हैं फार्मासिस्ट की, केमिस्ट की और ड्रगिस्ट की। तो बेसिकली आज हम इन तीनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, इनमें कुछ खास डिफरेंस है भी और कई जगहों पे एक सा ही लगता है। तो हर केमिस्ट शॉप पे जहाँ केमिस्ट्री से रिलेटेड सामान, दवाइयाँ, जिसको ड्रगिस्ट बोलेंगे, ये चीजें मिलती हैं। फार्मासिस्ट बेसिकली वो हैं जो एक क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने ड्रग्स के बारे में, दवाइयों के बारे में पूरी एक सर्टिफाइड स्टडी करी है, तो उनको हम एक क्वालिफाइड पर्सन समझते हैं जो ये ड्रग्स को या दवाइयों को डिस्पेंस करने के योग्य हैं। तो जब हम केमिस्ट कहते हैं तो वो केमिकल से ज्यादा रिलेटेड स्टडी है। ड्रगिस्ट कहते हैं उनको जहां पे मेडिसिन सोल्ड किए जाते हैं। सो इन सब की स्टडी करके, जो पूरी अच्छे से उनकी पढ़ाई करके, क्वालिफिकेशन लेकर वहां बैठकर जिसको बेचने का हक है दवाइयों को, उसको फार्मासिस्ट कहते हैं।
1: जी, बहुत अच्छी जानकारी। और ये जो दवा उद्योग है, जो कंपनीज है, इनमें और प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट साइंस के बीच में क्या संबंध है?
2: देखिए, दवाइयों का काम है हील करना, ट्रीटमेंट करना। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आज एक फार्मेसी जो है या फार्मासिस्ट जो है, कुछ साल पहले, जैसे मैं कहूंगी कि जब मैंने एक फार्मेसी पढ़ा था, मैं 1986 की बात कर रही हूँ, तो जब हमने पढ़ा था तो फार्मासिस्ट का काम था दवाइयां देना। तो अब जो है, मैनेजमेंट के बिना एक फार्मासिस्ट सिर्फ फार्मासिस्ट ही

0: बनकर रह जाता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी आने वाले बच्चे हैं जो फार्मेसी पढ़ रहे हैं वो एक स्टेप ऊपर बढ़े, क्योंकि इसमें अब इतना इवोल्यूशन हो चुका है, इतने सारे नए रोल्स आ चुके हैं, ताकि उनको सिर्फ और सिर्फ दवाइयां देने का काम नहीं करना है। तो उन सब चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए मैनेजमेंट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: तो मैनेजमेंट जो स्किल है वो क्यों जरूरी है?
0: मैनेजमेंट स्किल का मतलब है आप लोगों से क्या बात करते हैं, कैसे अपने प्रोफेशन को चलाते हैं और कैसे अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम एक सोचें कि एक केमिस्ट या फार्मेसी शॉप है एक हॉस्पिटल के अंदर, तो उसका रोल सिर्फ दवाई देना तो नहीं है, उसका रोल है कि वो अपने वेंडर्स के साथ कैसे बात करेगा, सप्लाई चेन कैसे मैनेजमेंट करेगा, अपनी टीम को कैसे लीड करेगा। तो मैनेजमेंट उन सब चीजों को सिखाता है, अकाउंटेंसी भी सिखाता है उनको, उनको लीडरशिप भी सिखाता है, उनको टीम स्किल्स भी सिखाता है, उनको ये भी सिखाता है कि मेरी दवाइयों की स्टोरेज कैसे होनी चाहिए, मेरी दवाइयां किस तरह से रखी जानी चाहिए ताकि इजी एक्सेस हो और हर समय अवेलेबल हो, शॉर्टेज ना हो। तो ये सब चीजें जो है मैनेजमेंट के थ्रू ही हम सीख सकते हैं।
1: यानी कि मैनेजमेंट की भूमिका एक फार्मासिस्ट के लिए बहुत बड़ी भूमिका होती है, और इसके बिना हम कह सकते हैं कि अगर किसी अस्पताल में, किसी क्लिनिक में, किसी हॉस्पिटल में अगर फार्मासिस्ट है, अगर उसको मैनेजमेंट नहीं पता है या फिर नहीं कर सकता है, कम स्किल्ड का है, तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है,
0: बहुत सी परेशानी हो सकती है। बिकॉज हमारे को ये सोचना है कि ये क्रिटिकल दवाइयां हैं, इसकी मेरे को कितनी जरूरत पड़ती है और इसका मेरे पास में कितना स्टोरेज होना चाहिए।
1: और खासकर इसमें तो जो डॉक्टर्स जो दवाइयां लिखते हैं उनको जो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाता है वो फार्मासिस्ट ही है।
0: देखिए, डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट ये दोनों पार्टनर्स हैं हेल्थ केयर सिस्टम में। आज जो सिस्टम है वो सिर्फ हेल्थ सिस्टम नहीं है, हेल्थ सर्विसेज नहीं है, ये हेल्थ केयर सर्विसेज है। तो हम कहते हैं कि हर रोल जो प्ले हो रहा है एक हॉस्पिटल के अंदर वो किसी का ज्यादा और कम नहीं है। सबसे ज्यादा जो इन टच में आते हैं वो या तो नर्सेज आती हैं जो इन पेशेंट्स हैं, और जो आउट पेशेंट्स हैं उनके लिए फार्मासिस्ट आता है।
1: आपने नर्स की बात की, तो नर्स को भी एक फार्मेसी का ज्ञान होना जरूरी है?
0: बिल्कुल जरूरी है, लेकिन होता नहीं है। उनको दवाइयां देना आता है लेकिन उनको दवाइयों का डोसेज का स्टडी और जो ड्रग इंटरेक्शंस का स्टडी है वो नहीं होता है। तो सब अपनी अपनी एक्सपर्टीज को लेकर आते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि ये सब पार्टनर्स हैं। ये टीम ऐसी है कि एक की गलती से भी डिस्पेंसिंग एरर हो गया, उनको देने का एरर हो गया, तो डॉक्टर की पूरा काम जो है वो निल हो गया,
1: फेल हो जाता है।
0: तो ये सब पार्टनर्स हैं, तो तभी वो सिस्टम जो है अच्छा स्ट्रांग बन सकता है।
1: हम ये कह सकते हैं कि सभी एक दूसरे के प्रति जो कॉम्प्लीमेंट्री है,
0: बिल्कुल,
1: तो जो अस्पतालों में या जो केमिस्ट के पास या फार्मेसियों में जो एक इन्वेंटरी होती है, जो भंडारण होते हैं, स्टोर होता है, और जो एक सप्लाई चेन जो होता है, जो प्रबंधन किया जाता है, उसमें रोगियों के यानी कि पेशेंट के देखभाल पर किस प्रकार का असर करता है, किस प्रकार प्रभावी होता है?
0: देखिए, बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो हमारी प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, प्रॉपर उनको किसी को फ्रिज में रखना है, किसी को रेफ्रिजरेटर में रखना है, किसी को सिर्फ एक कूल डार्क प्लेस पे रखना है, तो वो अलग अलग चीजें हैं, ये फार्मासिस्ट का ही काम है। कितनी दवाइयां मेरे हॉस्पिटल में यूज होंगी उसकी प्लानिंग भी एक फार्मासिस्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट वो सब फार्मासिस्ट ही कर सकता है। बिकॉज डॉक्टर तो ये नहीं बता सकते हैं कि इतने पेशेंट्स हैं इतनी दवाई रखो, फार्मासिस्ट ये बता सकता है कि इस दवाई के मेरे पास में ये चार तरह के मेडिसिन अवेलेबल हैं, और वो ही डॉक्टर्स को दिखाते हैं कि ये चार हमारे पास में अवेलेबल ऑप्शन है, तो इसमें से हम लिख सकते हैं। तो ये सभी का रोल रहता है उस इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए।
1: जी जी, तो अस्पताल मेडिकल टीम और दवा उत्पादक, और कहना चाहिए कि फार्मासिस्ट केमिस्ट में एक बेहतर तालमेल होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए।
0: बिल्कुल, देखिए, एक हॉस्पिटल में जब आप एंटर करते हैं, आज एक रोगी सिर्फ नहीं जाता है, उसके साथ उसकी फैमिली भी जाती है। ठीक है, एक रोगी एंटर करता है एक हॉस्पिटल के अंदर, तो सबसे पहले कौन मिलता है उसको? एक गार्ड। अगर वो गुस्से से, बदतमीजी से, डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में बोलता है तो वहीं पे इम्प्रेशन हॉस्पिटल का खराब हो जाता है। उसके बाद आते हैं लिफ्ट पे, उसके बाद आते हैं ओपीडी में, रिसेप्शनिस्ट है, ये सभी जो है वो भी एक पार्ट है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि पेरिफरी के ऊपर बैठे हैं, बाहर की साइड पे। उसके बाद जब अंदर की टीम की हम बात करते हैं, तो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, फार्मासिस्ट हैं, और इन्हीं का रोल है मेजरली उस पेशेंट को सैटिस्फाई करने का। देखिए, हमने आज साइंस इतनी एडवांस कर चुकी है, लेकिन हम अमर तो नहीं है, हम सबका कुछ ना कुछ एंड है, लेकिन दवाइयों से हम ट्रीटमेंट करते हैं, फिर भी करते हैं, और जो उम्मीद हमें चाहिए, जो कंपैशन, जो एम्पैथी हमें चाहिए, वो पूरी टीम मिलकर ही दे सकती है।
1: बिल्कुल, जब कभी हम डॉक्टर के के पास जाते हैं, दवाई लिखते हैं, डॉक्टर ने दवाई लिखी और छोड़ दिया। उनसे कोई बात नहीं होती है, लेकिन उसी बात को अच्छी तरह से फार्मासिस्ट समझाता है, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ही समझाता है, वही संतुष्ट कर सकता है कि डॉक्टर ने क्या कहा और आपको दवाई

0: इस प्रकार से लेनी।
1: देखिए वो ट्रस्ट बिल्ड करने का काम जो है वो एक फार्मासिस्ट का है। हॉस्पिटल के बाहर ही मैंने बहुत वजह से हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाते हैं, हम फार्मेसी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हम उसी हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड्स देखते हैं जो केमिस्ट के लगे हैं 70% ऑफ ऑन मेडिसिन
0: जी।
1: तो हम असली दवाइयां इस हॉस्पिटल की फार्मेसी से क्यों लें, हमें जो 70% ऑफ पे बाहर मिल रही है। तो केमिस्ट और जो फार्मासिस्ट वहां क्वालिफाइड बैठा है उसको अपना ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत है कि हमसे दवाई क्यों लें।
0: यानी कि ये भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा
1: है, ये भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा है
0: किस प्रकार से ट्रस्ट बिल्ड करना है।
1: ट्रस्ट बिल्ड करना है।
0: मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि जो सिंपैथी, एम्पैथी और ट्रस्ट इन सब की बात करें, आज जमाना है नई तकनीक का, एआई का और टेलीमेडिसिन युग का है। कुछ ही चंद घंटों में आपको दवाइयां हाजिर हो जाती हैं, आपके पास आ जाती हैं दवाइयां, आपको उसका समाधान मिल जाता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जो बदलाव हो रहा है रोगी पर किस प्रकार का असर हो रहा है, या कह सकते हैं कि जो मानवीय जो संवेदनाएं हैं, आत्मीयता है, वो कम हो रही है, ऐसा आपको नहीं लगता है? और इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं?
1: देखिए मुझे क्या लगता है, आज का जो पेशेंट है ना वो बहुत इन्फॉर्म्ड है। आज चैट के ऊपर डाल दीजिए अपने थोड़े से सिम्टम्स, वो आपको आपकी बीमारी बता देगा। तो क्या डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है हमें?
0: बिल्कुल
1: गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से एआई कितना भी डेवलप कर ले, जब तक एक ह्यूमन कनेक्ट नहीं होगा तब तक वो काम जो हम चाहते हैं वो नहीं होगा। हमने दवाई ली, हमारा ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन हीलिंग प्रोसेस के लिए हमें ह्यूमन कनेक्टिविटी की जरूरत है। और वही जो हीलिंग है आती है बिकॉज लोगों में एम्पथी है, कंपैशन है, बात करते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, वो आपको एआई नहीं दे सकता।
0: बिल्कुल। दवाइयां केमिस्ट तक पहुंचती हैं, जो दुकानों तक पहुंचती हैं, उनकी जानकारी एक एमआर देता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी भूमिका बड़ी भूमिका होती है। आप इसे किस प्रकार देखती हैं?
1: देखिए जो मेडिकल रेप्स हैं यूजुअली वो भी फार्मासिस्ट ही होते हैं। अच्छी जो कंपनीज हैं वो हमेशा फार्मेसी ग्रेजुएट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट्स को ही उठाती हैं मेडिकल रेप्स के लिए।
0: अच्छा।
1: बिकॉज उनको एक्सपर्टीज पता है, डॉक्टर उसमें कुछ भी पूछें उनकी नॉलेज बिल्कुल अप टू डेट है और उन्हें पूरा के पूरा उस ड्रग के बारे में सब कुछ पता है, तो वो ऑलरेडी उनके पास में एक्सपर्टीज है, तो वो एक फार्मासिस्ट ही होते हैं यूजुअली। अच्छी कंपनीज जो है वो फार्मेसी ग्रेजुएट्स को या एम फार्म पोस्ट ग्रेजुएट्स को ही उठाते हैं। इसीलिए आज हम मैनेजमेंट के साथ में जोड़ रहे हैं इसको कि अगर हमने फार्मेसी मैनेजमेंट सीख लिया है, एक अलग से कोर्स एमबीए करा है, तो हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज और हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ दवाइयां डिस्पेंस नहीं करनी है, हमारे पास में और बड़े रोल्स आ जाते हैं जो एक हॉस्पिटल में निभाए जाते हैं।
0: संगीता जी, अभी हमें जो सुन रहे हैं मुझे लगता है कि बहुत लोगों को फायदा होगा और कई लोग सोच भी रहे होंगे कि इस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए। कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे, जो श्रोता हैं सोच रहे होंगे, आप उनको क्या सलाह देंगे कि फार्मेसी के क्षेत्र में जाने के लिए किस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए और आगे इसका क्या भविष्य है?
1: तो भविष्य हमारे पास में बहुत सारे ऐसे रोल्स आ चुके हैं एक हॉस्पिटल के अंदर ही। पहले सिर्फ फार्मासिस्ट जो था अपनी फार्मेसी शॉप तक लिमिटेड था, अब वो क्लिनिकल डिसीजन के अंदर भी आ चुके हैं। तो क्लिनिकल ये जो फार्मेसी है वो एक पूरा का पूरा, वो भी डॉक्टर्स के जैसे पूरे राउंड्स ले, तो इसलिए जो रोल्स हमारे पास में और उभर कर आ रहे हैं आजकल के बच्चों के लिए जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं वो और बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ उनको दे सकते हैं। तो वो इंडस्ट्री फार्मेसी में भी जा सकते हैं, वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, उनके पास में ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं जो नए निकल कर आ रहे हैं फार्मेसी की स्टडी से, क्योंकि हर सिचुएशन जो है एक्सपैंड हो रही है। जैसे मैंने कहा हेल्थ केयर सिस्टम, तो इस केयर सिस्टम के अंदर बहुत से नए अपॉर्चुनिटीज हम फार्मासिस्ट के लिए निकल कर आ रहे हैं।
0: तो हम ये कह सकते हैं कि जो फार्मेसी का कोर्स है उसके साथ साथ में जो मैनेजमेंट है वो भी साथ साथ चलता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और दोनों का साथ साथ होना जरूरी है।
1: बिल्कुल। देखिए जो स्टूडेंट्स आज एमबीए करने के लिए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स नहीं होते, क्योंकि एमबीए का मतलब बिजनेस को मैनेज करना है। वो बिजनेस फार्मेसी का हो सकता है, वो बिजनेस हॉस्पिटल का हो सकता है, वो बिजनेस अकाउंट से रिलेटेड हो सकता है, ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हो सकता है। तो इसलिए एमबीए करने का मतलब है या मैनेजमेंट स्टडी करने का मतलब है कि हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा रहे हैं।
0: जी संगीता जी, अब चलते चलते क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम होता है और वक्त का ख्याल रखना पड़ता है, तो ये कई बार हम सुनते हैं फार्माकोलॉजी, ये क्या है?
1: फार्माकोलॉजी का मतलब है दवाइयों की और डिजीजेस की स्टडी, किस डिजीज के लिए कौन सी दवाई जरूरी है, किस डोज में जरूरी है, इन सब चीजों की स्टडी हम फार्माकोलॉजी में करते हैं।
0: तो क्या ये फार्मासिस्ट से बिल्कुल ही अलग है?
1: नहीं, ये फार्मेसी के अंदर का ही एक कोर्स है।
0: अच्छा,
1: फार्मेसी का मतलब सिर्फ एक फार्मेसी नहीं होता है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है जो आयुर्वेद से रिलेटेड है, तो बहुत सी स्टडी कर एक फार्मासिस्ट बनता है। सो ये

0: हम ना सोचें कि वो स्टडी नहीं करके आए, उनकी बहुत सी एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं वो, इनफैक्ट लॉ भी पढ़ते हैं, फार्मेसी से रिलेटेड अकाउंट्स भी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़कर वो आते हैं। तो फार्माकोलॉजी मैनेजमेंट एक और एंटायर ब्रांच निकल कर आ रहा है जिसके अंदर डिजीजेस की और एक्सटेंसिव स्टडी होगी और उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या डोसेज, क्या ड्रग इंटरेक्शंस, किस तरह से दवाई देनी है, कब देनी है, और वो हर केमिस्ट्री उससे जो रिलेटेड है उसकी स्टडी से वो पढ़ते हैं।
1: यानी कि हम ये कह सकते हैं चलते चलते कि जो फार्मेसी है, फार्मेसी का कोर्स है, फार्माकोलॉजी है, कम्प्लीटली वो मैनेजमेंट स्किल पे डिपेंड करता है। अगर ये दोनों साथ साथ रहे तो फार्मेसी फार्माकोलॉजी ये और भी ज्यादा आत्मीयता, संवेदनशीलता और पेशेंट के साथ में जो रिलेशन है वो ज्यादा मजबूत हो सकता है और अच्छा हो सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, जब हम फार्मेसी पढ़ते हैं तो हम सिर्फ फार्मेसी की पढ़ाई करके आए हैं, जब हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो हम बाकी सब चीजें भी अंडरस्टैंड करते हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: हम उसमें बहुत से आजकल ऐसे मॉड्यूल्स भी डाले जाते हैं जिसको हम पीपल्स स्किल्स कहते हैं, लोगों से कैसा बिहेवियर हमारा होना चाहिए, उन सब चीजों की स्टडी भी करते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है।
1: तो श्रोता मित्रों, फार्मेसी और प्रबंधन विज्ञान का समन्वय स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और सुलभ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भविष्य में भी ये साझेदारी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र के विकास के लिए प्रमुख आधारशिला बनी रहेगी और इसमें और भी इनोवेशन होते रहेंगे और भी डेवलपमेंट होते रहेंगे। संगीता जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने वक्त निकाला और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आपने साझा की इस विषय पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक यही संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाइक का और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
2: उद्योग पत्रिका।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उद्योग पत्रिका, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के ठीक 9:30 होने को है। ये वक्त होता है अपने श्रोताओं को पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक सुनवाने का।

जीने की मुझे अब आस नहीं, अशकों के सिवा कुछ पास नहीं। जीने की मुझे अब आस नहीं, अशकों

हर गाम पे राहे तैबा में महसूस कुछ ऐसा होता है महसूस।

मजबूर हूँ मैं सरकार से कोसों दूर हूँ मैं। माना कि सबा मजबूर

0: गहरा प्रभाव दिया था। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं की धरती से निकला एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष किया और आजादी के बाद प्रशासन की मजबूत नींव रखने में भी बड़ी भूमिका निभाई, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। आज ही के दिन 1887 को अल्मोड़ा में जन्मे पंत पेशे से वकील थे और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। वे संयुक्त रूप से प्रांत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं में उभरे और स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बंगाली साहित्य में अगर हास्य, कल्पना और बेतुकी से लगने वाली लेकिन बेहद अर्थपूर्ण कविताओं की बात हो तो सुकुमार राय का नाम सबसे अलग दिखाई देता है। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनकी कालजयी कृति आबोल ताबोल ने बच्चों के साहित्य को एक बिल्कुल अनोखी दुनिया दी। वहीं पागला दाशु और हा जा बाराला जैसी रचनाएं आज भी लोकप्रिय है। वे प्रसिद्ध पत्रिका संदेश के संपादन से भी जुड़े रहे। दिलचस्प बात यह है कि उनके निधन के बाद भी उनकी रचनाओं की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई और उनका साहित्य आज भी बंगाली संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। और श्रोताओं, आज के आज सवेरे में बस इतना ही। उम्मीद है आज की मुलाकात आपके दिन में कुछ नई जानकारी और सकारात्मक ऊर्जा जरूर जुड़ गई होगी।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी। ये आकाशवाणी है। अब आप फहीम अहमद से खबरें सुनिए। मरकजी काबीना ने रेलवे के 20,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 8 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काबीना के फैसले से मुसाफिरों की तेजी के साथ आमदोरफ्त, मजबूत कनेक्टिविटी और बारबरदारी की सलाहियत में इजाफे को यकीनी बनाया जा सकेगा। भारत ने ब्रिक्स मुल्कों पर जोर दिया है कि वो बैन अल्कौमी तजारत में कारोबार करने वाले खवातीन और खवातीन की जेर क्यादत इदारों के लिए मौके बढ़ाने की खातिर मिलकर काम करें। भारत ने सैलाब से मुतासर नेपाल के लिए इमदादी सामान की 8वीं परवाज मखसूस टनल टीम और फोरेंसिक माहिरीन के साथ इमदाद तेज कर दी है। एटमी तवानाई से मुतालिक बैन अल्कौमी एजेंसी ने एटमी मामले पर ताउन न करने पर ईरान का मामला अक्वाम मुत्तहदा सलामती काउंसिल के पास भेजा है। मौसमियात महकमे ने आज ओडिशा में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। और टेनिस में यूएस ओपन में मर्दों के सिंगल सेमीफाइनल में दो अमरीकी खिलाड़ियों बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो के दरमियान मुकाबला होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने रेलवे के 20,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 8 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। काबीना की मीटिंग के बाद नामा निगारों को जानकारी देते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन प्रोजेक्टों में से 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्टों पर 10,783 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जनाब वैष्णव ने कहा कि इनसे रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में तकरीबन 656 किलोमीटर का इजाफा हो जाएगा। मगरबी बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिले इनके दायरे में आएंगे। जनाब अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन प्रोजेक्टों को 2029-30 तक मुकम्मल किए जाने का मंसूबा है। जनाब वैष्णव ने बताया कि दीगर 5 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट तकरीबन 10,021 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर किए गए हैं। इनसे रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 540 किलोमीटर का इजाफा होगा और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिले इसके दायरे में आएंगे। इन प्रोजेक्टों से तकरीबन 2,700 गांवों के लिए कनेक्टिविटी में इजाफा होगा, जहां तकरीबन 52 लाख की आबादी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि सरकार ने ज्यादा भीड़भाड़ वाले सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। इनमें दिल्ली से हावड़ा, मुंबई से हावड़ा, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से गुवाहाटी, दिल्ली से चेन्नई, हावड़ा से चेन्नई और मुंबई से चेन्नई रूट शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काबीना के फैसले से मुसाफिरों की तेजी के साथ आमदोरफ्त, मजबूत कनेक्टिविटी और बारबरदारी की सलाहियत में इजाफे को यकीनी

बनाया जा सकेगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि जनूबी भारत में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 5 रेल प्रोजेक्टों से बेहतर रेल कनेक्टिविटी की राह हमवार होगी और लाखों लोगों को फायदा होगा। वजीर आजम ने यह भी कहा कि 10,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 3 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्टों से मुतालिक फैसले से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और मगरबी बंगाल में इजाफी रेलवे नेटवर्क कायम होगा और कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी। जनाब मोदी ने कहा कि इससे सियाहत के हौसला अफजाई होगी और लॉजिस्टिक लागत भी कम हो जाएगी। कॉमर्स और सनअतों के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने ब्रिक्स मुल्कों पर जोर दिया है कि वो बैन अल-अक़वामी तजारत में कारोबार करने वाली खवातीन और खवातीन की ज़ेर क़यादत इदारों के लिए मौके बढ़ाने की खातिर मिलकर काम करें। वज़ीर मौसूफ ने ख़वातीन की ज़ेर क़यादत इदारों के लिए तरक्की और मौकों को बरवकार लाने के लिए क्रेडिट और मार्केट्स तक रसाई को सहल बनाने और कारोबार के ज़ाब्तों में सहूलत पैदा करने पर भी जोर दिया। जनाब पीयूष गोयल नई दिल्ली में ब्रिक्स की ख़वातीन की ज़ेर क़यादत तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। जनाब गोयल ने कहा कि भारत में ख़वातीन को माली एतबार से, समाजी एतबार से नीज तालीम, हुनरमंदी और बेहतर मेयार जिंदगी के जरिए बाख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है ताकि ख़वातीन मुल्क की तरक्की में कायदाना रोल अदा कर सकें। जनाब गोयल ने कहा कि भारत में तकरीबन 30 करोड़ बैंक खाते ख़वातीन के हैं और खुद अपना कारोबार शुरू करने की ख्वाहिशमंद ख्वातीन को आसान शरायत पर कर्ज दस्तयाब होते हैं। वज़ीर मौसूफ ने इस बात को उजागर किया कि देही इलाकों की तकरीबन 10 करोड़ ख्वातीन अब 90 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुपों की मेंबर हैं। जनाब गोयल ने इस बात को दोहराया कि इसका मकसद ख्वातीन को इक्तिसादी एतबार से आजाद बनाना है। इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी के 50वें मौरूस इमाम और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के चेयरपर्सन प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम अपने पहले दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान रणदीप जायसवाल ने बताया कि इस दौरे से समाजी तरक्की और सकाफती वरसे के तहफ़ में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के साथ जारी ताउन का जायजा लेने और कम्युनिटी के इकदाम पर मामी इश्तराक को फरोग देने का मौका मिलेगा। प्रिंस रहीम खान नायब सदर जमहूरिया सी पी राधाकृष्णन की दावत पर इस माह की 15 तारीख तक भारत के दौरे पर हैं। प्रिंस रहीम आगा खान आज नायब सदर जमहूरिया के साथ बातचीत करेंगे। नई दिल्ली में अपने क्याम के दौरान आगा खान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वो वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। मुअज्ज़ज़ मेहमान का अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद जाने का भी प्रोग्राम है जहां आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क मुख्तलिफ तरक्याती और कम्युनिटी इकदाम में मसरूफ अमल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मुंबई में जारी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज GFF का इफ्तिताह किया था। मुंबई में जारी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन एजेंटेक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ सेशन का एहतमाम किया गया है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी के उनवान से सेशन से खिताब करेंगे। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा अगली दहाई की फाइनेंस टेक्नोलॉजी एतमाद और इख्तरा की तश्कील के उनवान से एक सेशन से खिताब करेंगे। भारत ने सैलाब से मुतासर नेपाल के लिए इंसानी हमदर्दी की इमदाद बढ़ा दी है। 35 टन इमदादी सामान के साथ भारतीय फजाइया का 8वां हवाई जहाज कल काठमांडू में उतरा। उधर नेपाल में अचानक सैलाब आने से मुतासर इलाकों में बचाव कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसमें रसुआ के मकाम पर वाकई टनल भी शामिल है जहां भारतीय अहलकारों की टीम तलाश और बचाव की कार्रवाई में नेपाल की फौज के साथ मिलकर काम कर रही है। एटमी तवानाई से मुतालिक बैनुल अक़वामी एजेंसी IAEA ने गुज़श्ता 20 साल में पहली बार ईरान का मामला अक़वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के पास भेजा है। एजेंसी ने कुछ मकामात पर यूरेनियम आसार पाए जाने के मामले की तवील अरसे से चली आ रही छानबीन में

0: वो हमेशा अपने हाथ की कमाई खाता और दूसरों पर खर्च करता है और बगैर किसी शदीद मजबूरी के दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाता। शर्मीला इंसान समाजी तौर पर अमन पसंद और खामोश तबीयत होता है। वो लड़ाई झगड़ों, गाली गलौच और फसाद के माहौल से अपने को बचाए रखने की कोशिश करता है। अपने हक को और दूसरों की ज्यादतियों को माफ और नजरअंदाज कर दिया करता है। शर्म हया इंसान के हुनर और काबिलियत में इजाफे का सबब भी बनती है, क्योंकि ऐसा इंसान जब लग्व और बेमकसद कामों से परहेज करता है तो उसे अपनी सलाहियतों को निखारने और उनको कारामत बनाने का ज्यादा मौका मिलता है और इस तरह वो समाज में ज्यादा बेहतर और बाइज्जत मकाम हासिल करता है। शर्म हया की सिफत इंसान को दूसरों में मकबूलियत का सबब भी बनती है, इसलिए कि वो लोग उस इंसान के पास रहकर अपने को महफूज और अमन चैन वाला महसूस करते हैं, उन्हें उसकी जात से कोई खतरा महसूस नहीं होता। खुलासा ये कि शर्म हया इंसानियत का जौहर और उसका खुलासा है, जिसकी किरणें इंसान के वजूद से फूटती और पूरे मुआशरे पर असरअंदाज होती हैं। ऐसा इंसान एक बाकिरदार और बावकार इंसान होता है, मुसबत और तामीरी सोच वाला इंसान होता है, दूसरों का खैरख्वाह और फायदेमंद इंसान होता है। वो अपने समाज को नफा पहुंचाता है और समाज उसे उसकी भलाइयों की वजह से इज्जत और रफअत देता और बाइज्जत मकाम अता करता है।
1: आप सुन रहे थे अखबार जरिए का प्रोग्राम शमी फरोजा। आज का मौजू था शर्म ओ हया। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम हुस्ने गजल। आज आप सुनेंगे जयश्री गुप्ता से फिराक गोरखपुरी और जिगर मुरादाबादी का कलाम और शाहरुख खान से बाग दहलवी और अमीर गजलबाज का कलाम।

0: Kabelschächte. ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है संपूर्ण विकास के महत्व को दर्शाता पोषण माह पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नीना भाटिया कॉल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब एक पौधा मिट्टी में गहराई तक अपनी जड़ें जमाता है तभी उस पर फल और फूल लहलहाते हैं। ठीक वैसे ही जब किसी राष्ट्र की भावी पीढ़ी सेहत और पोषण से परिपूर्ण होती है तभी वो देश आर्थिक और सामाजिक प्रगति के शिखर को छूता है। इसी सोच को धरातल पर उतारने के लिए देश भर में गूंज रहा है एक नया संकल्प, नौवा राष्ट्रीय पोषण माह 2026। और इस बार हमारा मूल विचार है पोषण से समृद्धि। बाबा विश्वनाथ की पवित्र नगरी वाराणसी से इस राष्ट्रव्यापी अभियान का बिगुल बज चुका है, लेकिन इसकी तरंगे देश के हर गांव, हर शहर और हर घर तक पहुंचनी है। सवाल ये है कि क्या हमारी थाली सिर्फ भूख मिटा रही है या देश की समृद्धि की नींव भी रख रही है। बाल कुपोषण और एनीमिया के आंकड़े आज भी हमसे एक गंभीर संवाद की मांग करते हैं। इन्हीं नीतिगत पहलुओं, शोध और चिकित्सीय समाधानों पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रही हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की पोषण विशेषज्ञ प्रोफेसर नीना भाटिया कॉल और प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू, धन्यवाद।
1: डॉक्टर भाटिया, आपके साथ शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि बाल कुपोषण के कारण भारत को अपनी जीडीपी का लगभग 3-11% का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ये जो वाराणसी से अभियान शुरू हुआ है पोषण से समृद्धि, इसके तहत खाद्य सुरक्षा को केवल पेट भरने तक सीमित नहीं रखा गया है, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता और आर्थिक उत्पादकता को भी शामिल किया गया है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस अभियान को आप कैसे देखती हैं और इससे कितना बड़ा परिवर्तन होने की उम्मीद है।
2: जैसा कि हम सब जानते हैं कि केवल पेट भरने को पोषण नहीं कहा जा सकता, और जो अभी एक बदलाव आ रहा है इस पोषण की लड़ाई में हमारी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सभी पोषक तत्वों को, जिसमें कि हमारे मेन मेजर पोषक तत्व जिसमें एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा को इंक्लूड करना है, उसके अलावा साथ ही जो विटामिन और मिनरल प्रयुक्त पदार्थ हैं जिनमें कि प्रमुख रूप से आयरन, जिंक, विटामिन ए और कई विटामिन और मिनरल्स को शामिल करना बहुत जरूरी है। जब पोषक पदार्थों की कमी रहती है तो बच्चे के मानसिक विकास में भी कमी आती है, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक क्षमता और उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट IQ भी कम रह जाती है और उसकी बड़े होकर कमाने की क्षमता कम होती है, जिससे कि देश के विकास में, जो आपने बताया, GDP में 3-11% कमी आ जाती है। और इसके लिए जरूरी है कि सभी पोषक तत्व उपयुक्त मात्रा में सम्मिलित किए जाएं। इस दिशा में डाइट्री डाइवर्सिटी, जो आहार में विविधता के प्रिंसिपल को अपनाकर सभी स्टेट्स अलग अलग पोषक पदार्थों को, जिसमें कि मोटा अनाज, दालें और पोषण वाटिका के थ्रू सब्जी और फलों को इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे कि एक पूरा पूर्ण पोषण मिलेगा और सभी तरह की जो कमियां हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से होने वाले एनीमिया और जो अधिक कुपोषण की समस्या है उसको कम किया जा सकेगा, और देश के, पहले तो देश के नागरिकों और बच्चों के विकास में और उससे देश के आर्थिक विकास में ये एक बड़ा कदम है।
1: आपसे समझना चाहेंगे कि गर्भाधारण से लेकर बच्चे के दूसरे जन्मदिन के पहले, यानी पहले 1000 दिन में सही डॉक्टरी सलाह और पोषण देकर इस स्थिति को कैसे पलटा जा सकता है।
3: इसका जवाब सिर्फ डॉक्टर दे दें कि हाँ आप ये कर लो। आपको भी पता है अगर डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं तो बहुत बार ना हम उस एडवाइस को 100% मानते नहीं है। सबसे जरूरी ये है कि जैसे माँ शिशु और जो माँ है, दे आर नॉट इंडिविजुअल नहीं है, एक फैमिली का पार्ट होते हैं। तो जो मदर है, सबसे पहले जो माँ का पोषण है और आयरन का स्टेटस है, मैडम ने बोला अनीमिया हो जाता है, जिंक की डेफिशिएंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, हमें ये ध्यान रखना है कि जो माँ है वो सक्षम होनी चाहिए एक गर्भ कैरी करने के लिए, एंड इसीलिए हमारी जो प्रेगनेंसीज हैं वो प्लान्ड होनी चाहिए। और जो हम फोलिक एसिड की बात करते हैं वो प्रेगनेंसी के बाद नहीं, वो प्रेगनेंसी से पहले लेना शुरू करना चाहिए। अनीमिया की जांच सही टाइम पे होनी चाहिए, ANC विजिट टाइम से होनी चाहिए, ताकि एक गायनेकोलॉजिस्ट उनका वेट गेन और मदर ठीक ठाक कर रही है या नहीं कर रही, बच्चे की ग्रोथ हो रही है।

0: तो शुरुआत वहां से होती है। फिर उसके बाद आती है बारी कि जब बच्चा पैदा हुआ, पहले 6 महीने में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चे की जिंदगी के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए, वो है स्तनपान करना। वो अभी भी मतलब हमारे देश में क्या, इवन वर्ल्ड में भी बहुत अच्छे आंकड़े नहीं है, बट हमारा देश में उस आंकड़े को बढ़ाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है एज डॉक्टर्स। बहुत सारी माएं, मैं गरीब तबके के सिर्फ लोगों की बात नहीं कर रही, इवन एजुकेटेड मदर्स जो हैं, जो पढ़ी लिखी माएं हैं, उनको भी कन्विंस करना कि आप बच्चे को 6 महीने तक अपना दूध दें, वो भी उनको समझ नहीं आता है कि दूध पिलाना चाहिए। तो हमें इसके लिए भी बहुत काम करना पड़ेगा कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करें। फिर आती है बारी 6 महीने से 24 महीने। अब माओं को लगता है कि 6 महीने दूध पिलाना है, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा कि 6 महीने पे आप बच्चे का माँ का दूध छुड़वा दीजिए। बच्चे को 2 साल तक माँ का दूध पीना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ माँ का दूध पी रहा है। अगली बाधा आती है कि जब हमें उनको खाना देना है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि दाल का पानी दे दो, चावल का पानी दे दो, सूप दे दो, ये सब चीजें ठीक नहीं है बच्चे के लिए। तो हमें ये भी जानना है कि उनको सही मात्रा में सही प्रकार का खाना, जो कि ऊर्जा संघन जो आहार होता है, अलग अलग, जैसे मैडम ने डाइटरी डाइवर्सिटी की बात करी, वो खाना बच्चे के 6 महीने पे शुरू करना है। अगर मांस मछली आप खाते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं 8-9 महीने पे, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। और एक जो माँ सोचती है ना कि चलो अब मैं दूध नहीं पिलाऊंगी और गाय का दूध पिलाना है, गाय का दूध 2 साल से पहले बच्चे के लिए तो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पिलाना चाहिए, उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। और सिर्फ डॉक्टरी सलाह से ना नहीं चलता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ब्रेस्ट फीडिंग एक सोशल प्रॉब्लम भी है। बहुत सारी माएं, अब जैसे गर्भ अवस्था में उनको परिवार से सपोर्ट मिला, अब सास को भी लगता है, नानी को भी लगता है कि चलो अब तो हमने कर दिया, अब हम बच्चा पालते हैं, तुम घर का काम करो। ये बहुत जरूरी है, ये मेंटालिटी हमें इंडियन हाउस होल्ड से ये मेंटालिटी हटानी है। माँ और बच्चा एक डायड है, उनको प्यार की और उनको सपोर्ट की बहुत जरूरत है।
1: डॉक्टर भाटिया, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, वाराणसी और पूर्वी यूपी के संदर्भ में अगर हम देखें तो बाजरा, रागी और स्थानीय पारंपरिक अनाजों को दैनिक आहार में शामिल करके पोषण, सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों को एक साथ कैसे मजबूती दी जा रही है?
2: जैसा कि हम जानते हैं कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हम लोग सब भी मोटे अनाज को रेगुलर रूप में, मतलब डे टू डे डाइट में हम इंक्लूड करते थे, और अब ये जो एक श्री अन्न करके प्रधानमंत्री जी ने मोटे अनाज को फिर से एक सम्मान दिया है और उसको सेंटर में लाया है, उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि ये बहुत कम पानी में और बहुत कम उपजाऊ जमीन पर भी उग जाते हैं, और जैसे आपने कहा कि अगर पैसे की कमी है तो भी ये परिवार में अवेलेबल रहते हैं, और इनमें कई पोषक तत्व काफी अधिक मात्रा में मिलते हैं, जैसे कि रागी जो है वो कैल्शियम और बाजरा जो है वो आयरन में भरपूर मात्रा में इनमें मिलता है। तो इसी तरह के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले, जिन्हें हम मिलेट्स आम भाषा में कहते हैं, वो अगर हम इंक्लूड करेंगे बच्चों के खाने में, गर्भवती महिलाओं के और पूरे परिवार के खाने में, तो ये हमारे कई पोषक तत्व, खास करके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर, और इनसे इनफैक्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जो बाद में ओवरवेट, ओबेसिटी, डायबिटीज और ऐसी बीमारियां भी होती है, उनसे भी बचाव मिलेगा। तो छोटे छोटे किसानों के द्वारा उगाकर और लोकल प्रोक्योरमेंट के जरिए, जो सरकार जैसे खासकर यूपी में और कई जगह और इसको इंक्लूड करने की बात कर रही है, ये एक डबल कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी है, जिसमें कि किसान अपनी छोटी जमीन पर इसको उगा भी सकते हैं, ये सस्टेनेबल होते हैं क्योंकि ये कम पानी में उगते हैं और हार्श कंडीशंस में भी ये उग सकते हैं, और इनको लोकल प्रोड्यूस की तरह इस्तेमाल करने से हम जो खाना दे रहे हैं अभी, जो इनफैक्ट जो हम खाना दे रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करके ये अधिक पोषक तत्व वाले को देने से हमें पोषण लाभ भी मिलेगा और ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा रहेगा।
1: डॉक्टर अनु, अगर आपसे हम समझने की कोशिश करें कि शुरुआती 6 महीने तक केवल स्तनपान न कराने के पीछे आप किस तरीके का डर देखती हैं या सामाजिक बाधाएं देखती हैं, और अगर स्तनपान के दर को बढ़ाया गया तो नवजात मृत्यु दर को घटाने में क्या भूमिका हो सकती है?
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर माँ अवेयर है, बच्चे को एक घंटे में माँ दूध पिला सकती है, माँ को उठने की भी जरूरत नहीं है, माँ लेटे लेटे बच्चे को दूध पिला सकती है, एंड जो रुकावट है ना वो मानसिक ज्यादा है रादर देन एक्चुअल प्रॉब्लम। तो सिजेरियन के बाद जो डिलीवरी होती है, जैसे

0: सपोज हम माने कि 20-30% सिजेरियन डिलीवरी है, तो मेरे को नहीं लगता कि इनमें से कोई भी अपना ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, तो वो आंकड़े वैसे ही कम हो गए। दूसरी चीज ये कि दादी और नानी एंड जो घर के बड़े हैं उनको बहुत प्रॉब्लम है कि जो कोलोस्ट्रम माँ का पहला दूध जो बच्चों को देते हैं वो उस
1: जो पोषण ट्रैकर अभी 2021 से लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, ये एक बिल्कुल रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर रहा है। और इससे जो पहले आंगनवाड़ी वर्कर को वजन लेना था, फिर उसको प्लॉट करना है, फिर वो डेटा कंपाइल होगा, वो सारा टाइम लैग रिड्यूस होकर एक बहुत इजीली उसको जो अति कुपोषित बच्चे हैं जिन्हें हम सैम और मैम बच्चे कहते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनको पहचानने में बहुत ही मदद होती है। और उन तक जो अतिरिक्त राशन पहुंचाने की प्रक्रिया है उसमें भी इससे बहुत मदद हो रही है। अभी होम विजिट्स में और इनकी ग्रोथ के साथ साथ उनकी डेवलपमेंट के लिए 34 इंडिकेटर्स को पहचाना गया है और उस पर ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक जो टूल है प्लानिंग के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर के काम के लिए, और आपस में जो आशा और ANM वगैरह से मिलके काम करने के लिए इन एप्स को आगे और विकसित किया जा रहा है। सो मैं ये सोचती हूँ कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जिससे हम हर बच्चे को, पहले अभी तक हम बात करते हैं कि इतना कुपोषण है, इतने परसेंट है, मगर यहाँ हम हर एक को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रैक कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को देख सकते हैं और उसके वजन और उसकी हाइट और ग्रोथ में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनके हिसाब से एक एक बच्चे के लिए इंडिविजुअली एक्शन लिया जा सकता है।
2: डॉक्टर अनु, जो बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित होते हैं और उनका इलाज भी किया जाता है, पोषण पुनर्वास केंद्रों की भूमिका इसमें अहम होती है। अब सवाल ये उठता है कि जब बच्चे का इलाज घर पर एम्बुलेटरी केयर के तहत होता है या फिर रेडी टू यूज थेरेप्यूटिक फूड यानी RUTF से किया जा रहा है, तो माता पिता को बच्चे के खान पान, दवा और देखभाल को लेकर किन जरूरी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए?
0: एक्चुअली जो न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर है हमारे भी अस्पताल में NRC, अगर आप वहाँ पे देखेंगे ना तो इन बच्चों की इतनी अच्छी केयर होती है। नॉट ओनली खाना खिलाना, बच्चा सिर्फ खाने से नहीं बढ़ता है, बच्चा बढ़ता है प्यार से, उसको अच्छे तरीके से पेरेंटिंग हो, उसका प्ले थेरेपी हो, एज अप्रोप्रिएट। इनफैक्ट हमारी सरकार ने एक मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कार्ड MCP कार्ड बनाया है, एक नया है ना, वो इतना सुंदर डॉक्यूमेंट है, वो इतनी बढ़िया चीज है। एज ए पीडियाट्रिशियन मैं चाहूंगी कि जो भी माए हैं जो मुझे सुन रही हैं और मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी माओं से बात करने के लिए, वो MCP कार्ड ना आप पूरा पढ़िए। हिंदी में इतना बढ़िया दिया हुआ है ना, कौन सा बच्चा किस उम्र पे क्या करना चाहिए, और अगर आपका बच्चा नहीं कर रहा तो आप क्या कर सकते हैं उस बच्चे के लिए। तो एक तो वो जो रिहैबिलिटेशन है वो कंप्लीट होती है, साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड फीडिंग ऑल्सो। जो RUTF की जो हम बात कर रहे हैं ना, इट्स जस्ट अ न्यूट्रिशनली डेंस, मतलब जिसमें बहुत सारी एनर्जी है। मुझे याद है कि जब हम इंटर्नशिप करते थे, मैं एम्स से पढ़ी हूँ नई दिल्ली से, हम बल्लभगढ़ में अपनी इंटर्नशिप करने जाते थे तो वहाँ पे एक बल्लभगढ़ मिक्स करके हम इन बच्चों को बांटते थे पीडियाट्रिक OPD के बाहर, जो छतरी के नीचे लगता था। तो वो क्या होता था, वो बेसन, मूंगफली, सूजी और बहुत सारा उसमें घी होता था और थोड़े से फ्रूट्स होते थे और उसका ना हलवा टाइप का बना के हम बांटते थे। तो RUTF भी वैसे गाढ़ा खाना है जो रेडी टू यूज है। रेडी टू यूज का मतलब है कि वो आप खरीदिए और खिला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि RUTF दे के काम आपका खत्म हो गया। RUTF एक सप्लीमेंट है, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं पूरी डाइट को। आपको रोटी, सब्जी, दाल, फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडा, मांस, मच्छी अगर आप खाते हैं और आपके परिवार में बनता है, आपको वो पूरी डाइवर्सिटी से खाना खिलाना है। और RUTF बहुत गाढ़ा होता है तो आपको ना उसके साथ बच्चे को इंश्योर करना पड़ेगा कि उसको पानी अच्छे से मिले और बच्चे का वजन एक डॉक्टर या आंगनवाड़ी वर्कर या जहां भी पीडियाट्रिक OPD होती है, PHC के मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उनके मॉनिटरिंग में होना चाहिए। जो भी जैसे पोषण ऐप मैम ने बोला कि रियल टाइम हम वेट करते हैं, तो वो संतुलित आहार का पार्ट हम बना सकते हैं RUTF का, बट अगर RUTF नहीं हम ला पा रहे या महंगा पड़ रहा है या नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये जो अच्छी चीजें जो हमारे हिंदुस्तानी डाइट में जैसे पिन्नी है, पंजीरी है, जैसे मैंने बल्लभगढ़ मिक्स बताया, तो अलग अलग PHCs अपना खुद का भी इस तरीके का खाना बना के बच्चों में, ये कुपोषित बच्चे हैं उनको आप दे सकते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती कि आप जैसे साउथ में चावल की ज्यादा चीजें बनती हैं, नॉर्थ

0: है, न्यूट्रिशनली बैलेंस मील करके देना है उस तरीके से।
1: जी बिल्कुल, पहले पोषण माह से लेकर अब तक 60 करोड़ से अधिक पोषण गतिविधियों का आयोजन किया जा चुका है। डॉक्टर भाटिया, एक एकेडमिक और पोषण विशेषज्ञ के रूप में आप इस जन आंदोलन को लोगों की आदतों में स्थायी व्यवहार परिवर्तन में बदलने के लिए क्या ठोस रणनीतियां देखती हैं? क्योंकि जब तक हम किसी के व्यवहार में परिवर्तन नहीं देखेंगे तब तक ऐसा लगता है कि कोई भी आंदोलन पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता है।
0: जी, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को हाईलाइट किया है। जन आंदोलन पोषण अभियान की एक मेन स्ट्रेटजी में से है जो कि 2018 में लॉन्च हुआ, और जैसा आपने कहा कि अब हम 9वां पोषण माह आज से शुरू हुआ है और हम इसको मना रहे हैं। इसका रोल पोषण माह और पोषण पखवाड़ा जो हम मनाते हैं हर वर्ष, और इतनी 60 करोड़ एक्टिविटीज करी गई है इसके तहत, तो ये एक न्यूट्रिशन के बारे में जागरूकता और सभी की इन्वॉल्वमेंट का काम करता है। पर स्थायी रूप से डाइट और फूड की हैबिट्स को चेंज करने के लिए जैसे हमें वन ऑन वन या काउंसलिंग की जरूरत है, या एक जो हमें चेंज लाना है उसमें सभी डॉक्टर, आंगनवाड़ी वर्कर, टीचर सभी की रोल है। और जैसा अभी अनु मैम भी बता रही थी कि एनआरसी में अगर बच्चे हैं तो वहां पे मदर की काउंसलिंग की जाती है, उनको सिखाया जाता है बच्चे को कैसे खिलाना है। और अभी जो हमारे ये होम बेस्ड केयर के प्रोग्राम्स हैं यंग चिल्ड्रन के लिए, उनमें भी होम विजिट्स करती हैं आशा और आंगनवाड़ी वर्कर जो हर महीने VSSND डेज मनाए जाते हैं। तो इनके थ्रू हमें बहुत ज्यादा जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, जिसमें हम जो एक गर्भवती महिला है, जो एक स्तनपान कराने वाली महिला है, और खासकर बच्चे, और जो एक पहले 1000 दिन की जब बात होती है तो उसमें पहले 2 साल के बच्चे इंक्लूडेड है प्रेगनेंसी के बाद, तो हमें एक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की हमने ऑलरेडी मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बात की है, और उसके बाद जो हमें ऊपरी आहार 6 महीने से बच्चे में शुरू करना है और धीरे धीरे उस 1.25 साल तक एक नॉर्मल डाइट पे लाना है, और पहले 2 साल का पोषण है, उसमें ये इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि हम काउंसलिंग पे, नर्स थ्योरी पे और लोकल जो भी फेस्टिवल्स हैं उनसे इनको जोड़कर लोगों को उस भाषा में और उस तरह से समझाएं उनके वहां के रीजनल फूड्स को और लोकल फूड्स को इंक्लूड करके। जैसे अभी मैम भी बता रही थी कि उसको एक ही फूड देने की आवश्यकता नहीं है, हमें आहार में विविधता लाने के लिए लोकल फूड और लोकल ट्रेडिशंस को ये जोड़कर, और जो ये हमारे ग्रास रूट वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनके थ्रू लगातार हर महीने और हर होम विजिट पर जब हम इस बदलाव की बात करेंगे और माँ को ठीक मात्रा में कितना पूरक आहार देना है, क्या खाने को देना है, ऐसे ही प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा भी नहीं देना है मगर पोषण युक्त आहार देना है, प्रोटीन युक्त आहार देना है जिसमें कि मोटा अनाज शामिल किया जा सकता है, लोकल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शामिल किए जा सकते हैं, तो उसके साथ जब हम कंबाइन करके ये जन आंदोलन को और पोषण माह को देखेंगे तो ये एक सटीक स्ट्रेटजी हो सकती है बिहेवियर चेंज लाने के लिए।
1: जी बिल्कुल, बच्चों में जिंक, विटामिन ए और आयरन की कमी से उनके इम्यून सिस्टम और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर अनु, एक बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में आप बार बार होने वाले संक्रमणों जैसे निमोनिया, डायरिया और पोषण की कमी के बीच के दुष्चक्र को कैसे देखती हैं?
2: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आनंद जी। एक्चुअली ये सवाल ना मेरे दिल के बहुत करीब भी है, क्योंकि मैं बाल रोग विशेषज्ञ तो है लेकिन मेरी स्पेशलिटी है इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी। तो हम बहुत सारे ऐसे बच्चे देखते हैं जिनको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से इनको बार बार इन्फेक्शन होते हैं, वो बच्चे दूसरे होते हैं जिनको प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसीज होती है। लेकिन ये वाले जो बच्चे जिनकी हम बात कर रहे हैं जिनको इम्यूनिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कुपोषण होने के कारण एंड इनकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है एस्पेशली जिंक, आपको याद होगा कि 20 साल पहले हम लोग जिंक नहीं देते थे डायरिया के साथ, है ना। जब मैं MD कर रही थी तभी इसकी गाइडलाइन आई थी, मुझे याद है कि जिंक देना है हमें डायरिया के साथ। जिंक एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो इम्यूनिटी के बहुत सेंट्रल रोल प्ले करता है, और विटामिन ए भी जो है वो भी एक सेंट्रल रोल प्ले करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। और जो हमारे गट है, जो गट की लाइनिंग है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग है ना, जो फर्स्ट डिफेंस है इन्फेक्शन के लिए, तो अगर हम विटामिन ए और जिंक की कमी हो जाएगी तो इन्फेक्शन तो होंगे, एंड जब बच्चे को इन्फेक्शन होंगे तो बच्चा पनप नहीं पाएगा, एंड अगर बच्चा पनपेगा नहीं तो बच्चा खेलेगा नहीं, इंटरैक्ट नहीं करेगा, स्कूल मिस करेगा। तो बार बार इन्फेक्शन होने से फिजियोलॉजिकली तो प्रॉब्लम है ही कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बच्चे का सोशल इमोशनल

0: डेवलपमेंट भी तो नहीं होता है. तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है, आयरन हो गया, जो कि हम अब आजकल एचबी भी चेक करते हैं, इंडियन पीडियाट्रिक्स ने अपनी कुछ गाइडलाइन दी है कि बच्चे जब कुछ कुछ एज पे आए तो हमें उनका हीमोग्लोबिन चेक करना है, उनको आयरन सप्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें करनी है. तो ये बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स है क्योंकि ये सेंट्रल रोल प्ले करते हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए. तो ये बहुत ही जरूरी है कि अगर कोई बच्चा इसमें फंस रहा है, और ये बच्चे जनरली सैम और मैम वाले, जैसे मैडम बता रहे थे, ये सैम और मैम वाले बच्चे हैं, ये फंस जाते हैं, एक विशेष सर्कल हो जाता है. बीमार बच्चा मैल न्यूरिस्ट हुआ, बिकॉज मैल न्यूरिस्ट हुआ उसको फिर इन्फेक्शन हुआ, फिर वो इन्फेक्शन की वजह से और मैल न्यूरिस्ट हुआ. ये वर्लपूल में बच्चा जो फंस जाता है ना, उससे बच्चों को निकालना बहुत ही दिक्कत होती है. एंड इससे बेटर ये है कि हम पहले ही माँ को हेल्दी रखें, गर्भावस्था में ध्यान रखें, पहले 6 महीने में बच्चे को दूध पिलाएं माँ का, उसके बाद ठीक से खाना शुरू करें. अगर हम इन 3-4 चीजों के स्टेप्स पे ही अगर हम फोकस करें तो हम बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं बिना बहुत ज्यादा खर्चा करे हुए, या बहुत फैंसी इंटरवेंशन नहीं चाहिए हमें. बेसिक चीजें करने से बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं. तो बेसिकली इन्फेक्शन प्रिवेंट करना बहुत ही जरूरी है. लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी आपके बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो प्लीज एक एमडी डॉक्टर को, एमडी पीडियाट्रिशियन को जरूर जाके दिखाइए कि कहीं आपके बच्चे को कोई इम्यूनिटी की दिक्कत तो नहीं है.
1: जी डॉक्टर भाटिया, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के तहत फोर्टिफाइड चावल का वितरण एक बड़ा कदम रहा है, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि इसके सुरक्षित उपयोग और आम जनता के बीच जो इसको लेकर मिसकंसेप्शन है, भ्रांतियां हैं, उसको दूर करने के लिए भी कई प्रयास किए जा रहे हैं. विश्वविद्यालय स्तर और शोध संस्थानों को किस तरीके से आगे आने की जरूरत है, कितना काम किया जा चुका है और आगे की क्या कार्य योजना चल रही है इस पर?
2: इस पर मैं ये बताना चाहूंगी कि जो फोर्टिफाइड राइस है, इसको लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं लोगों में, और उसको कुकिंग कैसे ठीक से करनी है, पानी को नहीं फेंकना है जिसमें हम चावल को कुक कर रहे हैं, जो मांड अलग कर देते हैं चावल पकाते समय, उस तरह की जानकारी नहीं है. और कई बार उन लोगों को ये भी लगता है कि ये प्लास्टिक का चावल है, ये एक मिलावट है, ये क्यों दी जा रही है, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं. तो इन सब चीजों को लेकर कई विश्वविद्यालयों में इस पर रिसर्च हुआ और जाना गया कि सिर्फ 20-30% महिलाओं और लाभार्थियों को ही इसके बारे में पता भी है, और इसको कैसे ठीक से इस्तेमाल करना है वो नंबर तो और भी कम है, हार्डली 5-10% के बीच में है. तो इसके ऊपर एक काम करने की, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करने की और इसकी भ्रांतियों को दूर करने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके. और उसके अलावा जब जिन लाभार्थियों को मिले, जरूरी है कि वो इसको ठीक से पकाकर ठीक से इसका सेवन कर सके, ना कि उसको निकाल दें जो चावल को चुनते समय या पानी को फेंक दें, जिससे कि जो उसमें आयरन है उसका अवशोषण ठीक से नहीं होगा. पूरा पर्पस फोर्टिफिकेशन का डिफीट हो जाएगा अगर हम आयरन को कुकिंग में लूज करेंगे. इसके ऊपर विश्वविद्यालय काफी एक महत्वपूर्ण भूमिका कर सकते हैं, इसके बारे में डेमोस और भ्रांतियों को दूर करने के लिए जनता में जानकारी देने के थ्रू.
1: जितनी भी माताएं आपको इस समय सुन रही हैं या जो परिवार इस कार्यक्रम के जरिए आपकी बातों को समझ रहा है, क्या संदेश देंगी पोषण माह को लेकर, बच्चों के विकास को लेकर, और माताएं खुद अपना ध्यान कैसे रखें, बहुत संक्षेप में?
0: पहली बात तो ये, जैसे मैडम ने बोला, भ्रांतियों को दूर करना बहुत जरूरी है. और जो भी आपके मन में शंका होती है, आप डॉक्टर के पास जाइए, पढ़िए. किताब पढ़ने से ना बहुत नॉलेज आता है. मुझे लगता है कि हमारी जो माएं हैं, जो यंग मदर्स हैं, वो ना कई बार बोल नहीं पाती हैं परिवार में. मेरे को लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम अपनी लड़कियों को, जो हमारी डॉटर्स हैं, जो यंग मदर्स हैं, उनको आवाज दें. क्या सोचेगी हमारी मम्मी, क्या सोचेगी हमारे पापा, क्या सोचेंगे? तो पहले तो हम, ये जो यंग मदर्स है, मैं कहना चाहूंगी आप प्लीज किताब पढ़िए, कि जो आपको भाषा समझ में आती है, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, व्हाटएवर, वो जरूर पढ़िए. न्यूट्रिशन पे पढ़िए, थोड़ा बहुत पढ़िए. अगर आपको जरूरत है तो मदद लीजिए. आजकल तो यूट्यूब पे इतने सोर्सेज हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ICMR की गाइडलाइंस है कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे हमारा थाली बननी चाहिए, आधा फल सब्जियां होना चाहिए, दाल कितनी होनी चाहिए. पढ़ के एक तो एजुकेट करना ये यंग लड़कियों को बहुत जरूरी है. अगर हम उनको एम्पावर करेंगे ना आनंद जी, उसके बाद तो सब कुछ पजल की तरह फिट हो जाएगा.
1: आज की चर्चा हमें यही याद दिलाती है कि एक पौष्टिक निवाला सिर्फ

0: भूख नहीं मिटाता, वो किसी बच्चे को ताकत देता है, किसी माँ का भरोसा बनता है और किसी परिवार के बेहतर भविष्य की नींव रखता है। इसलिए पोषण की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, सिर्फ एक विभाग की नहीं, ये जिम्मेदारी हम सब की है, क्योंकि एक पोषित बच्चा एक मजबूत पीढ़ी है, एक स्वस्थ परिवार एक सशक्त समाज है और एक पोषित भारत एक समृद्ध भारत है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपने विचार आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू आनंद जी,
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे संपूर्ण विकास के महत्व को दर्शाता पोषण माह पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नीना भाटिया कौल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम चर्चा का विषय है। आकाशवाणी से उर्दू सर्विस आप सुन रहे हैं मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

इस नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप हमें सुन रहे हैं। अब सुनिए महबूब खान पर फीचर का दूसरा और आखिरी हिस्सा, हिंदुस्तानी सिनेमा का पहला शोमैन। तहरीर डॉक्टर इरशाद परवेज की है।

मूवी की जबरदस्त कामयाबी के पीछे इस फिल्म की मौसीकी और नगमात का भी बड़ा हाथ है। इस फिल्म से ही तन्वी नकवी ने बतौर नगमा निगार पूरे हिंदुस्तान में शोहरत हासिल की।

महबूब खान ने अगले 10 साल से भी ज्यादा अरसे तक जो फिल्म बनाई वो कामयाब रही। ऐसा मालूम होता था कि उन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा देखने वालों की नब्ज पकड़ ली हो। जल्द ही एक जमाना ऐसा आया जब फिल्म इंडस्ट्री का हर शख्स महबूब के गुण गाने लगा। महबूब को फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स की जबरदस्त पजीराई हासिल रही, जिनमें बाबूलाल मेहता जैसे बड़े फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर सरे फहरिस्त थे। दूसरी जानिब उस जमाने के मशहूर फिल्मी नाकिब बाबू राव पेंटर भी महबूब के फन के बहुत बड़े कदरदान थे। महबूब की अनमोल घड़ी, ऐलान, अनोखी अदा, अंदाज और अमर जैसी फिल्में भला कौन भुला सकता है।

फिल्म अमर में दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी जैसे नामी अदाकार थे। नौशाद की मौसीकी वाली इस फिल्म के नगमे बहुत मकबूल हुए और आज भी ये गाने पसंद किए जाते हैं। उस दौर के नाजरीन हीरो को हीरो देखना चाहते थे। ये सिर्फ महबूब ही थे जिन्होंने उस दौर में गालिब रुझान के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाई, जबकि वो जानते थे कि नाजरीन दिलीप कुमार को मनफी किरदार में देखना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन उनका मकसद आवाम को ये बताना था कि आपके पसंदीदा तरीन लोग भी इंसान होते हैं और इंसानों से गलतियां भी होती हैं।

महबूब खान ने अपने करियर की बेहतरीन फिल्में दिलीप कुमार को मरकजी किरदार में लेकर बनाई, जैसे कि आन, अमर और अंदाज। उनकी फिल्म अंदाज को आज भी अहम रोमानवी फिल्मों के जुमरे में हिंदुस्तानी सिनेमा की एक यादगार फिल्म माना जाता है।

अंदाज महबूब खान की बड़ी फिल्मों में से एक अहम फिल्म है। इस फिल्म के लिए महबूब खान ने सबसे पहले दिलीप कुमार और नरगिस को चुना और बाद में नरगिस ने राज कपूर का नाम तजवीज किया। इस फिल्म में अपने जमाने के दो अहम तरीन अदाकार दिलीप कुमार और राज कपूर एक दूसरे के मध्य मुकाबिल थे। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो शायकीन का जोश खरोश काबिल दीद था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी हिट साबित हुई।

0: महबूब की मशहूर जमाना फिल्म आन पहली ऐसी भारतीय फिल्म थी जिसको फ्रांसीसी जबान में डब किया गया। फ्रांसीसी मेयार से भी आन अपने जमाने की महंगी तरीन फिल्म थी जिसमें हजारों घुड़सवारों और अदाकारों ने हिस्सा लिया।
1: मोहब्बत जो मैं जिनके हाथ

कान ही वो फिल्म थी जिसमें अदाकारा नादरा को महबूब खान ने पहली बार मौका दिया। इस फिल्म की एक यादगार बात यह थी कि यह पहली हिंदुस्तानी फिल्म थी जो लंदन में रिलीज हुई और वहां पर पूरे 12 हफ्ते तक चलती रही। अहम बात यह है कि उस दौर में लंदन में गैर मुकीम हिंदुस्तानियों का गलबा नहीं हुआ करता था जैसा कि आज के दौर में है, लेकिन फिर भी इस फिल्म ने वहां बहुत अच्छा बिजनेस किया था।

काफी बात के दौर में हिंदुस्तानी सिनेमा में एंटी हीरो का तस्वीर मकबूल हुआ और शाहरुख खान की डर अंजाम और बाजीगर जैसी फिल्मों ने काफी मकबूलियत हासिल की। इस हिसाब से देखा जाए तो हिंदुस्तानी सिनेमा में एंटी हीरो के तस्वीर के मुजिब भी महबूब ही थे। ड्रामाई एतबार से इस फिल्म में किरदारों की नफसियाती कश्मकश अपने नुक्ते उरूज पर थी और अदाकारों के लिए अपने फन के मुजाहरे के लिए इससे बेहतर माहौल भला क्या हो सकता था। यही वजह है कि फिल्मी माहरीन और नाकिदीन की नजर में अमर एक बेहतरीन फिल्म थी और आज भी इसके हवाले दिए जाते हैं।

अपनी बीवी सरदार अख्तर की जगह नरगिस को लिया था। काबिल जिक्र बात यह है कि आज से तकरीबन 15 साल पहले मदर इंडिया को मिलेनियम की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म करार दिया गया था।

महबूब की मदर इंडिया हर एतबार से एक शाहकार फिल्म थी और रहेगी। इस फिल्म पर आज तक बीसियों किताबें, तहकीकी मकाले और दस्तावेजी फिल्में बनाई जा चुकी। ये फिल्म कई मानों में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे अहम फिल्म मानी जाती है। मदर इंडिया पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें हिंदुस्तान के देही माहौल की सही तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई। महबूब ने चूंकि खुद सरार नाम के गांव में आके खुली थी, इसलिए वो दही इलाकों के शबो रोज, वहां की आबो हवा, तीज त्योहारों, मेलों ठेलों, रहन सहन और बोलचाल जैसी बातों की मुकम्मल वाकफियत रखते थे। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। मदर इंडिया की कामयाबी यही थी कि महबूब के दिल की आवाज नाजरीन के दिल तक जा पहुंची और इसी वजह से ये फिल्म एक नादिर शाहकार मानी जाती है।

फॉर इंडिया किसी सामाजिक मौजू पर बनाई गई अब तक की सबसे अहम हिंदुस्तानी फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में नरगिस के साथ साथ राजकुमार, राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त ने काम किया था। सुनील दत्त की ये पहली कामयाब फिल्म थी जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मदर इंडिया को नरगिस की भी सबसे बड़ी फिल्म माना जाता है। मदर इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इस फिल्म में जो किरदार सुनील दत्त ने पेश किया था उसकी पेशकश पहले दिलीप कुमार को की गई थी, लेकिन उन्होंने ये किरदार अदा करने से इनकार कर दिया क्योंकि इसमें उन्हें नरगिस के बेटे का किरदार अदा करना

बकौल दिलीप कुमार, मदर इंडिया की तकमील के लिए महबूब ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। सुनील दत्त ने एक बार बताया था, मदर इंडिया के लिए सरमाया जमा करने के लिए महबूब खान को अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा।

बॉलीवुड में कई अदाकारों और अदाकाराओं का करियर बनाने में भी अहम किरदार अदा किया था। दिलीप कुमार, राजकुमार, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, नरगिस, निम्मी और नादिरा की कामयाबी में महबूब का अहम हाथ माना जाता है।

महबूब खान ने बतौर अदाकार भी कुछ फिल्मों में काम किया था, जिनके नाम थे जरीना, दिलावर और मेरी जान। एक मुसन्निफ के तौर पर वतन और जजमेंट ऑफ अल्लाह की कहानी और स्क्रीन प्ले भी महबूब खान ने खुद लिखा था।

महबूब खान का एक बड़ा कारनामा महबूब स्टूडियो है, जो आज भी मुंबई की फिल्मी सनत का एक अहम संगमील है और अहम खिदमत अंजाम दे रहा है। आज भी महबूब खान की फिल्मों की जब गुफ्तगू होती है तो हर शख्स मदर इंडिया का तस्करा शुरू कर देता है और इसकी वजह से उनकी दीगर अहम फिल्मों की बात कम ही हो पाती है। जबकि हकीकत यह है कि चाहे उनकी फिल्म आन हो या अंदाज हो या नजमा और हुमायूं हो, ये सारी फिल्में अपने जमाने की काफी बड़ी और हिट फिल्में थीं।

मदर इंडिया के अलावा महबूब ने 21 दीगर फिल्मों में हिदायत के फराइज अंजाम दिए, जिनमें हुमायूं, अनमोल घड़ी और सन ऑफ इंडिया, अनोखी अदा, नजमा, एक ही रास्ता और वतन जैसी मशहूर फिल्में शामिल हैं।

माहरूख खान ने अलग अलग जॉनर की फिल्में बनाई और उनकी हर फिल्म उनकी किसी दूसरी फिल्म का चरबा हरगिज हरगिज नहीं थी, सिवाय मदर इंडिया के, जिसको एक जमाने से वो दोबारा बनाने का इरादा रखते थे। माहरूख खान की मदर इंडिया ने कामयाबी और मकबूलियत के सारे साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। मदर इंडिया के बाद उन्होंने सन ऑफ इंडिया बनाई, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि मदर इंडिया जितनी कामयाब हुई, सन ऑफ इंडिया उतनी ही नाकाम साबित हुई। उसकी एक वजह यह भी थी कि सन ऑफ इंडिया की शूटिंग के दौरान महबूब की सेहत खराब रहने लगी थी, वो कई बार बीमार पड़े और शूटिंग का काम रुक रुक कर किया गया।

महबूब खान की फिल्मों में मुल्क के इब्तदाई और तामीरी दौर की भरपूर अक्कासी मिलती है। उनकी फिल्मों में उस दौर के मसाइल, नए हिंदुस्तान की रिजाइयत और तामीरी कशमकश का माहौल पूरी शिद्दत के साथ सामने आता है। महबूब खान हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत पसंद करते थे और अपना आइडियल मानते थे। एक बार उन्होंने पंडित नेहरू को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा था कि नेहरू, तुम मेरे महबूब हो, तुम हो तो मैं हूँ।

28 मई 1964 के बदकिस्मत दिन महबूब खान हालत हकीकी से जा मिले। महबूब का इंतकाल पंडित नेहरू के इंतकाल के सिर्फ चंद घंटों के बाद

0: से एक स्टेशन से खिताब करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी के 50वें मौरूसी इमाम और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के चेयरपर्सन प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम अपने पहले दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस दौरे से समाजी तरक्की और सकाफती वरसे के तहफ्फुज में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के साथ जारी ताउन का जायजा लेने और कम्युनिटी के इकदाम पर बाहमी इश्तराक को फरोग देने का मौका मिलेगा। प्रिंस रहीम खान नायब सदर जमहूरिया सी पी राधा कृष्णन की दावत पर इस माह की 15 तारीख तक भारत के दौरे पर हैं। प्रिंस रहीम आगा खान आज नायब सदर जमहूरिया के साथ बातचीत करेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज ओडिशा में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश और कहीं कहीं इंतहाई तेज बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे के मुताबिक आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, माहे और उत्तराखंड में अगले 2 दिन के दौरान तेज बारिश होने का इम्कान है। इधर तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और सिक्किम में इस महीने के 15 तारीख तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की गई है। एटमी तवानाई से मुतालिक बैन अल-अक़वामी एजेंसी IAEA ने गुज़िश्ता 20 साल में पहली बार ईरान का मामला अक़वामी मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के पास भेजा है। एजेंसी ने कुछ मुकामात पर यूरेनियम आसार पाए जाने के मामले की तवील अरसे से चली आ रही छानबीन में ताउन करने में ईरान के नाकाम रहने का हवाला दिया है। ईरान ने इन मुकामात के बारे में पहले से कोई इंकशाफ नहीं किया था। IAEA के 35 अरकान पर मुश्तमिल बोर्ड ने 5 के मुकाबले 23 वोटों की हिमायत के साथ मुतालिका करारदाद मंजूर की, जबकि 8 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस, चीन और नाइजर ने इसकी मुखालफत में वोट दिया। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने यह करारदाद तजवीज की थी। माली उमूर से मुतालिक एक्शन फोर्स FATF ने माली जराइम के लिए गेमिंग और गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म के बढ़ते हुए बेजा इस्तेमाल के बारे में मुल्कों को खबरदार किया है। FATF ने कहा है कि जराइम का इर्तिकाब करने वाले अफराद रकम को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचाने के लिए गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने गैर कानूनी और बगैर लाइसेंस वाले ऑनलाइन गैम्बलिंग को एक बड़ा खतरा करार दिया है। मोल्दोवा ने मंगल के रोज एक मुश्तबा ड्रोन देखे जाने के बाद आरजी तौर पर अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी है, जिसकी वजह से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की को नॉर्वे ले जाने वाली परवाज में ताखीर हुई। सरकारी तर्जुमान ने कहा है कि मुल्क के ऊपर से गुजरने वाले तैयारों के तहफ्फुज के लिए फिजाई हदूद बंद की गई थी, जिससे जेलेंस्की की परवाज समेत 3 परवाजें ताखीर से रवाना हुई। बाद में पाबंदी हटा दी गई और तैयारे ने परवाज की। फिलीपींस में पलावन सूबे के करीब एक कश्ती में आग लगने के बाद 5 अफराद की मौत हो गई और 86 अफराद अब भी लापता हैं। मुल्क के साहली मुहाफिज दस्ते ने बताया है कि LV जून एस्टर नाम की कश्ती में उस वक्त आग लग गई जब पलावन सूबे के सियाहती मुकाम कोरोन के करीब अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रही थी। आज खुदकुशी की रोकथाम का आलमी दिन है। ये दिन खुदकुशी की रोकथाम और दिमागी सेहत की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए आलमी सतह पर मनाया जाता है। ये मौका हमें इस बात की याद दहानी कराता है कि जज्बाती मुश्किलात और मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे लोगों को बरवक्त मदद, उन्हें समझने और मुनासिब देखभाल की जरूरत होती है। US ओपन टेनिस में मर्दों के सिंगल्स सेमीफाइनल में 2 अमरीकी खिलाड़ियों बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो के दरमियान मुकाबला होगा। क्वार्टर फाइनल में 8वें नंबर के खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के सनसनीखेज मुकाबले में पिछली बार के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हरा दिया, जबकि टियाफो ने अपने हमवतन एलेक्स माइकलसन को शिकस्त दी। खास खास खबरें एक बार फिर। भारत ने ब्रिक्स मुल्कों पर जोर दिया है कि वो बैन अल-अक़वामी तिजारत में कारोबार करने वाली ख्वातीन और ख्वातीन की ज़ेर क़यादत इदारों के लिए मौके बढ़ाने की खातिर मिलकर काम करें। भारत ने सैलाब से मुतासरा नेपाल के लिए इमदादी सामान की 8वीं परवाज मखसूस टनल टीम और फॉरेंसिक माहिरीन के साथ इमदाद तेज कर दी है। एटमी तवानाई से मुतालिक बैन अल-अक़वामी एजेंसी ने एटमी मामले पर ताउन न करने पर ईरान का मामला अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के पास भेजा है। माली उमूर से मुतालिक एक्शन टास्क फोर्स FATF ने माली जराइम के लिए गेमिंग और गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म के बढ़ते हुए बेजा इस्तेमाल के बारे में मुल्कों को खबरदार किया है। और टेनिस में US ओपन में मर्दों के सिंगल्स सेमीफाइनल में दो अमरीकी खिलाड़ियों बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो के दरमियान मुकाबला होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। पेश है फिल्मी दोगानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।

किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में ये नगमा था नागिन फिल्म से। इससे पहले आपने सुना था मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को फिल्म थी प्यार का मौसम। हमारे आज के प्रोग्राम की अगली पेशकश मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में है, फिल्म है पूर्णिमा।

इस फिल्म का नगमा भी आपने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में सुना। यही दोनों आवाजें एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। इस बार फिल्म है बारादरी।

0: दवा नहीं देना जी दवा नहीं
1: दोगाने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। ये प्रोग्राम अभी जारी है। वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है दास्तान अमीर हमजा।

रोहित नारायण और अलका याग्निक को आपने सुना, फिल्म का नाम था कहो ना प्यार है। अब सुनिए सत्य में विजय के टू फिल्म का नगमा, जुबीन नोटियाल और नीति मोहन का गाया हुआ।

0: टाइगर फिल्म का नगमा भी आपने मोहित चौहान और तरन्नुम मलिक की आवाजों में सुना। इसके साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, शगुफ्ता यास्मीन से आलमी खबरें सुनिए। भारत ने ब्रिक्स मुल्कों पर जोर दिया है कि वो बैन अल्कवामी तिजारत में

0: कार्रवाई में मुआवनत के लिए 54 माहरीन को वहां भेजा है। नेपाल में भारतीय सफारतखाने ने कहा है कि 35 टन राहत और इमदादी सामान लेकर भारतीय फिजाइया का 8वां तैयारा कल काठमांडू में उतरा। भारत ने 26 अगस्त से इमदादी कार्रवाई शुरू कर रखी है। भारत ने मरने वालों की शिनाख्त में मदद के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए साजो सामान और डीएनए किट्स भी फराहम की हैं। इधर भारत की मखसूस टनल बचाओ टीम ने चिली में और लांगतांग के मकाम पर जोखिम वाले दो मकाम पर नेपाल की फौज के साथ मिलकर मुश्तरका कार्रवाई शुरू कर रखी है। तलाश की कोशिशें सरदस्त चिली में टनल पर मरकूज हैं, जहां इमदादी कारकुनों को दुश्वार गुजार रास्ते और महदूद रसाई की वजह से सख्त मुश्किलात और रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। उधर नेपाल में अचानक सैलाब आने से मुतासर इलाकों में बचाव कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसमें रासुवा के मकाम पर वाकई टनल भी शामिल है, जहां भारतीय एहलकारों की टीम तलाश और बचाव की कार्रवाई में नेपाल की फौज के साथ मिलकर काम कर रही है। एटमी तवानाई से मुतालिक बैनुल अक्वामी एजेंसी आईएईए ने गुज़श्ता 20 साल में पहली बार ईरान का मामला अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के पास भेजा है। एजेंसी ने कुछ मकामात पर यूरेनियम के आसार पाए जाने के मामले की तवील अरसे से चली आ रही छानबीन में तआवुन करने में ईरान के नाकाम रहने का हवाला दिया है। ईरान ने इन मकामात के बारे में पहले से कोई इंकशाफ नहीं किया था। आईएईए के 35 अरकान पर मुश्तमिल बोर्ड ने 5 के मुकाबले 23 वोटों की हिमायत के साथ मुतालिका करारदाद मंजूर की, जबकि 8 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस, चीन और नाइजर ने इसकी मुखालफत में वोट दिया। अमरीका, ब्रिटानिया, फ्रांस और जर्मनी ने यह करारदाद तजवीज की थी। ईरान का मामला सलामती कौंसिल के सुपुर्द किए जाने से ईरान के खिलाफ पाबंदियां और असासों पर रोक लगाई जा सकती हैं। अलबत्त इस तरह के ताजीरी इकदाम का इम्कान नहीं है, क्योंकि ईरान के इत्तेहादी मुल्क रूस और चीन सलामती कौंसिल के मुस्तकिल मेंबर हैं और वो किसी भी ताजीरी कार्रवाई को वीटो कर सकते हैं। उधर मगरबी मुल्कों के अहदेदारों ने यह ख्याल जाहिर किया है कि यूरेनियम के आसार एटमी हथियारों के खुफिया प्रोग्राम की जानिब इशारा करते हैं और हो सकता है कि ईरान 2003 तक यह प्रोग्राम चलाता रहा हो। दूसरी तरफ ईरान ने एटमी हथियार हासिल करने की बात से इनकार किया है और जोर देकर कहा है कि उसका एटमी प्रोग्राम पुरअमन है। माली उमूर से मुतालिक एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ ने माली जराइम के लिए गेमिंग और गैम्बलिंग प्लेटफार्म के बढ़ते हुए बेजे इस्तेमाल के बारे में मुल्कों को खबरदार किया है। एफएटीएफ ने कहा है कि जराइम का इर्तिकाब करने वाले अफराद रकम को एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचाने के लिए गैम्बलिंग प्लेटफार्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने गैरकानूनी और बगैर लाइसेंस वाले ऑनलाइन गैम्बलिंग को एक बड़ा खतरा करार दिया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज ओडिशा में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश और कहीं कहीं इंतहाई तेज बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे के मुताबिक आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, माहे और उत्तराखंड में अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश का इम्कान है। यूएस ओपन टेनिस में मर्दों के सिंगल सेमीफाइनल में दो अमरीकी खिलाड़ियों बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो के दरमियान मुकाबला होगा। क्वार्टर फाइनल में 8वें नंबर के खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सीटों के सनसनीखेज मुकाबले में पिछली बार के चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया, जबकि टियाफो ने अपने हमवतन एलेक्स मैक्लिनेस को शिकस्त दी। इधर खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में कल पिछली बार की चैंपियन आरियाना सबालिंका का मुकाबला तीसरे नंबर की खिलाड़ी जेसिका पेलगोला से होगा, जबकि चौथे नंबर की खिलाड़ी कजाकिस्तान की खिलाड़ी का सामना करेंगी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। भारत ने ब्रिक्स मुल्कों पर जोर दिया है कि वो बैन अल-अक़वामी तिजारत में कारोबार करने वाली खवातीन और खवातीन के ज़ेर क़यादत इदारों के लिए मौके बढ़ाने की खातिर मिलकर काम करें। भारत ने सैलाब से मुतासर नेपाल के लिए इमदादी सामान की 8वीं परवाज मखसूस टनल टीम और फॉरेंसिक माहरीन के साथ इमदाद तेज कर दी है। एटमी तवानाई से मुतालिक बैन अल-अक़वामी एजेंसी ने एटमी मामले पर तआवुन न करने पर ईरान का मामला अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के पास भेजा है। और माली उमूर से मुतालिक एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ ने माली जराइम के लिए गेमिंग और गैम्बलिंग प्लेटफार्म के बढ़ते हुए बेजा इस्तेमाल के बारे में मुल्कों को खबरदार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। भारत ने ब्रिक्स मुल्कों पर जोर दिया है कि वो बैनुल-अक़वामी तिजारत में कारोबार करने वाली ख़वातीन और ख़वातीन की ज़ेरे क़यादत इदारों के लिए मौके बढ़ाने की खातिर मिलकर काम करें। भारत ने सैलाब से मुतासिरा नेपाल के लिए इमदादी सामान की 8वीं परवाज मखसूस टनल टीम और फॉरेंसिक माहिरीन के साथ इमदाद तेज कर दी है। एटमी तवानाई से मुतालिक बैनुल-अक़वामी एजेंसी ने एटमी मामले पर तावुन न करने पर ईरान का मामला अक़वाम-ए-मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के पास भेजा है। माली उमूर से मुतालिक एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने माली जराइम के लिए गेमिंग और गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म के बढ़ते हुए बेजा इस्तेमाल के बारे में मुल्कों को खबरदार किया है। और टेनिस में US ओपन में मर्दों के सिंगल्स सेमीफाइनल में दो अमरीकी खिलाड़ियों बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो के दरमियान मुकाबला होगा। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर अभी तक आप उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात सुन रहे थे। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक वक्त मिलाइए दिन के 1:15 होने को है। पहली मजलिस का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म संगीत की। और इस फिल्म की जो सबसे बड़ी खासियत थी ना, वो थी माधुरी दीक्षित की दोहरी भूमिका। उन्होंने माँ और बेटी दोनों किरदार निभाए हैं। और एक तरफ वो एक ऐसी लड़की है जो अपनी आवाज के सहारे दुनिया को महसूस करती है, और दूसरी तरफ वो एक माँ है जिसके भीतर अपनी संतान से बिछड़ने का दर्द है। दोनों किरदारों के स्वभाव और भावनाओं में फर्क पैदा करना आसान नहीं था, लेकिन माधुरी दीक्षित ने इसे बहुत खूबसूरती से निभाया। और शायद के विश्वनाथ की संवेदनशीलता का असर भी यहाँ दिखाई देता है दोस्तों। उन्होंने फिल्मों में संगीत केवल गीतों के बीच आने वाला विराम नहीं होता था, मतलब अगर देखा जाए तो फिल्मों में उनका जो संगीत होता था वो हमेशा कहानी को आपस में जोड़ता था, कनेक्ट करता था। और संगीत फिल्म में भी वही बात हमने बार बार महसूस की है। और ये जो कहानी का एक हिस्सा बन गया इस फिल्म का संगीत, और चूंकि नाम भी फिल्म का संगीत है तो इसके गीतों का अलग तरह का होना बहुत लाजमी है। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं फिल्म संगीत में जो म्यूजिक था, म्यूजिक डायरेक्टर हैं आनंद मिलिंद, इनकी धुनें हैं, और जो गाने लिखे हैं वो संतोष आनंद ने लिखे हैं। और एक तरफ तो बहुत सारे भावुक और मधुर गीत भी हैं इस फिल्म में, लेकिन इस फिल्म का एक गाना जो हम लोग हमेशा याद करते हैं और अभी भी सुन करके एक अलग सी ऊर्जा और एक अलग सी चंचलता महसूस होती है, वो है जॉली मुखर्जी की आवाज में गाना है। और वो गाना देखिए कौन सा है। मैं मानती हूँ आप भी इस गाने को सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें एक अलग सी मस्ती है और इसमें जैकी श्रॉफ का जो एक अलग अंदाज आपको नजर आएगा वो आपको इस गाने को सुनकर दोबारा आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे जब आपने शायद पहली बार इस फिल्म को देखा था। तो आप इसे किस किसने संगीत फिल्म को देखा ये मुझे बताइए, और आपको इसमें कौन सा गाना सबसे बेहतरीन लगता है ये भी जरूर बताइएगा। लेकिन आप जब तक मुझे ये सवालों के जवाब दें तब तक मैं आपको ये वाला गाना, जी हाँ कौन सा, ये वाला जरूर सुनाना चाहूंगी।

जलवानी रे सुनो हसीना, अरे सुनो हसीना, जलवानी मेरा कुछ पता

जी हाँ, आप लोगों से पता पूछने की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बकायदा बहुत खूबी के साथ हमारे साथ जुड़ जाते हैं और इतनी खूबसूरत बातें आपके साथ में हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं ना। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ हमारे साथ कौन कौन जुड़ी है। हमारे साथ जुड़ी है हरजिंदर सिंह भाटिया, ये स्टेशन रोड जमशेदपुर से है। इनके साथ एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया और तमन्ना भाटिया। फिर हमारे साथ हैं जगराम साहू, और ये है हमारे साथ ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। और ये कह रहे हैं कि हमने ये फिल्म देखी है पर बहुत पहले, और आज आपके साथ इस फिल्म को दोबारा देख रहे हैं। देखिए, यही तो बात है ना कि हम लोग हमेशा पुराने लम्हों को दोहराते रहते हैं और यही रेडियो का सबसे बेहतरीन रूप है, है ना। और देखिए यहाँ पर हमारे साथ फिर कौन है, ये है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से। और संगीत पिक्चर के बारे में वो कह रहे हैं कि इन्हें इन्फॉर्मेशन, मूवी सॉन्ग सब बहुत अच्छे लग रही है। थैंक यू सो मच। फिर है हमारे साथ हीरामणि वर्मा ततरंगी भाटापारा से, और इन्हें भी फिल्म के बारे में बातें सुनकर अच्छा लग रहा है। संजय ढींगिया जी है, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। यशु निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह, और ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, फिर अपने चिरपरिचित अंदाज में कौन हमारे साथ है, धर्मेंद्र छीपा जी, और ये इन्होंने सब कुछ बता दिया है कि इसमें क्या क्या है, और इन्हें अच्छी लग रही है जानकारियां। ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा धर्मेंद्र जी, और शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपके साथ है कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार, और फिर है संदीप मक्कड़ जी, इनके साथ हैं ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, धर्मवीर जी, और ये धर्मवीर जी दिल्ली वाले पिंगा वाला चौक गोरैया जालंधर से हमारे साथ जुड़े हैं। फिर देखिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए हमारे साथ। फिर बाकी दोस्तों के बारे में भी बताऊंगी कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है, लेकिन इसके पहले आइए हम लौटते हैं फिल्म संगीत की ओर, जहां पर हम आपसे बात कर रहे हैं 1992 में रिलीज हुई फिल्म संगीत के बारे में, जिसमें माधुरी दीक्षित की दोहरी भूमिकाएं थी, साथ में थे जैकी श्रॉफ। और अगर हम इस फिल्म की बात करते हैं ना, तो दोस्तों इस फिल्म में ना एक बहुत अलग सी बात है। देखिए, इसमें प्रेम तो है, रोमांस है, प्रेम है, लेकिन इसके साथ में प्रेम के कई रूप हैं। एक है हुनर

पर विश्वास करना, खुद पर विश्वास करना, किसी का हाथ थामकर आगे बढ़ना, और फिर है माँ और बेटी का एक रिश्ता, और सबसे बढ़कर है अपने होने की पहचान तलाशना। एक नेत्रहीन लड़की के लिए संगीत सिर्फ कला नहीं है, वो उसकी दुनिया को समझने का माध्यम है। और हम दुनिया को आंखों से देखते हैं, लेकिन वो उसे सुरों से महसूस करती है। और यही इस फिल्म का सबसे सुंदर विचार लगता है कि दुनिया को देखने के लिए आंखें जरूरी हैं, लेकिन उसे महसूस करने के लिए संवेदनशील मन सबसे ज्यादा जरूरी है ना?

अनुराधा पोंटवाल के साथ आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर की आवाज में ये बहुत प्यारा संगीत। और देखिए हम लोग बात कर रहे हैं फिल्म संगीत की, तो इसमें सेतु की भूमिका में जैकी श्रॉफ थे और निर्मला

यानी माँ की भूमिका में माधुरी दीक्षित और संगीता फिर से माधुरी दीक्षित। तो अपनी डबल रोल के साथ हमें माधुरी दीक्षित इस फिल्म में नजर आई है। इनके साथ में जो बाकी कलाकार थे वो थे नीतीश भारद्वाज, परीक्षित साहनी, शफी इनामदार, अरुणा ईरानी, आशा शर्मा, सतीश शाह और अंजन श्रीवास्तव। देखिये फिल्म का जो अगर हम कथानक की बात करते हैं तो अगर संक्षेप में आपको कहानी के बारे में बताऊं तो जो सीनियर माधुरी दीक्षित है मतलब निर्मला जी सेतु को एक लोक गायक को सुनती है एक जगह परफॉर्म करते हुए वही वाला गाना सुनो हसीना काजल वाली। तो वो सुनकर के वो उसे अपने यहाँ पर अपनी पार्टी में इनवाइट करती है कि आप यहाँ पर आकर के यहाँ पे अपना यहाँ पर हमें अपने गाने सुनाइएगा परफॉर्म कीजिएगा। लेकिन चूंकि घर वालों को इस तरह के छोटे आदमी का इतना ज्यादा मेल जोल अपनी घर के साथ में या घर वालों के साथ पसंद नहीं आता इनकी हस्बैंड को मतलब इनके पति को निर्मला जी के, तो बस वहीं से कहानी मोड़ लेती है। लेकिन चूंकि बेटी को प्यार हो जाता है सेतु के साथ तो कहानी में एक अलग ही मोड़ आते हैं और ये सारे मोड़ आपने अपने आप देखे हैं। और कहानी को दोहराने की अभी आपको मैं उस दौर में जरूर ले जाना चाहूंगी जब आपने इस कहानी को जरूर देखा होगा, दोबारा आप उस चीज को महसूस भी करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं हमारे साथ कौन कौन जुड़ी है। देखिए हमारे साथ जुड़ी है अब्दुल गफ्फार जी नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से और इनके साथ हैं देखिए इनका तखल्लुस कितना अच्छा है अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, फिर अब्दुल हक डावर, जिया उल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे और भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी जी। फिर हमारे साथ जुड़े हैं देखिए ये हैं चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा और इन्होंने लिखा है सुनो हसीना काजल वाली के बारे में लिखा है, वो तो गाना मैंने आपको सुना दिया सर। फिर हमारे साथ हैं ये हैं अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश कुमार भावसार और सनी भावसार, सुर संगम रेडियो श्रोता संघ और ये है विरम गांव गुजरात से हमारे साथ जुड़े। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फिर है पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर, नलेश्वर नगर, नरवील, जिला बुलढाणा से हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और हमारे साथ हैं सहारनपुर कुमार हैड़ा से सैयद मसरूर, शाइना हसन अक्सा, अदीब नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और इन्होंने भी फिल्म के बारे में बात की है, शुक्रिया। और हमारे साथ बस आप लोग बने रहिए, अच्छा लगता है। देखिए ये कौन है, ये है आपको हमारी प्रस्तुति सुंदर लगी उसके लिए शुक्रिया। ये लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना हर्षित, खुशी गोस्वामी, रघुनाथपुरा, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान से। तो शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। हम बात कर रहे हैं 1992 में रिलीज हुई फिल्म संगीत की, आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक और गाना।

दोस्तों हम बात कर रहे हैं संगीत की, और अगर इस फिल्म के बारे में बात करें तो कहते हैं कि हर फिल्म की कीमत उसकी कमाई से तय नहीं होती, और इस फिल्म को अगर बॉक्स ऑफिस में इसकी कमाई की बात करें तो ये असफल फिल्मों की श्रेणी में आती है, लेकिन इस फिल्म का जो गीत है वो पुरस्कारों तक जरूर पहुंचा। मैं बात कर रही हूँ ओ रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, इस गाने की। इस गाने में ना अनुराधा पौडवाल को 1993 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका की श्रेणी में नामांकन मिला था, और माधुरी दीक्षित के लिए भी ये फिल्म खास थी क्योंकि इन्होंने इसमें दोहरी भूमिका निभाई थी, और इसके बाद में उन्होंने अगले ही साल एक और फिल्म में फिर से माँ बेटी की भूमिका निभाई है। तो आज हमने याद किया, फिल्म संगीत के बारे में हमने बातें की, और इस फिल्म के गानों के जरिए इस फिल्म को दोबारा आप तक लाने की कोशिश हमने की, लेकिन उनकी धुनें समय के साथ अपनी जगह बना लेती हैं, जिनकी धुनें हमारे दिल में जगह बना लेती हैं, है ना। संगीत भी शायद ऐसी ही फिल्म है, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक लड़की अपनी आवाज के सहारे अपनी आवाज अपनी पहचान तलाश रही है, और हमें आखिर में यही बात याद रह जाती है कि आवाज को रास्ता दिखाने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, अगर सुर सच्चे हों तो संगीत अपना रास्ता खुद बना लेता है, और ये इस फिल्म के गीतों के जरिए हमें बखूबी समझ में आता है। तो आज हमने याद किया 1992 की फिल्म संगीत को, और एक ऐसी फिल्म जिसकी कहानी भी सुरों से कही गई और रिश्ते भी, और शायद इसीलिए इतने साल बाद भी जब इसका कोई गीत बजता है तो लगता है कुछ धुनें पुरानी नहीं होती, बस हमारी यादों में थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है।

दोस्तों आप सुन रहे थे एक ही फिल्म से कार्यक्रम, और इसमें आज हमने सुना फिल्म संगीत के बारे में, हमने अपनी यादों को ताजा किया। ये कार्यक्रम आपने अपनी रेडियो हम सफर सोनाली के साथ तय किया। अब दीजिए मुझे इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, 1:40 होने वाले हैं, आइए सुनते हैं पंजाबी में समाचार।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है।

बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। क्रिकेट में आज शाम दुबई में खवातीन एशिया के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा और यूएस ओपन में आज मर्दों के सिंगल्स का सेमीफाइनल खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमा के अपने हम मनसबों के साथ आला सतही दोतरफा मीटिंगें की। नई दिल्ली में ज़राअत और जंगलात से मुतालिक नवें आसियान भारत वजारती मीटिंग के मौके पर कल ये मीटिंगें हुई। मलेशिया के ज़राअत और खुराक की यकीनी फराहमी के वजीर मोहम्मद बिन साबू के साथ मुलाकात के दौरान जनाब चौहान ने मालूमात, महारत और बेहतरीन तौर तरीकों के तबादले की अहमियत पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने मुश्तरका ज़रई तहकीक, टेक्नोलॉजी और इख्तरा के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करने पर भी दिलचस्पी का इजहार किया। इस दौरान जनाब चौहान ने म्यांमा के ज़राअत के वजीर मिननाओंग के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान वजीर मौसूफ ने कहा कि ज़राअत और उससे वाबस्ता शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने की खातिर दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमतनामे आखिरी मरहले में हैं। आलमी सेहत तंजीम WHO के डायरेक्टर जनरल डॉ टेड्रोस अधानोम गेब्रेसिस ने तिमोर लेस्ते के दिल्ली में जम्मू मशरकी एशिया के लिए WHO की इलाकाई कमेटी के 79वें इजलास के मौके पर सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। डॉ टेड्रोस ने खासतौर से जच्चा बच्चा की सेहत और गैर मुतअद्दी बीमारियों से निपटने के सिलसिले में सेहत के मामले में भारत की नुमायां हुसूलियाबियों की सताइश की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि 1,60,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए भारत ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और आम कैंसर के सिलसिले में स्क्रीनिंग को मुस्तहकम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की आशा वर्कर सेहत की देखभाल की एक और ताकतवर मिसाल हैं, जो जहां लोग हैं वहां पहुंचती हैं और माओं और बच्चों को हमल से लेकर बाद तक मदद फराहम करती हैं। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि टीकाकारी में तौसी और इदाराजाती जच्चगी में इजाफे से जच्चा बच्चा अमवात में खातिरखा कमी आई है। ब्रिक्स समिट 2026 से पहले दिल्ली पुलिस ने बढ़ती हुई सिक्योरिटी तशवीश के मद्देनजर इस माह की 14 तारीख तक 8 से कौमी राजधानी में ड्रोन उड़ाने और मुख्तलिफ दीगर छोटे फजाई प्लेटफार्म्स पर मुकम्मल पाबंदी नाफिज कर दी है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अनुराग कुमार ने समिट के लिए सिक्योरिटी बंदोबस्त के एक हिस्से के तौर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 163 के तहत ये अहकाम जारी किए हैं। ये पाबंदी पीर के रोज तक जारी रहेगी। तमिलनाडु में मदुरानताकम और धारापुरम रिजर्व असेंबली हलकों का जिमनी चुनाव 6 अक्टूबर को होगा। इसके लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जा रहा है। कागजात नामजदगी इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 19 सितंबर है। इधर डीएमके पार्टी ने दोनों हलकों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ये चुनाव अहमियत का हामिल है क्योंकि असेंबली इंतखाबात के बाद इत्तेहाद बदल गया है। TVK यानी तमिलगा वेत्री कड़गम की जेर क्यादत इत्तेहाद को सेक्युलर सोशल जस्टिस विक्ट्री अलायंस का नाम दिया गया है और कांग्रेस, VCK, IUML और MDMK जैसी पार्टियां उसकी नई इत्तेहादी पार्टियां हैं जो पहले DMK इत्तेहाद में शामिल थीं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके मुताबिक ईरान जंग नवंबर में होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात के बाद तक जारी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि खाम तेल की कीमतें इससे कबल नीचे नहीं आएंगी। जनाब ट्रंप ने कहा कि वो समझते हैं कि इन इंतखाबात के बाद जंग फौरी तौर पर रुक जाएगी। उन्होंने अपने इस दावे के बारे में शवाहिद पेश नहीं किए कि ईरान इन इंतखाबात को मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है। 7 महीने से जारी इस जंग ने खाम तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया है और ट्रंप की मंजूरी की दर्जाबंदी को मुतासिर किया है, जिसके सबब रिपब्लिकन इस जंग को खत्म करने का दबाव बना रहे हैं। जुलाई के बाद से कल पहली मरतबा खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल पर थी। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज के लिए ओडिशा में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने अगले 3 से 4 रोज के दौरान आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने तमिलनाडु, पुदुचेरी, क्राइकल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में इस माह की

0: 15 तारीख तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। बिहार में कई नदियों की आबी सतह नीचे आने की वजह से सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है। बचाव और राहत कार्य की कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक और बागमती नदियों की पानी की सतह नीचे आ गई है, जिसके सबब सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है। बचाव और राहत कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर और अरवल समेत 14 अजला में 40 लाख से ज्यादा अफराद इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं। राहत के कैंप खाने का सामान, तिब्बी सामान और मदद और दीगर अशिया फराहम कर रहे हैं। सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि तकरीबन 700 देही सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, जिससे सड़क कनेक्टिविटी मुतासिर हुई है। सड़कों की तामीर के वजीर इंजीनियर कुमार शैलेन्द्र ने अफसरान से सड़कों पर करीबी नजर रखने को कहा है और जैसे ही पानी की सतह नीचे होती है इन सड़कों की मरम्मत करने के अहकाम दिए हैं। निधिश्री की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एक मुकम्मल 270 रुकनी रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी का ऐलान किया है। रियासती सदर सामिक भट्टाचार्य की हिदायत के तहत वजीर आला शुभेंदु अधिकारी लिस्ट में सरफहरिस्त हैं और उन्हें तमलुक तंजीमी जिले के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा तालीम के मरकजी वजीर ममलिकत सुकांता मजुमदार को साउथ दिनाजपुर की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर ममलिकत को बोनगांव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत ने सैलाब से मुतासर नेपाल के लिए इंसानी हमदर्दी की इमदाद बढ़ा दी है। 35 टन इमदादी सामान के साथ भारतीय फजाइया का 8वां हवाई जहाज कल काठमांडू में उतरा। उधर नेपाल में अचानक सैलाब आने से मुतासर इलाकों में बचाव कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसमें रासोवा के मकाम पर वाकई टनल भी शामिल है, जहां भारतीय एहलकारों की टीम तलाश और बचाव की कार्रवाई में नेपाल की फौज के साथ मिलकर काम कर रही है। क्रिकेट में दुबई में खवातीन एशिया कप के सेमीफाइनल मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। भारत टूर्नामेंट में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगा। हरमनप्रीत कौर की टीम ने थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान को आसानी के साथ हराकर सभी तीन ग्रुप मैच जीते हैं। ग्रुप बी में बांग्लादेश श्रीलंका के बाद दूसरे मकाम पर है। भारत ने बांग्लादेश के साथ 24 टी20 मैचों में से 21 मैच जीते हैं और भारत की टीम पिछले 8 मैचों में बांग्लादेश के खिलाफ कोई मैच नहीं हारी है। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ एशिया कप में 2018 में जीत हासिल की थी, जब उसने भारत को हराकर खिताब अपने नाम किया था। यूएस ओपन टेनिस में मर्दों के सिंगल सेमीफाइनल में दो अमरीकी खिलाड़ियों बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो के दरमियान मुकाबला होगा। क्वार्टर फाइनल में 8वें नंबर के खिलाड़ी शेल्टन ने पांच सेटों के सनसनीखेज मुकाबले में पिछली बार के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हरा दिया, जबकि टियाफो ने अपने हमवतन एलेक्सिस माइकलसन को शिकस्त दी। शेल्टन और टियाफो दोनों ही अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इधर खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में कल पिछली बार की चैंपियन आर्याना सबालिंका का मुकाबला तीसरे नंबर की खिलाड़ी जेसिका पेगोला से होगा। और आखिर में खास खबरें यहीं पर। फिर ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मुश्तरका ज़राई तहकीक, टेक्नोलॉजी और इख्तरा के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करने की खातिर मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमा के अपने हम मनसबों के साथ दोतरफा मीटिंगें की हैं। आलमी सेहत तंजीम के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने जच्चा बच्चा की सेहत देखभाल के सिलसिले में भारत की नुमाया हसूलियाबियों की सताइश की है। उन्होंने तिमोर लेस्ते में सेहत के मरकजी वजीर जेपी नड्डा से मुलाकात की। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज ओडिशा में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में आज शाम दुबई में खवातीन एशिया के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों तथा भारत एवं विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमा के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में कृषि क्षेत्र में सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने मलेशिया के कृषि मंत्री मोहम्मद बिन साबू के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत के जरिए करने पर सहमति जताई। म्यांमा के कृषि मंत्री मिननोंग के साथ बैठक में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कृषि व्यापार की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में दालें, कपास, डेयरी विकास और कृषि शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली वार्षिक फिनटेक सम्मेलनों में से एक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का 7वां संस्करण मुंबई में चल रहा है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है पोटेंशियल टू इम्पैक्ट, एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय, आपस में जुड़े और वैश्विक सिस्टम। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आज तीसरा दिन है। एजेंटिक एआई एंड द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इन अ बिलियन यूजर नेशन विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि भारत में बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे और डू आईटीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन नीलेकणी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र समिति के 79वें सत्र के दौरान हुई। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर टेड्रोस ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के करीब 1,60,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर की जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने भारत के तपेदिक उन्मूलन, चिकित्सा उत्पादों के बेहतर नियमन और WHO को समर्थन देने के प्रयासों की भी सराहना की। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग

0: कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया। एक रिपोर्ट।
1: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफार्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, वीआईपी और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने ये भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: ब्रिक्स सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार दो दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है। श्री कुमार ने कहा कि वे राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों, बीएलओ और चुनावी साक्षरता क्लब ईएलसी के सदस्यों से बातचीत करेंगे। श्री कुमार आज शाम अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रमुख नागरिकों के साथ भारत में चुनाव विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विषय पर संवाद करेंगे।
2: गुजरात की पावन भूमि पर आने पर मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि भी और कर्म भूमि भी रहा है गुजरात। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी और गुजरात के कर्मठ बूथ लेवल ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, छात्र और छात्राओं के साथ आज और कल विभिन्न कार्यक्रमों में संवाद करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 270 सदस्यों वाली पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सूची में प्रमुख स्थान दिया है और उन्हें तमिलू संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमिलगा वित्तीय घर्षगम टीवीके के नेतृत्व वाले सेकुलर सोशल जस्टिस विक्ट्री गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन ने धरपुरम से सत्यबामा और मधुरंतकम से मरगथम कुमारवेल को मैदान में उतारा है। विपक्षी डीएमके ने मधुरंतकम से पारंथमन और धरपुरम से एस सुगन्या को उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए नामांकन 16 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी और 19 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1377 हो गई है। 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई, जहां 364 लोगों की जान गई। प्रभावित क्षेत्रों से 13600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है, जिसके तहत 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। कई नदियों का जलस्तर घट रहा है। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। जलस्तर में कमी के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य और तेज कर दिए हैं। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर, अरवल समेत 14 जिलों में इस समय 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। विभिन्न स्थानों पर लगाए शिविरों के माध्यम से भोजन, मेडिकल सहायता और राहत सामग्रियां प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं लगभग 700 ग्रामीण सड़कों के जलमग्न हो जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सड़कों की स्थिति पर निगरानी बनाए रखने और पानी निकलते ही इन्हें तत्काल ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से निरीश श्री।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तरी ओडिशा के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। विभाग ने आज मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल,

0: है और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। ईरान और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से जहाजों पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.1% बढ़कर 101 अमरीकी डॉलर और 86 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 74,804 पर, जबकि निफ्टी 12 अंक की बढ़त के साथ 23,443 पर था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णन स्वामीनाथन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अनीता विलियम्स से मुलाकात की। अधिकारियों ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक क्षमताओं, प्रस्तावित रक्षा खरीद और दोनों नौसेनाओं के बीच अधिक परिचालन सहयोग के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत ने महिला हॉकी जूनियर विश्व एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मौके में आज भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई, जबकि सनिका चंद्रकांत माने, मनु सिदार, सुप्रिया और रोशनी एंड ने दो दो गोल किए। भारत 12 सितंबर को सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से खेलेगा। अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में कल बेन शेल्टन का मुकाबला फ्रांसिस टियाफो से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में पिछले वर्ष के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 2:30 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सुनने वालों का स्वागत खैर मकदम करती हूं। मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, कार्यक्रम एक ही कलाकार में हम हर रोज आपको मिलवाते हैं एक अलग कलाकार से, एक ऐसे कलाकार से जो प्रतिभाशाली है और अपने

हुनर से, अपनी प्रतिभा से उसने हर किसी के दिल पर कब्जा किया हुआ है। तो आज इसी कड़ी में हम आपको, आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे व्यक्ति को जिसने फिल्मी दुनिया में बड़े बड़े सपने बनाए, और जब वो फिल्में बनाई तो वो भी बहुत ही ज्यादा भव्यता के साथ। और उनकी फिल्मों में रिश्तों की जो महक थी वो एक अलग तरह की होती थी। और अगर हम बात करें बॉलीवुड सिनेमा की कि उसको उन्होंने क्या दिया, तो भाई बॉलीवुड सिनेमा को दिया उन्होंने एक नया आसमान। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं धर्मा प्रोडक्शन के संस्थापक, सिनेमा जगत के दिलदार और मसीहा करण जौहर के पिता यश जौहर जी को।

जी दोस्तों, कोई मिल गया और वाकई में बॉलीवुड सिनेमा को कोई मिल गया और वो कोई थे यश जौहर साहब। दोस्तों कहते हैं जो सपने हैं वो देखना बहुत आसान होता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करना, बड़े पर्दे पर पूरी भव्यता के साथ में उन सपनों को दिखाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और ये काम किया यश जौहर साहब ने। ये वो एक सिर्फ निर्माता नहीं थे, बल्कि वो कहानियों में जान फूंकने वाले जादूगर थे। गाइड, ज्वेल थीफ्स जैसी फिल्मों में उन्होंने प्रोडक्शन संभालना शुरू किया, और उसके बाद अग्निपथ, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने दी, जिनसे हर किसी ने प्रेरणा ली। और आज भी अगर कोई फिल्मी दुनिया में बनना चाहता है, निर्माता निर्देशक, तो वो उनकी इन्हीं फिल्मों से सीखता है। तो आज का ये कार्यक्रम उन्हीं को समर्पित है। तो दोस्तों करते हैं इस कार्यक्रम का आगाज इस खूबसूरत से गीत के साथ, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में।

दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब महान बनता है या बड़ा सफर शुरुआत करता है तो उसकी जो शुरुआत होती है वो अक्सर छोटी छोटी गलियों में लेकिन बड़े बड़े सपने देखते हुए होती है। और बिल्कुल ऐसी ही कुछ कहानी है यश जौहर साहब की।

फिल्मी दुनिया में इतना बड़ा नाम कमाने से पहले यश जौहर का जो लाइफ है वो भी बहुत स्ट्रगल से भरी हुई थी, और उनकी शुरुआत हुई लाहौर में उनकी पैदाइश से। उनका जन्म लाहौर में हुआ। विभाजन के बाद उनका परिवार दिल्ली पहुंचा और यहां जौहर स्वीट्स के नाम से उनकी मिठाई की दुकान थी। उनका परिवार जब लाहौर छोड़कर दिल्ली आया तो सब कुछ छूटा। परिवार थोड़ा तंगी का सामना उन्होंने किया, लेकिन यश जौहर साहब ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से शिक्षा दीक्षा हासिल की, और उसके बाद उनकी फैमिली चाहती थी कि वो कोई सुरक्षित नौकरी लें, कोई गवर्नमेंट जॉब करें या फिर बिजनेस करें, लेकिन यश जी का जो दिल था वो धड़कता था सिनेमा के लिए। फोटोग्राफी का उन्हें जुनून था और अपने इसी जुनून को पूरा करने के लिए अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और कुछ पैसों को लेकर वो पहुंच गए बॉम्बे यानी कि मुंबई। मुंबई आकर उन्होंने न्यूज़पेपर में और पत्रिकाओं में एक फोटोग्राफर के रूप में काम करना शुरू किया, और यहीं से उनके कांटेक्ट में आए फिल्मी कलाकार, कुछ फिल्मी निर्माता निर्देशक, इन सब के संपर्क में आए, और यहीं से उनके जो उनका करियर है उसमें आया टर्निंग प्वाइंट। जी हाँ दोस्तों, यश जी के काम और उनके काम को लेकर डेडिकेशन को देखकर अभिनेता देवानंद जी ने उन्हें अपने बैनर नवकेतन फिल्म्स में शामिल किया। नवकेतन में आने के बाद में उन्होंने एक सहायक के रूप में वहां पर काम किया, और उसके बाद गाइड, ज्वेल थीफ, प्रेम पुजारी जैसी फिल्मों में उन्होंने एक सहायक के रूप में काम किया। तो लीजिए, बाकी के सफर को हम अभी थोड़ा विराम देते हैं और सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में ज्वेल थीफ फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत।

0: उनकी सफर की शुरुआत हो चुकी थी नवकेतन से, और यहीं पर उनकी जिंदगी में एक और बदलाव आया। जी हाँ दोस्तों, नवकेतन फिल्म्स में वो प्रोडक्शन कंट्रोलर के रूप में काम किया। उन्होंने गाइड ज्वेलथीफ जैसी सुपरहिट फिल्मों के पीछे उन्हीं का कुशल प्रबंधन था, और इसके बाद वो संपर्क में आए सुनील दत्त साहब के। जी हाँ, सुनील दत्त साहब ने जब उनको देखा कि वो काम को लेकर कितने डेडिकेटेड हैं और ईमानदार भी हैं, तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई आप दूसरों के लिए काम करते रहते हैं, आप दूसरों के लिए काम करने के लिए नहीं बने, बल्कि अपने खुद के लिए काम करो, अपनी खुद की कंपनी शुरू करो। उनके दिए हुए इसी हौसले की वजह से 1976 में नींव पड़ी धर्मा प्रोडक्शन की। जी हाँ दोस्तों, धर्मा प्रोडक्शन 1976 में बना, और उसके बाद अग्निपथ फिल्म उन्होंने बनाई, जो कि यश जी के दिल के बेहद करीब थी। अमिताभ बच्चन की भारी और कड़क आवाज वाला जो एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट उसमें किया था, वो बिल्कुल नया था। वैसे यश जी जो हैं, वो अपनी जो उनकी एक शैली थी उस पर वो पूरा भरोसा रखते थे, और वाकई में वक्त ने बिल्कुल साबित किया कि यश जी की जो पारखी नजर है वो कितनी सही थी। तब वो फिल्म अग्निपथ भले ही ना चली हो, मतलब उतना ज्यादा उसने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन आज के वक्त में अग्निपथ इंडियन सिनेमा की एक सबसे बड़ी क्लासिकल फिल्म मानी जाती है। तो लीजिए सुनते हैं उसी फिल्म से एसपी बालासुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाज में ये गीत।
1: मेरे जानो,
2: तुझे डर लगती है?
1: मेरे बालम,
2: तेरा भाषण को मारती।
1: तुझे सलाम, मेरे हीरो, मेरे जानो, मेरे बालम, तुझे सलाम।
2: अय्यो कृष्णन अय्यर यम, ये के इतने सारे नाम।
1: तूने क्यों मुझे बचाया?
2: बस अपना फर्ज निभाया।
1: क्या तू कुछ भी कर जाता?
2: कर जाती।
1: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
2: अच्छा अच्छा, कर जाता।
1: मेरे लिए मर जाता?
2: हाँ मर जाता।
1: ओह माय गॉड,

यश जौहर साहब फिल्मों को जब बनाते थे उस वक्त सेट पर कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती थी। हर छोटे बड़े क्रू मेंबर का ध्यान रखना बिल्कुल अपने परिवार की तरह वो अपनी जिम्मेदारी समझते थे। और जब उनके बेटे करण जौहर ने फिल्म कुछ कुछ होता है से फिल्म निर्देशन में कदम रखा तो यश जी ने प्रोडक्शन का जो लेवल था वो सेट पर शूटिंग नहीं बल्कि किसी फेस्टिवल के जैसा किया। जी हाँ दोस्तों, सेट पर काम करने वाला हर इंसान के लिए वो एक निर्माता से ज्यादा पिता के समान थे। एक पिता की तरह वो ध्यान रखते थे हर एक क्रू मेंबर का। और उनका जो ये अपनापन था, ये जो रिश्तों को गर्माहट देने का जो तरीका था यश जी का, वो एकदम अलग था। और शायद यही वजह है कि वही गर्माहट उनकी फिल्मों में भी दिखाई देती है। तो लीजिए सुनते हैं दोस्तों एक और खूबसूरत सा गीत उन्हीं की फिल्म से।

मनोहर साहब के बारे में। हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। अस्तुपुरा मऊ से हमारे साथ जुड़े हैं मजहर अली अंसारी, राजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से जुड़े हैं आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल आजाद। अगला जो संदेश हम तक आया उसको भेजने वाले हैं धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया आयान बाबू, इशाक मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से, इनके साथ हैं खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा के साथ। अगला संदेश हम तक आया है और उसको भेजने वाले हैं कराची से अमर रमेश कुमार खत्री टेलर, मास्टर कृष्ण लाल खत्री और शंकर गुल शर्मा बेरानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बबरपुर बसना से राधेश्याम देवांगन, श्रीमती चंपा देवांगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जुड़े हैं हमारे साथ और बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तुलसी मस्कीन, रीना मस्कीन जी के साथ, आशीष राजा, डब्बू सम्राट, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित और केशु रिदान खुराना हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ आपने कार्यक्रम का आगाज किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चिरमिरे कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव और ऋषभ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवा गो प्रेम कपिल शिवांश, संगीता जी हमारे साथ जुड़े हैं जिला पश्चिम सिंह भू चाई बासा झारखंड से, गावना थाना पंजाब से अर्जिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता गीता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमारे साथ जुड़े हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक जी के साथ में। संबलपुर कांकेर से पागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से और शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हीरामणि वर्मा जी जुड़े हैं दतरंगी भट्टापारा से और नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज हिमांशु सुधार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये अगला संदेश आया बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया का। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान छिपा और पूजा परिहर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लिखते हैं कि इन्हें दोस्ताना मुकद्दर का फैसला, गुमराह, कुछ कुछ होता है, कल हो ना हो, कभी खुशी कभी गम जो है वो फिल्में इन्हें बहुत पसंद है। और अगला संदेश आया है सुदर्शन मुखी अनिता जी का, सिमरन मुखी के साथ शांतिनगर सोनीपत से। और ये अगला जो संदेश है वो हम तक पहुंचाया है प्रकाश वर्मा प्रिंस और निखिल यशस्वी वर्मा जी ने और छत्तीसगढ़ पलारी से। अगला संदेश हम तक आया है और इसको पहुंचाने वाले हैं हम तक देवशंकर तामुरिया जी, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया के साथ और इनके साथ हैं पोता मास्टर अल कबीर और ये डोंडी लोहार बालोद छत्तीसगढ़ से उन्होंने हम तक ये संदेश पहुंचाया है। दोस्तों कार्यक्रम एक ही कलाकार और जो वक्त का पहिया वो बहुत तेजी से दौड़ता जा रहा है, पता ही नहीं चला कब ये वक्त हमारे अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। और आज हमने इस कार्यक्रम में याद किया एक ऐसे महानिर्माता को जिन्होंने हमें सिखाया कि सिर्फ पर्दे पर नहीं बनती हैं फिल्में बल्कि वो सीधे दिल में उतरकर करोड़ों दिलों पर राज करती हैं। यश जौहर साहब की जितनी भी फिल्में बनी हैं उनके संस्कार, सादगी और सिनेमा के लिए उनका जो निस्वार्थ प्रेम था वो उनकी फिल्मों में दिखाई देता है और भारतीय सिनेमा के पन्नों में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। दोस्तों अब चलते चलते यश जी के जिंदगी के दर्शन को समेटते हुए मैं यही कहूंगी, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं बल्कि सपने तो वो हैं जो हमें सोने ही ना दें और हम उन सपनों को पूरा करें जैसे कि यश जी ने किया। तो दोस्तों अब मैं प्रीति आपसे चाहूंगी इजाजत, फिर से मिलने के वादे के साथ मैं लूंगी अनुमति, फिर आएंगे किसी और कलाकार के साथ। छोड़े जाती हूं आप सभी के लिए उन्हीं की एक और खूबसूरत सी फिल्म से, सोनू निगम की आवाज में यह खूबसूरत सा गीत। नमस्कार।

आप हमें सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। सामने आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें निश्चित की जाएंगी। 3:15 पर सुनिएगा फिल्मी नगमों पर अपने प्रोग्राम मेरी पसंद। 3:30 हम पेश करेंगे प्रोग्राम अंदाज़ी नजर। आज इस प्रोग्राम में सुनिएगा एक मुबाहिसा, मौजू है उर्दू फिक्शन में हिंदुस्तानी असातीर। 4 से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नशर होने वाले प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम में 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से और दूसर बिस्क नशरियात। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, शगुफ्ता यास्मीन से खबरें सुनिए। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मुश्तरका ज़रई तहकीक टेक्नोलॉजी और इख्तरा के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करने की खातिर मलेशिया, तैमूर लेस्ते और म्यांमा के अपने हम मनसबों के साथ दोतरफा मीटिंगें की हैं। आलमी सेहत तंजीम के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेसिस ने जच्चा बच्चा की सेहत देखभाल के सिलसिले में भारत की नुमाया हसूलियाबियों की सताइश की है। उन्होंने तिमोर लेस्ते में सेहत के मरकजी वजीर जेपी नड्डा से मुलाकात की। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज ओडिशा में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। क्रिकेट में आज शाम दुबई में खवातीन एशिया के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा और यूएस ओपन में आज मर्दों के सिंगल्स का सेमीफाइनल खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमा के अपने हम मनसबों के साथ आला सतही दोतरफा मीटिंगें की। नई दिल्ली में ज़राअत और जंगलात से मुतालिक नवें आसियान भारत वजारती मीटिंग के मौके पर कल ये मीटिंगें हुई। मलेशिया के ज़राअत और खुराक की यकीनी फराहमी के वजीर मोहम्मद बिन सापू के साथ

इस रकम के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत प्रोग्राम अंदाज़े नजर।

0: ये राहु है और एक केतु है और इन दोनों की अपनी कश्मकश है और इन्हीं का ये जो आपस की उनकी कश्मकश है और जो कहना चाहिए कि उस पूरे निजाम में उनकी जो हैसियत है, तो कभी वो चांद को अपने बस में कर लेते हैं, चांद की रोशनी को वो कहना चाहिए कि प्रसव कर लेते हैं, तो कभी सूरज।
1: ये तो ये गहन मिसाल दी आपने, क्योंकि उर्दू फिक्शन में जो हम देखते हैं तो अफसाने के हवाले से पहला ये आता है कि कौन सी देवमालाई कहानी लिखी गई, तो आमतौर से ग्रहण का ना जिक्र आता है राजेंद्र सिंह बेदी के, उसमें राहुल भी है, केतु भी है, भैरव भी है, ये सारे किरदार हैं। तो हम देखते हैं कि एक तरह से वहीं से शुरुआत होती है असातीर की, उससे पहले लिखे गए थे लेकिन उस तुल के तौर पर नहीं जिक्र किया गया, जैसे गणेश का या पार्वती का। क्या खर्च साहब,
2: मेरे ख्याल में मैं तो आग का दरिया से शुरू करूंगा अगर आप मुझे इजाजत दे तो। दो तीन बातें जो बुनियादी तौर पर, जैसा कि जीना बड़े साहब ने कहा कि बुनियादी तौर पर दुनिया में जो कुछ हो रहा है बतौर इंसान उसको समझना, और एक इंसान की कोशिश होती है कि उसको एक्सप्लेन करना, उसकी वजाहत करना। उसके लिए जब साइंस इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी जितनी आज है, तो बहुत सारे मिथ अस्तूर जिसे कहते हैं वो हर इलाके में हर तहजीब में गढ़े गए। और जाहिर है कि हमारी जो हिंदुस्तानी तहजीब है वो भी एक बड़ी तहजीब है, उसका जो नैरेटिव है बहुत ग्रैंड है और बहुत वसी है, और उसके लिए किरदार बहुत सारे आते हैं। दूसरी तरफ ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी है जो तकरीबन मिलती जुलती है, वो भी बड़ी हैरत अंगेज है। बहुत बड़ा उनका इलाका तो नहीं है लेकिन उनका जो कहना चाहिए कहानियां और जो इमेजिनेशन है, तस्वीर है, वो बहुत हैरत अंगेज है। तो हमारे यहां मोटे तौर पे जो हिंदुस्तानी माइथोलॉजी या हिंदू माइथोलॉजी से हम कहते हैं समनियात, उसके लिए उर्दू लफ्ज या असातीर भी इस्तेमाल होता है, उसमें तीन बुनियादी गॉड्स हैं। ब्रह्मा जो खालिक है, क्रिएटर हैं, और उनकी शरीक हयात है सरस्वती। दूसरे विष्णु हैं जो प्रिजर्व करते हैं, आपकी जिंदगी को तहफ्फुज करते हैं, उनकी शरीक हयात लक्ष्मी है। और तीसरे शिव है, शरीर की हयात उनकी पार्वती है या दुर्गा, और जब वो गुस्से में आते हैं तो फिर वो तांडव करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। यानी इन तीनों देवताओं के हाथ में पूरी जिंदगी की इब्तदा से लेके और आखिर तक आपके हाथ में है। तो फिर हमारे यहां जो तहजीब जिस तरह से डेवलप हुई, आर्यन तहजीब आई, प्री आर्यन तहजीब आई, इंडस वैली की तहजीब आई, वैदिक तहजीब आई, तो इसमें जो किरदार है और मोटिव है बदलते हैं। और संस्कृत लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर जाहिर है कि बहुत रिच है, और जो मुकामी जबान है हमारी उनमें भी ये सारी माइथोलॉजी कहीं ना कहीं जाहिर होती है। तो बुनियादी तौर पे अच्छा, एक मार्क्सिस्ट स्कूल भी है सोशियोलॉजी में, वो तो इनको अनसाइंटिफिक कह के नजरअंदाज करते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे दानिश्वर हैं, इंतजार हुसैन खासतौर पर और दूसरे लोग हैं, वली आगा, उन्होंने जो मिथ है ना, ये अस्तूर और किस्सा गोई और दास्तान और दास्तानों में इनका इस्तेमाल तो बराबर किया है उन्होंने। इंतजार साहब तो कहते हैं कि मैं तो करबला भी देखूंगा और रामलीला भी देखूंगा क्योंकि ये दोनों मेरी तहजीब का हिस्सा है। तो ये सारे अस्तूर, ये सारे मिथ, ये मोटिफ जब अदब में, फिक्शन में चूंकि हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इस्तेमाल होते हैं तो एक अलग किस्म की तस्वीर बनती है।
0: देखिये, ऐसा है कि जब हम अस्तूर की बात करते हैं तो हमें जानना चाहिए कि दास्तान, जितनी भी दास्तान है, सब अस्तूर से भरी हुई हैं
2: जी,
0: और वहीं से मेरे ख्याल में ये चीजें आगे आई हैं। और इंतजार हुसैन के ताल्लुक से मैं एक बात ही बता दूं कि अब से चंद वर्ष पहले इंतजार हुसैन का मैंने और शमशेरान फारूकी साहब का इंटरव्यू किया था, एक लंबा इंटरव्यू जो बाद में शायद भी हुआ, तो उसमें बातों के दरमियान उन्होंने ये कहा कि हिन्दू माइथोलॉजी बहुत फैसिनेट करती है मुझे और मुझे बहुत ही मजा आता है, मैं उसमें से बहुत सी चीजें छानता हूं, फटकता हूं और फिर अपने ले लेता हूं। और इसीलिए उन्होंने पंचतंत्र का पूरा सिलसिला पढ़ डाला। तो हमने उनसे पूछा कि आपने क्या इन चीजों से फायदा उठाया, तो उन्होंने कहा हाँ, मैं इन चीजों से खूब फायदा उठाया और मैंने लिखा। तो एक तो ये इस तरह से उन्होंने उसको
2: कलीला और दिमना के नाम से अरबी में भी तर्जुमा हुई है ना,
0: हाँ,
2: पंचतंत्र
0: हुई है। तो ये जो इंतजार हुसैन थे वो उनके की सोच आम फिक्शन निगारों से जरा अलग हटकर थी। और वो ये सिलसिला आप उनकी कहानियां देखिए, मसलन जैसे जल्द कुत्ता है उनकी कहानी है, आखिरी आदमी, उनको पढ़ने के बाद आपको ये लगता है कि भाई ये कुछ अलग सा है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि इंतजार हुसैन ने जो शुरू किया वो उर्दू अदब

0: उसके इतना वाजे और इतना कंक्रीट नहीं लिखते हैं, टेक्निक उनकी ऐसी है जितना कुरुतुल हैदर हमारे यहां बाद का जो नावल है उनका चांदनी बेगम वगैरह, उसमें तो बहुत ही ज्यादा एक तरह का पोलिटिसाइज और पॉलिटिकल स्टेटमेंट बहुत ज्यादा है वो, और तरह किसी तरह के किस्म का लिखा हुआ नावल है ये, तो इसका शायद असर पड़ता है।
1: मैं ऐसा करूं अगर आप इजाजत दें।
0: जी जी,
1: इंतजार हुसैन के यहां ये जो फन का तखलीक का अमल है ये उड़ा हुआ नहीं है, उड़ा हुआ अगर होता खुदा न खास्ता तो फिर वो बात पैदा होती कि वह खारिज के हालात को देख रहे हैं, सियासत को देख रहे हैं और मसलहत क्या कहती है और रास्त गुफ्तारी हम नहीं कर सकते तो चलिए इसकी आर ले लेते हैं। ये भी कोई इसमें खराबी नहीं है, ऐसा हुआ है वहां भी। भाई अनवर सज्जाद ने यही तो किया, हमें लगता है कि अनवर सज्जाद ने बहुत ही शमी तौर पर किया है। इंतजार हुसैन का इंफिराद ये है कि वो उनके यहां चीजें उड़ी हुई नहीं है, जैसा मैं अर्ज किया कि वो बातिन में जज्ब कर चुके और फिर वो खुशबू उनके फूट रहा है।
2: उनके अलावा हमारी और भी हैं जिन्होंने अफसाने लिखे हैं, स्टोरी कहानियां लिखी हैं, मसलन सुरेंद्र प्रकाश जो है इन्होंने कई अफसाने बहुत अच्छे लिखे हैं, बाज गोई की है।
1: बाज़गोई।
2: तो बाज गोई को जिस तरह से इमरजेंसी पे उसका इंतबाह किया और उसको पिछले जमाने में शहरोजी के हवाले से ये किया है तो वो तो बेहद अच्छी कहानी है, लगेगा कि आप पिछली दुनिया में पहुंच गए हैं। या खालिद अशरफ साहब कुरतुल हैदर का जो जिक्र कर रहे हैं तो उनका एक अफसाना भी है जिसमें बजाहिर वो साइंस फिक्शन लगता है लेकिन उसमें उस्तूर है, उस्तूर इस तरीके से है रोशनी की रफ्तार की उनका अफसाना, तो वो कदीम मिस्र में पहुंच जाता है वो
0: टाइम मशीन में
2: और फिर वहां उस उस्तूर को बयान किया जो मिस्री उस्तूर है। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उस्तूर के हवाले से चार पांच मुल्क हैं जो बेहद सर्वतमंद है, एक तो यूनान है, रोम है, खुद हमारा हिन्दुस्तान है और जापान है। वैसे तो बहुत हर मुल्क का, हर कौम का, हर तहजीब का अलग अलग होता है और हिन्दुस्तान में तो बहुत ज्यादा है। अरविंद डिगा ने जो उनका जो नॉवेल था द वाइट टाइगर, तो उसकी इब्तदा यहां से करते हैं कि हमारे यहां तरीका यह है कि किताब शुरू करने से पहले भगवान की अर्चना करते हैं। तो मेरे सामने कई मतबादिल हैं, एक मुसलमानों का खुदा है जिसकी अर्चना करें, या फिर एक ईसाइयों के तीनों खुदा है जिसकी अर्चना करें, या फिर हिन्दुओं के 3,65,00,000 हैं। तो अगर ये मान लीजिए कि हर भगवान से कोई ना कोई उस्तूर जुड़ा हुआ है तो इस एतबार से देखें तो यूनान और रोम से ज्यादा पावरफुल जो है और ज्यादा सर्वतमंद हमारे हिंदुस्तानी असल है, बहुत ज्यादा।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वो ज्यादा फैला हुआ है
2: जी,
3: ज्यादा वसी है तो वो कहीं बेहतर है। ये तो हिंदुस्तान का हमारा जो माशरा है और सब कुछ बहुत वसी है, बहुत फैला हुआ है।
0: सर नंद किशोर विक्रम साहब ने भी एक नॉवेल लिखा था जो ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ, 19वां अध्याय, वो महाभारत के बैकग्राउंड में पार्टीशन से, चूंकि पार्टीशन को उन्होंने बहुत देखा था और पार्टीशन में सफर भी किया था उन्होंने, वो भी एक अच्छा नावल है। फिर उनका हुसैन उमर साहब का एक नावल आया अवास में खाब, उसमें जो मरकजी किरदार इस्माइल वो कोकाफ के पार भी देखता है, इसी तरह बानो कुटसे का नावल राजा गीत।
3: खालिद अशरफ साहब बताएं कि ये जो हिंदुस्तान में इंतजार हुसैन के बाद जो उस्तूर का एक सिलसिला चला जिसका अभी जिक्र हम लोग कर रहे थे, क्या ये इंतजार हुसैन का इफेक्ट है या ये एक फितरी बहाव के तहत ही आया है?
2: नहीं, हमारे यहाँ ये लोग लिख रहे थे ना, बेहदी लिख रहे थे, ग्रहण है, लाजवंती में उस्तूर है, अपने दुख मुझे दे दो में है, जो चांद का है। खालिद साहब एक बहुत अच्छा अफसाना है मुझे याद आ गया अभी, जोगिंदर पाल साहब का इफ्रीत, उसमें रावण का उस्तूर है ना, दिल्ली का एक की कहानी है कि रामलीला खेला जा रहा और किस तरह उसमें रावण दहशतगर्दी जोड़ने की कोशिश की है।
0: वो बच्चा कहता है कि माता जी को साथ क्यों नहीं लाए रामलीला देखने, कहते उन्होंने तो रावण ऑलरेडी बहुत देखे हुए हैं। वो है अफसाना बिल्कुल जदीद, उससे जुड़ता है। लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगता है इसमें कि कुरतुल हैदर और इंतजार हुसैन के बाद उर्दू में जो माइथोलॉजी से कहते हैं अस्तूर मेन स्ट्रीम में नहीं आई।
1: आप इजाजत दें तो मैं ये अर्थ करूं, अभी इफरीत का हम लोग जिक्र कर रहे थे, मेरे नजदीक इफरीत जो है वो पंचायत बन पा रहा है, उस तरह से उसकी जो एक नामियाती वजूद होना चाहिए फन पारे का वो इफरीत में नहीं मिलता और यहां वो कमजोर पड़ जाते हैं, जबकि हमारे जोगिंदर पाल साहब बहुत बड़े फनकार हैं और बड़ी अजीब चीजें लिखी, लेकिन इफरीत में जरा सा وہ مات بن نہیں پاتی.
2: ہاں مطلب وہ اس کو اس طریقے سے
1: سوچے سمجھے ڈھنگ سے آپ اس کو دو جمع دو چار کی طرح عفریت کو استعمال کر رہے ہیں.
0: ایک افسانہ ان کا بہت اچھا گرنتھی بھی ہے جس میں انہوں نے سکھ جو موٹیوس ہیں اور سکھ جو سمبلس ہیں ان کو بھی بڑے خوبی کے ساتھ استعمال کیا ہے.

0: जो
1: जी
0: सुप्रपाल साहब जाहिर है कि बड़े
1: अब ये
0: राइटर
1: जो
0: थे हमारे।
1: गुफ्तगू रही थी कि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा उस्तूरी अफसाने नहीं लिखे गए, मुझे लगता है कि काफी लिखे गए हैं। एक तो खुद सलामुद्दीन रज़ाक की देखिए
0: अभी
1: कितने अफसाने,
0: जिक्र
1: उसका
0: आया,
1: जिक्र आया आप
0: अभी
1: लोगों ने
0: जिक्र
1: किया।
0: आया।
1: मुमताज शरीफ के 5-6 अफसाने हैं, सरस्वती जी पे हैं, शिव जी पे हैं, बुद्धिस्ट पे हैं, इसके अलावा और बहुत सारे हैं। जोगिंदर पाल हैं, ये लिख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ लिखेंगे। सूर्य प्रकाश है, इनके यहाँ उस्तूरी
0: नहीं,
1: अफसाने मिल
0: सूर्य
1: जाते
0: प्रकाश
1: हैं
0: का वनवास 81,
1: जी।
0: वनवास 81 में वो राम का ही वनवास है, और आज के जो सूरत हाल है उस पर उसका इंतबाह हो रहा है। राम तो आ गए थे वनवास के बाद लौट कर यहाँ, लेकिन सुरेंद्र प्रकाश के यहाँ राम लौट कर नहीं
1: हाँ जी
0: आते।
1: बिल्कुल
0: और राम राज्य की जो एक मिसाली मुमलकत का तस्वूर है वो उसी वक्त हकीकत बन सकता है जब राम लौट आते। राम नहीं आ रहे हैं तो वो मिसाली तस्वूर, उसके बरक्स जितनी खराबियां हो सकती हैं वो इस कदर हैं कि राम न आना बेहतर समझते हैं।
1: बिल्कुल इसी इसी मौजू पे श्री रामचंद्र जी को ही उस्तूर बना करके सैयद मोहम्मद अशरफ ने एक अफसाना लिखा। अफसाने का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी यही यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन फिजा देखकर के वो बहुत घबराते हैं।
2: अच्छा जी, ना बड़े साहब एक चीज और है, ये जो आजकल मैजिक रियलिज्म बहुत इस्तेमाल हो रहा है हमारे यहाँ, और लेटिन अमेरिका से आई थी 17 में ये टेक्निक, क्या ये कुछ मैजिक रियलिज्म और माइथोलॉजी, क्या इनमें कुछ चीजें मिलती है, कुछ मुश्तरक है? जैसे
0: देखिए,
2: मुझे
0: ये
2: लगता है
0: मैजिक
2: कि
0: रियलिज्म उस तकनीकी रिवायत से जुड़ी हुई है जिसे हम उस्तूर साजी का अमल कहते हैं।
2: जी
0: यहां उस्तूर साजी हो रही है लेकिन आज के सियाक में हो रही है, अपनी जात के सियाक में हो रही है, और इस बस यही अमल है वहां जो दूसरी सियाक में हो रहा है। आप सही कह रहे हैं,
1: बिल्कुल, क्योंकि वाकयात और
2: क्रिश्चियन
1: किरदार
2: माइथोलॉजी
1: जो
2: का
1: है
2: उसमें
1: वो
2: काम।
1: बिल्कुल
2: जी
1: उस्तूर जैसे ही है। मुहय्यरुल उकूल है, काबिले यकीन है ना, माफोकुल फितरत है। और मैजिक रियलिज्म में भी
2: ख्वाब है,
1: तकरीबन,
2: मिक्स
1: लेकिन
0: है।
1: वो तो टेक्निकल है, मैजिक
0: अब देखिए,
1: रियलिज्म
0: हमारा
1: मास्टर रियलिज्म है।
0: अब्जर्ड आर्ट का एक पूरा दबिस्तान रहा,
2: जी
0: चाहे वो अब्जर्ड ड्रामा हो चाहे अब्जर्ड फिक्शन हो। तो ये अब्जर्ड फिक्शन बाज़ा कभी कभार तो हमें परेशान यूं करता है कि जो हमारी असातीर पर मबनी फन पारे हैं आम तारीख के लिए वो अब्जर्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि गिलगामिश क्या चीज है।
2: जी
0: हाँ, तो यानी जब कोई उस्तूर इस्तियारा बन जाता है और तारी उससे वाकिफ नहीं है तो उसके ये तो वो वही अब्जर्ड है।
1: बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। ये देखे कि हिंदुस्तानी असाथी उर्दू फिक्शन में किस तरीके से इस्तेमाल किए गए, उस पर हम लोगों ने गुफ्तगू की। और ये सामने आया कि इंतजार हुसैन ने तकरीबन 12-14 कहानियां लिखी सवाली से, मुमताज शीरी ने 5-6 कहानियां लिखी, सुरेंद्र प्रकाश की है, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने हैं बहुत से उस्तूर के हवाले से, जोगिंदर पाल के अफसाने हैं, सैयद मोहम्मद अशरफ के हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जगह मिली है हिंदुस्तानी असातीर को उर्दू फिक्शन में। और इस एतबार से हम कह सकते हैं कि हमारा उर्दू फिक्शन बेहद सर्वतमंद है उस्तूर को बयान करने के एतबार से। तो मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू तो जारी रह सकती है, लेकिन हम यहाँ खत्म कर दें तो
0: वक्त की अपनी पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया तमाम,
2: बहुत शुक्रिया।
3: सामीन, अभी आप मुबाहिसा सुन रहे थे, मौजू था उर्दू फिक्शन में हिंदुस्तानी असातीर। मुबाहिसे में शुरका थे जनाब मोइनुद्दीन दिनाबड़े, जनाब खालिद अशरफ, जनाब असरार गांधी। निजामत के फराइज अंजाम दे रहे थे जनाब अबू बकर आबाद।
4: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। फिल्मी नामों के प्रोग्राम में लीजिए सामीन पहले समाप्त फरमाइए। अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू की आवाजों में दिल है कि मानता नहीं फिल्म का ये नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है नदीम शर्मन ने।

मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे दोस्त फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और सामने लीजिए, सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश लगान फिल्म का नगमा, उदित नारायण और आशा भोसले की आवाजों में, मौसीकार हैं ए आर रहमान।

ऊपर से मैं सख्त हूँ, अंदर से नरम हूँ। ऊपर से मैं सख्त हूँ, अंदर से नरम हूँ, अंदर से ठंडा हूँ, ऊपर से गरम हूँ। अरे बाप रे बाप, डर गया ना।

और सामने जब सुनी कभी कभी फिल्म के नगमा लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में नगमा निगार साई लुधियानी मौसीकार खयाम।

मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे अरमान फिल्म का ये नगमा। नगमी गाती मजरू सुल्तानपुरी, मौसीकार एस डी बर्मन। और समझ लीजिए, सुनिए रोक फिल्म का नगमा, के आवाज में, मौसीकार हैं एम एम करीम।

यह आकाशवाणी है। अब आप माजी दिल्ली से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाजी कारकुन प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम से मुलाकात की। उन्होंने सेहत की देखभाल, देही तरक्की, नौजवानों और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मुश्तरका ज़रई तहकीक, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करने की खातिर मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के अपने हम मनसबों के साथ दो तरफा मीटिंगें की हैं। आलमी सेहत तंजीम में सरबराह डॉक्टर टेड्रोस अदहनोम घेब्रेयेसस ने जच्चा बच्चा की सेहत देखभाल के सिलसिले में भारत की नुमाया हसूलियाबियों की सताइश की है। उन्होंने तिमोर लेस्ते में सेहत के मरकजी वजीर जेपी नड्डा से मुलाकात की। भारत ने नेपाल के लिए सैलाब से मुतालिक इमदाद तेज कर दी है। 8 परवाजों से इमदादी सामान, खसूसी टनल टीम और फॉरेंसिक माहरीन भेजे हैं। सैलाब में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 1377 हो गई है। और क्रिकेट में आज शाम दुबई में खवातीन एशिया के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सरकर्दा समाजी कारकुन प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने मरहूम आगा खान चारों और तरक्याती मामलात में उनके गना कद्र ताबुल को याद किया। वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम के साथ सेहत की देखभाल, ज़राअत, दही तरक्की, नौजवानों और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में आगा खान तरक्याती नेटवर्क के साथ भारतीय इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में इस्माइली बरादरी के 50वें इमाम और सरकर्दा इंसान दोस्त शख्सियत प्रिंस रहीम

रेडियो दास राय के प्रोग्राम है। हरजीत कौर हाजिर है तुम्हारे किते प्रोग्राम घिन के कुछ बात कुछ की हाल चाल हिन तुम्हारे सारा ठीक ठाक हो सोना। तो वाला प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे गीत नाल।

ले हो। आजकल बिजली के बिल के भी आवन लग पे हैं, पर बिजली बगैर गुजारा भी कोनी। इस किते साकू ही बिजली में बचत करनी पोसी। कुछ तरीके असा तो आप कुछ ऐसे दे हाँ बिजली बचावन दे तो बिल घट आवन। तंजू में सुनो जिथा घट रोशनी की जरूरत है जिवे ब्यौरी विच छोटे बाथरूम विच पिछली तरफ सीढ़िया दे हेठ उठा हाई वोल्टेज का बल्ब कदहा न बालो। लाइट पखा गीजर एसी प्रेस लगा के वाला बंद करने न भूलो। फ्रिज के फ्रीजर को बहुत वेले टीकर खुला न रखी। लापरवाही कदहा नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी बचत ही बिजली भी वड्डी बचत करेंदी है ते बिल घटावदा है। साधारण बल्ब दी झांके सिरफल बल्ब लावने चाहिए। इस नाल 70%

गीत तुसा सुनिया है कलाकार हन आबिदा परवीन ते हुन गाल करेंगे हां नशे दे बारे विच। नशा एक इंजली बुराई है जो नाच के करसी भला कहनी, इसकी लत लग वंजे ता इंसान दी वेले तो पहला ही मौत थी जांदी है। आज दे डिया विच 70% नौजवान नशा करेंगे पाई हिन। पहला ता लोग अफीम शराब जर्दा तंबाकू उन्हें खा पी वेंदे हन, पर हुन नशा करें दी नवी टेक्नोलॉजी आ गई है। आजकल डेडी लोग नशा दवाइयां ते इंजेक्शन दे जरिए गिनदे पए हिन। ए नशा सीधा ही शरीर विच वांझ के खून नाल रल मिल सी ते तुसा दसो बीमारियां क्यों ना लग सन। टीबी, हेपेटाइटिस बी, गुर्दे खराब थीवना, लीवर कमजोर थीवना, इंज दियां बीमारियां बहु वधेंदियां पईयां हिन। ते जे नौजवान नशे दे आदि थीवणगे ता आवण वाले वेले विच देश को कौन संभाल सी, ए वाकई बहु चिंता दी गल है। घर तो ही शुरुआत करे सा कि साकू बाला को सही माहौल विच रखना चाहिदा है, उन्हां को पूरा टाइम दईए। आजकल दे मां पियो कोलू बाला की ते टाइम कहनी, बाला ने संगत चंगी ना थी वे ता बाल नशा करन लग सन। असा बाला को इस बारे समझावना है, नाल ही घर दे मेंबरा ते स्कूल मास्टर सारा को रल के इस ते काम करना पैसी ता हालात ठीक थे सन। असल विच नशा कोई भी थी वे जहर है ते ए शरीर ते हौले हौले असर करेंदा है, ते जद तीकण इस ते माड़े असर देदे हिन तद तीकण बंदे दा अंत थी गया होंदा है। नशे नाल शरीरक तकलीफां दा अलग हिन आर्थिक नुकसान भी बहु है। नशे विच ड्राइविंग करेंदे हुए एक्सीडेंट भी बहु थींदे हिन, वाला घर दे अलग परेशान थींदे हिन, घर दी त्रिमत अलग दुखी ते बाला को भी दिक्कत है। बेदा वेंदा नशे नाल घर ही बर्बाद थी वेंदे, कोशिश थीनी चाहिदी है कि नशे तू दूर ही रहवा वंजे ते नशा करन वाले दी आदत सारा को मिल के छुड़ावनी चाहिदी है। नशा मुक्ति केंद्र दी भी मदद गेन सकसा। हिक गल बया, नशेड़ी नाल कदहा नफरत न थीए, उको प्यार नाल पेश आवो। ते हुन घरा को जुलदे जुलदे हिक गीत बड़ा सुनावांजे। गीत है मर्जी है तेरी ढोला नफरत करी या प्यार।

0: केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना नाल 9,50,00,000 तो ज्यादा लाभपात्री जुड़ चुके हैं। कि तुसी भी 18 से 40 साल की उम्र के हो तो मासिक अटल पेंशन समेत योजना के 10 गारंटेड लाभों की जानकारी लिए अपनी बैंक शाखा नाल संपर्क करो।
2: पटवारी साहब लंघ आईए जी,
3: आजो आजो आजो बल साहब बच्चा आयो आजो।
2: पटवारी साहब जय हिंद जी।
3: जय हिंद जी, जय हिंद जी। सुनाओ बल साहब की हाल चाल तुहाडा।
2: हाले चाले वाह वाह वधिया, चढ़दी कला मेरे उस रब दी, असी तां कहने आ सब ते बनी रहे। तुसी सुनाओ।
3: तगड़ा जी, बिल्कुल तगड़ा। देखो तुसी कहा ना सब ते बनी रहे मेहर।
2: हां जी,
3: परमात्मा ते मेहर सब ते बनी रहनी चाहिदी है
2: जी,
3: और रहिंदी भी है।
2: अच्छा जी।
3: पर इंसान जड़ा है ना जी,
2: हां जी,
3: ओ अपने आप दे विच इन्नियां मुश्किलातां दे विच अपने आप नूं पा लैंदा है
2: जी,
3: कि जिवें कि ओ राह जांदे होए ना कहिंदे जिद्दां पंगा लै लिया।
2: अच्छा जी।
3: जिवें आपां जे गल करिए थोड़ा बहुत पैसिया की गल कर लीए या पढ़ाई की गल कर लीए या फिर ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਨਾ ਜੀ ਨੱਠ ਭੱਜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ
2: ਜੀ।
3: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ
2: ਜੀ।
3: ਤੋ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ
2: ਜੀ,
3: ਜੋ ਉਸਨੇ ਲਕਸ਼ੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ
2: ਜੀ
3: ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ,
2: ਹਾਂਜੀ,
3: ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ
2: ਜੀ,
3: ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ,
2: ਹਾਂਜੀ,
3: ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ।
2: ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ?
3: ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ।
2: ਹਾਂਜੀ,
3: ਕਾਰਨ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाने रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज Space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति जिनफिंग 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वैश्विक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यह यात्रा ब्रिक्स सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस के सुरक्षा प्रभाग के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने कहा कि आने वाले विशिष्ट अतिथियों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम लोगों को कम से कम असुविधा हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेकर ट्रैफिक से लेकर लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि इस शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रसिद्ध समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगा खान विकास नेटवर्क के समाजसेवी कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये इस बात का उदाहरण है कि सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले गैर लाभकारी संगठन लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पानी और साफ सफाई, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों, शिक्षा और सामुदायिक विकास में आगा खान विकास नेटवर्क के योगदान पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चीन के पूर्वी बंदरगाह शहर चिंगदाओ में एक मरम्मत के लिए खड़े विदेशी ध्वज वाले मालवाहक जहाज में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई। सरकारी प्रसारक सीसीटीवी के अनुसार लाइबेरिया के ध्वज वाले बल्क कैरियर ओशन मेलोडी में आज सुबह आग लगी। और खेलों में, महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे दुबई में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संभव, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी भाई बहनों को नमस्कार। रजनीश, जब भी हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं हमारे श्रोताओं के साथ साथ हम भी बड़े ही प्रसन्न होते हैं और हमारी प्रसन्नता का कारण यही होता है इसमें हम बात करते हैं खेत खलियान की, मौसम की, क्या क्या नई तकनीक हमारे किसान भाई अपना रहे हैं।
4: कमलेश, इस कार्यक्रम में हमारा यह प्रयास रहता है कि हम अपने किसान भाई बहनों से जुड़े हर विषय पर बात करें ताकि उनका उत्पादन भी बढ़े और आमदनी भी दोगुनी हो।
3: और जब आप बात करते हैं आमदनी दोगुनी करने की, उसमें हम उन्हें नई नई जो जानकारियां होती हैं वो हम उन्हें उपलब्ध कराते हैं।
4: और यही बात है कि आज हम इस विषय पर बात करेंगे, जलवायु सहनशील कृषि भविष्य में खाद्य सुरक्षा की कुंजी। और साथ ही हम चर्चा करेंगे कृषि विज्ञान केंद्र पर, बताएंगे आजादपुर मंडी से फल और सब्जियों के भाव, देंगे मौसम की जानकारी के साथ कृषि सलाह। और सबसे पहले चर्चा करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र पर।
3: भारत में जिला स्तर पर कार्यरत प्रमुख विस्तार संस्थान है ये, जिनका उद्देश्य अनुसंधान विस्तार संबंधों को मजबूत करना है और किसानों को वैज्ञानिक ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाना है। इनकी उत्पत्ति शिक्षा आयोग से मानी जा सकती है।
4: आज भारत में 638 ग्रामीण जिलों को कवर करने वाले 731 केंद्रों का एक नेटवर्क है, जिनमें से पहला केंद्र 1974 में पुदुचेरी में स्थापित किया गया था। और इनका जो उद्देश्य है वो है कृषि प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन और किसानों के खेतों में उनका प्रदर्शन, ताकि उनका उपयोग किया जा सके और उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके। किसानों, महिला किसानों, युवाओं और विस्तार कार्यकर्ताओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता का विकास करना भी इनका एक उद्देश्य है।
3: किसानों और अन्य हितधारकों को निदान और कृषि संबंधी सलाह प्रदान करने के लिए एक सूचना और ज्ञान केंद्र के रूप में भी ये कार्य करता है। किसानों को उपलब्ध कराने के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज, रोपण सामग्री और अन्य तकनीकी इनपुट का उत्पादन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर

0: विभिन्न विभागों और संगठनों की कृषि संबंधी चल रही योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ समन्वय और साझेदारी विकसित करता है।
1: तो भाई ये तो बात थी कृषि विज्ञान केंद्र की। और देखिए कमलेश, आज पूरी दुनिया में बहुत तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है।
0: जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनके पास इतनी तकनीक होती है कि उन तकनीक को अपनाकर वो अपने कृषि कार्य को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और अब ये जरूरी भी हो गया है कि हमारी खेती भी बदलती जलवायु के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़े। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं, जलवायु सहनशील कृषि भविष्य में खाद्य सुरक्षा की कुंजी। हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनंता वशिष्ठ, प्रधान वैज्ञानिक कृषि भौतिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली।
1: डॉक्टर अनंता, आपका बहुत बहुत अभिनंदन।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर अनंता, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि ये जलवायु सहनशील कृषि है क्या?
2: तो इसे हम एक टाइप से कहेंगे कि एक पद्धति है जिसमें खेती की हम तकनीक है, डिफरेंट तकनीकों को हम अपनाते हैं, जैसे फसल का चयन कैसे करना है, हमको डिफरेंट जो संसाधन है हमारे, चाहे वो इरिगेशन का है या अपनी मृदा है, उसको किस प्रकार से हमको रखना है, इन सबको हम अपनाते हैं। इसको अपनाने से जो कृषि प्रणाली है जिसमें जो प्रतिकूल प्रभाव हो रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे कि आज दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो जलवायु परिवर्तन है और उससे उत्पन्न होने वाली खतरे हैं, जैसे आप देखते हैं बेमौसम वर्षा हो रही है या बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है, कई जगह आप देख रहे हैं कि बाढ़ जैसी समस्या आ जाती है, कई जगह सूखा आ जाता है, ये सब जो जलवायु परिवर्तन से जो चरम मौसमी घटनाएं हो रही हैं, इसमें बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसमें हमारी जो कृषि है, जो हम खेती कर रहे हैं, इसका जो असर है उसको हम कम से कम करें या ना के बराबर करें, तो हम इसके लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाते हैं और हम उसको कहते हैं जलवायु सहनशील कृषि कर रहे हैं। और इसको अपनाना हमारे लिए आज के दौर में बहुत जरूरी है। तो अगर हमको अपना कृषि का उत्पादन बढ़ाना है, ये जलवायु सहनशील जो कृषि है इसकी पद्धतियों को हमको अपनाना ही है।
1: डॉक्टर अनंता, कि आपने जैसे बताया कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो भारतीय कृषि और खाद्य सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है?
2: जी, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आज से कुछ सालों पहले हम कहते थे कि होगा, लेकिन आज के दौर पे हम देख रहे हैं हो रहा है, तो इसका सीधा प्रभाव जो है हमारे कृषि पे पड़ता है, जो हमारी कृषि की उत्पादकता है उसका जो गुणवत्ता है उस पे इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। ज्यादा बारिश हो गई तब भी हमारी खेती इस पे असर करती है, कम बारिश हो गई, सूखा जैसी स्थिति आ गई, तो हमारी फसलों को इससे असर पड़ता है। जो फसल होती है उसके जो विभिन्न चरण होते हैं, चाहे वो बुआई से पहले या बुआई का चरण है, उसके बाद उसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, वनस्पतिक वृद्धि होती है, उसके उसका रिप्रोडक्टिव स्टेज है, फूल लगना, फल लगना, उसका मैच्योरिटी आना, इवन उसके बाद भी ट्रांसपोर्ट में रखना है, स्टोरेज करना है, ईच एंड एवरी स्टेज पे हमको एक उपयुक्त वातावरण की जरूरत होती है अगर हमको उसकी गुणवत्ता बनाए रखनी है। लेकिन आज के दौर में आप देख रहे हैं कि ये जलवायु परिवर्तन की वजह से आप हर दिन देख रहे हैं कि मौसम अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, कभी सामान्य से तापमान ज्यादा चला जाता है, कभी कम चला जाता है, कभी आपकी बारिश अधिक हो जाती है, उसका वितरण नहीं हो रहा है, तो हमको फसलों का जो विभिन्न चरण है उसमें उसका उपयुक्त वातावरण नहीं मिल रहा है, तो इसका सीधा असर उसकी गुणवत्ता और उसकी उत्पादकता पर पड़ता है। तो जलवायु परिवर्तन का जो सीधा असर है वो आपकी खेती पे होता है, मौसम का काफी असर उस पर पड़ता है, और इसको कम करने के लिए हमें जो जलवायु अनुकूल खेती या जलवायु सहनशील कृषि को अपनाना होगा, जिसकी जो पद्धतियां हैं उनको हमको अपनी खेती में लाना होगा, जिससे हमारी जो कृषि है वो जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसको झेल सके और अपनी उत्पादकता को हम स्थिर रख सके।
1: डॉक्टर अनंता, कि क्या इसमें पशु स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य पर भी कुछ दुष्प्रभाव पड़ते हैं जलवायु परिवर्तन से?
2: क्योंकि जलवायु परिवर्तन मीन्स आपके जो चरम मौसमी घटनाएं उसमें आपकी बढ़ोतरी हो रही है, चाहे वो आपका हीट वेव है, गर्म हवाएं चलना है, शीत हवाएं अभी आएंगे या बेमौसम बारिश है, तो इस वजह से खेती तो प्रभावित होती है, इसके साथ साथ जो हमारे पशुधन है उन पे भी इसका असर पड़ता है, हमारे मानव स्वास्थ्य पे भी इसका असर पड़ता है।
1: और खाद्य सुरक्षा किस तरह से प्रभावित होती है?
2: जी, जैसे कि हमारे अगर पशुओं पे इसका असर पड़ेगा तो जो पशुओं से दूध का प्रोडक्शन है या आपका फिशरी से है, तो इन सब पे आपका असर पड़ेगा, तो जो आपके खेती में जो उत्पादकता गुणवत्ता पे असर पड़ रहा है, ऐसे ही आपका जो है हमारे पशुओं से जो उत्पादन मिलता है, चाहे वो दूध है या आपका मांस है या आपका अंडे हैं, इन पे भी असर पड़ता है।
1: डॉक्टर अनंता, आपने बड़े विस्तार से दुष्प्रभावों पर तो बात की कि जलवायु परिवर्तन से क्या क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं, लेकिन अब इन चुनौतियों को जो हमें सामना करना है, तो जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को हम किस तरह से अपना सकते हैं, ये क्या पद्धतियां होती हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
2: जी, इसमें तो सबसे पहले हमारा फसल प्रबंधन आता है, जैसे हमको मौसम के अनुसार जलवायु सहनशील किस्में लगानी है, जैसे जहाँ पे हमको पता है कि यहाँ सूखा ज्यादा आता है या यहाँ पे बाढ़ की स्थिति ज्यादा बन जाती है, तो हम सबसे पहले फसल को अपनाना है और उनकी किस्मों को अपनाना है। जैसे अगर हमको पता है

0: कि हमारा जो एरिया इसमें ज्यादा बारिश होगी। जो वाटर लविंग क्रॉप होती है, जैसे हम खरीफ में ही कहेंगे कि धान को जो है पानी ज्यादा पसंद है, तो हम फसल लगा सकते हैं। उसके बाद हम उस किस्म को अपना सकते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो विभिन्न संस्थान है, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न फसलों की कई प्रजातियां, कई किस्में जो है डेवलप की है, जो सूखा को भी सहन कर सकती है, बाढ़ जैसी स्थिति को भी सहन कर सकती है। इवन आपकी कई बार जैसे टर्मिनल हीट स्ट्रेस आता है, मैं कहूंगी जैसे आपका गेहूं का ही है, गेहूं की आपकी बुआई हो जाती है नवंबर में, आपकी बुआई हो जाती है फरवरी मार्च में भी, आपने अक्सर देखा होगा उस समय टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता, तो उसको हम कहते हैं कि टर्मिनल हीट स्ट्रेस आ जाता है। उसमें आपकी जो गेहूं की फसल है वो आपकी दुधिया अवस्था में रहती है या आपकी ग्रेन बनने की अवस्था में रहती है। तो अगर आप जो है टर्मिनल हीट स्ट्रेस वाली जो वेराइटी है जो हमारे संस्थान ने उसको डेवलप किए, अगर आप वेराइटी लगाते हैं तो उस पर असर कम पड़ेगा या ना के बराबर पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले तो फसल का चयन करना है, उसके बाद उसकी किस्मों का चयन करना है, उसके बाद अगर आपने ये चयन कर दिया तो उसके बाद आपने डे टू डे मौसम आधारित खेती पे ध्यान देना, मौसम पूर्वानुमान का नजर रखते हुए उस पर किस टाइप के आपको प्रबंधन करने हैं आपकी फसलों पे। क्योंकि फसल को जो है ईच एंड एवरी चरण, जो उसके बुआई से लेकर कटाई तक का जो समय होता है, उसमें उसको उपयुक्त वातावरण देना होता है। तो उस समय भी आप देखते हैं कि मौसम में काफी उतार चढ़ाव आ रहा है, तो उतार चढ़ाव मौसम को देखते हुए अगर मौसम आधारित आप खेती कर रहे हैं, उसमें उस आधार पर प्रबंधन कर रहे हैं, तो आप अपनी फसलों को एक अच्छा वातावरण दे रहे हैं, तो आपकी फसल की गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी, उत्पादन भी अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको फसल विविधीकरण करना है, आपको एक ही फसल पर निर्भर नहीं रहना, आपको मिश्रित खेती आपको करनी है, आप उसमें दलहनी फसलें भी आप लगाए, आप उसमें सब्जी वर्ग मतलब अन्य फसलें भी लगाए, मिश्रित आप खेती कीजिए। तो इसमें क्या है, कई बार आपका मौसम में बदलाव आता है, तो अगर आपका फसल असर पड़ता है तो आपका जो दूसरी फसल से कंपनसेट आप कर सकते हैं। इसके अलावा फसल चक्र को अपनाना है, क्रॉप रोटेशन आप कर सकते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि अगर आप एक ही फसल को लगातार लगा रहे हैं तो उसके जो कीड़े और बीमारियां आती हैं, एक बार आ गए तो आपने फिर दोबारा वही फसल आपने लगा ली तो ज्यादा नुकसान करती है। अब जैसे आपने सपोज इस समय एक फसल लगा दी, आपने गेहूं लगा लिया, उसका नेक्स्ट बार आपने दलहनी फसल लगा दी या मस्टर्ड लगा दिया, सरसों लगा दिया, तो उसमें क्या मृदा की भी उर्वरकता बनी रहती है और आपको जो बीमारी या कीड़े आने हैं उससे भी आपको राहत मिल जाती है, क्योंकि एक फसल की बीमारी कीड़े दूसरी फसल पर नहीं आते। तो अगर इस बार आपकी बीमारी उससे थोड़ा नुकसान हो रहा था, अगली बार आपने दूसरी फसल लगा ली तो उस पर उसका असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप कैश क्रॉप का भी प्रयोग कर सकते हैं, कम अवधि की अच्छी किस्में उनको आप लगा के कम समय पे ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा आपको जल प्रबंधन करना है, जैसे जल प्रबंधन भी आपकी काफी जरूरी, आजकल देख ही रहे हैं कि जो बारिश होती है वो एकदम ऐसी हो जाती है कि बारिश से सारा पानी बह जाता है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत। तो मैं तो ये कहूंगी कि जो आपको एक सरोवर या तालाब जो है खेत के आसपास आप बना लीजिए, जो सरोवर है उसमें आप पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, और जब आपका ड्राई पीरियड होता है उस समय आप उसको किसी पंप के जरिए फिर से खेतों में डाल सकते हैं। तो आपका एक तो खेत का पानी फिर से खेत में आ जाता है, तो जो खेत से आपका जो उर्वरक बह के उसमें चला गया वो फिर से खेत में आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपको जैसे ड्रिप इरिगेशन है उसको भी आप कर सकते हैं, या आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन है, इससे आपके पानी की भी बचत हो सकती है। इसके अलावा आप हरी खाद का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, तो हरी खाद का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करोगे, गोबर की खाद है आपकी, जैविक खाद है, तो उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने से मृदा की उर्वरकता बढ़ती है, दूसरा जो उसमें पानी को अपने अंदर होल्ड करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये सारी तकनीकें आप अपना सकते हैं। इसके अलावा जैसे अभी जो विभिन्न ऐप है, डिजिटल तकनीकी है या प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, इसको भी आप अपना सकते हैं अपनी खेती में। जैसे आप डिजिटल तकनीकी को अगर आप अपना रहे हैं तो आपके ऐप हैं, आपके डिफरेंट मौसम आधारित ऐप उसमें उपलब्ध हैं, उसके आधार पर आपको सटीक जानकारी समय रहते मिल जाती है। अगर आपको सटीक जानकारी समय रहते मिल जाती है, जैसे मौसम की जानकारी है उसके आधार क्या कृषि प्रबंधन आपको समय रहते करना है, तब वो समय रहते वो प्रबंधन कर देते हैं, तो आपका नुकसान ना के बराबर हो जाता है और आप अच्छा वातावरण फसल को मिल जाता है, तो आपकी उत्पादकता भी अच्छी होती है, गुणवत्ता भी अच्छी होती है। इसके अलावा प्रिसीजन एग्रीकल्चर की जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर से भी आप प्रिसाइज जैसे कह रहे हैं ना, सेंसर तकनीकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, एआई आधारित आप आईओटी बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर अगर आप खेती करते हैं तो आपको सही समय पर सही मात्रा में आप उसमें उर्वरक भी डाल सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं, तो इससे आपका क्या रिसोर्स की सेविंग होती है, साथ में आपका फसल में जो हानि है चाहे वो कीड़े आने या बीमारी आने या आपको सॉइल मॉइस्चर के डिप्लीशन हो रहा है, कमी हो रही है, तो आप सही समय पर उसको प्रबंधन करके आपकी फसल को अच्छा बना सकते हैं, उसमें उत्पादकता अच्छी ला सकते हैं और साथ में आपको रिसोर्स का भी सेविंग कर सकते।
1: डॉक्टर अनंता, जैसे कि अभी आपने डिजिटल तकनीक की बात की, आजकल ड्रोन के द्वारा भी खेती हो रही है, तो क्या ड्रोन के द्वारा जो खेती होती है वो भी इसमें सहायक है?
0: जैसे अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जैसे आपका ऑर्चर्ड ही है बड़े हैं, कई बार उनमें पानी डालना है या आपको कीड़े बीमारियों की निगरानी करनी है, उसमें स्प्रे करना है, तो इसमें भी आपका ड्रोन की जो तकनीकी होती है वो काफी लाभकारी होती है। जैसे लार्ज एरिया आपका है तो आपका ड्रोन में क्या होता है कि सेंसर आप कैमरे फिट होते हैं उसमें, थर्मल कैमरा भी आपका होगा, हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा आप उसमें लगा सकते हैं, तो उसको एक बार आप पूरे खेत में लार्ज एरिया पे आप उसको सर्वे कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता चल जाता है कि किस पॉइंट पे क्या प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम न्यूट्रिएंट की भी हो सकती है, आपके डिजीज भी हो सकता है, या वाटर की कमी भी हो सकती है, तो आपको जैसे कमी पता चल गया कि मेरा इस एरिया पे ये कमी है, तो आप उसको प्रोग्रामिंग दे सकते हैं। आपको उसको प्रोग्रामिंग देना, अगर फर्टिलाइजर आपको चाहे तो आप उसमें दे दें कि भाई आपका ये फर्टिलाइजर की कमी है, वो जाके उसी पॉइंट पे आपका स्प्रे कर लेगा। तो इसमें एक तो आपके समय की बचत हो जाती है, आप जैसे पेस्टिसाइड अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है जो भी कोई लेबर कर रही है तो उसको हेल्थ भी इश्यू हो जाता है स्प्रे करते समय, तो आप एक तो सेव कर रहे हैं इसको। या आपका ऑर्चर्ड ही है, ऑर्चर्ड में आपका करना है ड्रोन के जरिए, अगर आप कोई भी स्प्रे कर रहे हैं तो आप कम समय में प्रिसाइज करके आप लागत में भी कमी कर सकते हैं और प्रिसाइजली उसको करके आपके समय की भी बचत हो सकती है।
1: अच्छा, मौसम जो सहनशील वाली जो किस्में हैं इस तरह की डेवलप की जा रही है पूसा केंद्र में, तो हमारे जो किसान भाई बहन है वो जो अच्छी किस्में हैं वो किस तरह से ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं?
0: जी, इसके लिए जो अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है उसके संपर्क में रहना चाहे, जो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली पूसा के भी संपर्क में रह सकते हैं, हमसे समय समय पर आप जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पे या जो हमारा इंस्टीट्यूट का नंबर है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। और हमारा जैसे फरवरी में जो मेला लगता है हर बार, पूसा कृषि विज्ञान मेला लगता है, उसमें भी आप आके जो वेरायटी होती है किस्में होती है वो आप परचेज कर सकते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन पोर्टल है, आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के ऑनलाइन संपर्क में रहिए और वहां से भी समय समय पर कौन सा बीज उपलब्ध है, या कई बार होता है कि समय से पहले डिमांड ज्यादा होती है तो बीज खत्म हो जाता है, तो आपको पहले वो जानकारी भी मिल जाएगी कि बीज उपलब्ध है या नहीं है, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं।
1: डॉक्टर अंत, हमारे जो किसान भाई बहन है या हम सभी आम जन हैं, तो जलवायु परिवर्तन के जो दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या क्या एहतियात बरत सकते हैं?
0: जी, जैसे कि आप देख ही रहे कि जो जलवायु परिवर्तन अभी हो रहा है उसका जो मुख्य कारण है जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो रहा है। जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ है, तब से इसमें बढ़ोतरी ज्यादा हो गई है। जो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, कहीं ना कहीं हम ही इसके जिम्मेदार है, हमने ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट लिया, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगा ली, तो हमको इसको कम करने के लिए जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसको कम से कम करना है। तो इसके लिए एक तो हम पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाइए, और हम इसको कृषि में भी कई पद्धतियां हैं उसको अपना के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं संरक्षित खेती कीजिए, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर करिए, तो इसे अगर हम अपनाते हैं तो इससे भी खेती में जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन होता है वो कम से कम होगा। आप जैसे राइस ही आपको धान को लगाना है, पनीर लगा के आप उसको डायरेक्ट सीडेड राइस भी आप कर सकते हैं। विभिन्न पद्धति अगर हम खेती में करते हैं तो हमारा जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है वो कम से कम होगा, और हम जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको कम से कम करने में हमारा इसमें सहयोग रहेगा।
1: डॉक्टर अनंता, आज आपने इतनी अच्छी जानकारी दी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दिनांक 10 सितंबर 2026 से 12 सितंबर 2026 तक नई दिल्ली के नास कॉम्प्लेक्स में इक्रीसेट द्वारा ट्रांसफार्मिंग ड्राई लैंड एग्रीकल्चर विथ साउथ साउथ कोऑपरेशन विषय पर 2 दिवसीय ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर सभी का स्वागत करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में कहा,
3: यहां उपस्थित 25 देशों से आए हुए वैज्ञानिक, किसान और ड्राई लैंड के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे प्रिय बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं भारत की ओर से ग्लोबल ड्राई लैंड कांग्रेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और भारत की एक बात और है, आप तो साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं लेकिन भारत तो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति हमारे ऋषियों ने कहा, फिर कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो, और उसी में कहा वसुदैव कुटुंबकम, सारी दुनिया ही एक परिवार है। और मुझे बता दो, खुशी है कि पिछले 50 वर्षों में ड्राई लैंड के क्षेत्र में किसानों की आजीविका के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, नई वैरायटीज के लिए, नई कृषि पद्धतियों के लिए जो काम दोनों ने मिलकर किया है, मैं आईसीएआर को भी और कृषि एड को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि चार कोनों में चार चीज वो हो, एक नहीं बोना है। डाइवर्सिफिकेशन हमारी जड़ों में था, हमारे मूल में था। सचमुच में जो वर्षा आधारित खेती है वहीं दलहन तिलहन और मिलेट्स होते हैं। देश के लगभग 85 से 87% तक मिलेट्स हो, पोषक अनाज हो या दलहन हो या तिलहन हो, इन्हीं क्षेत्रों में होता है और पशुधन भी इन्हीं क्षेत्रों में बचता है। मैं देखता था कि ड्राई लैंड के कई फायदे भी थे जहां ड्राई लैंड थी। ये बात सही है कि उत्पादन बढ़ाने के जो प्रयास हुए, हमारा भी लक्ष्य प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीन हमारे बड़े टारगेट बड़े लक्ष्य है। एक, फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करना, खाद्य सुरक्षा चाहिए, भोजन चाहिए लेकिन पोषक चाहिए, शरीर को सारे पोषक तत्व मिलना चाहिए, और तीसरी, किसानों की आमदनी बढ़ना चाहिए, सबको खिलाने वाला बदहाल ना रह जाए। और उसके लिए सुविचारित नीति भारत सरकार की, उस पर बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो तो भरपाई। अब हम डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में भी लगे हुए हैं, कृषि का विविधीकरण जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, आज में कार्बन की कमी आप ड्राईलैंड में बता रहे थे, लेकिन अब तो जहां पानी है और जहां खाद है वहां भी कहां ऑर्गेनिक कार्बन बचा है, लगातार कम होता जा रहा है, वो एक बड़ी समस्या बन गया है। और इसलिए मैं कहता हूं कि ड्राईलैंड कोई हमारी कमजोरी नहीं है, सही विज्ञान सही नीति और सही बाजार मिले तो ये ड्राईलैंड भारत की और अफ्रीका की भी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और इसलिए वैज्ञानिकों से और जितनी संस्थाएं आ जाए इकट्ठा है उनसे मेरी अपील है कि इस बदलाव को हमको करके दिखाना है। अभी उत्पादन बढ़ा है ट्राईलैंड में भी, ऐसा नहीं कि दालों में भी बढ़ा है, तिलहन में भी बढ़ा है, लेकिन अपेक्षित नहीं बढ़ा। मैं समझता हूं ये कोई वैज्ञानिकों की कमी नहीं है, पर्याप्त अगर ध्यान दिया जाएगा तो इनका उत्पादन और बढ़ेगा।
4: और रजनीश, पूरा यकीन है कि जो हमारे किसान हैं वो बहुत ही खुश हो रहे होंगे, तो उनके खिलखिलाते चेहरे हम स्टूडियो में बैठकर महसूस कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा कमलेश, और जब इतना बढ़िया आपने बात कह दी तो ऐसे में अगर एक लोकगीत हो जाए खुशी दोगुनी हो जाए। तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

0: रजनीश, जैसे ही इस लोकगीत को सुना सच में आनंद ही आ गया और मुझे लगता है कि जो हमारे किसान हैं वो भी इसके साथ साथ गुनगुना रहे होंगे।
1: जी ये बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए जब हम गुनगुना रहे होते हैं साथ में हमें बहुत सारी चीजों का भी ध्यान रखना होता है और ये भी पता होना चाहिए कि मौसम के क्या हाल रहेंगे। तो भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार कल दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में दिन भर आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है और अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है।
0: मौसम पर आधारित कृषि संबंधी वैज्ञानिक सलाह क्या है? वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी किसानों को सलाह है कि किसी प्रकार का छिड़काव ना करें तथा खड़ी फसलों, दलहनी फसलों, मक्का आदि और सब्जी नर्सरियों में जल निकास का उचित प्रबंधन रखें। किसान इस समय अगेती मटर की बुआई के लिए बीज की व्यवस्था करें। उन्नत किस्में हैं पूसा प्रगति, पंत मटर 3 तथा आर्किल और खेतों को तैयार करें।
1: और साथ ही किसानों को ये भी सलाह दी जाती है कि कद्दू वर्गीय सब्जियों को ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था करें ताकि वर्षा से सब्जियों की लताओं को गलने से बचाया जा सके। और साथ ही भिंडी, मिर्च तथा बैंगन की फसल में माइट, जेसिड और होपर की निरंतर निगरानी करते रहें।
0: एक बात और रजनीश जी, इस समय कीटों की रोकथाम के लिए प्रकाश प्रपंच का भी इस्तेमाल हमारे किसान भाई कर सकते हैं। इसके लिए एक प्लास्टिक के टब या किसी बर्तन में पानी और थोड़ा कीटनाशक मिलाकर एक बल्ब जलाकर रात में खेत के बीच में रख दें। इस प्रपंच से अनेक प्रकार के हानिकारक कीटों का नाश होगा।
1: तो भाई ये तो थी कृषि सलाह। और कमलेश अब बता देते हैं आजादपुर मंडी में फल और सब्जियों के क्या भाव रहे। आज जो भाव चल रहा है, आलू का भाव चल रहा है 15 से 18 रुपए किलो, प्याज का भाव चल रहा है 35 से 40 रुपए किलो, टमाटर बिक रहा है 30 से 35 रुपए किलो, वहीं बीन्स का भाव है 40 से 45 रुपए किलो और खीरा बिक रहा है 25 से 30 रुपए किलो।
0: जब आपने सब्जियों की बात बताई, फलों के बारे में भी हमारे जो किसान भाई हैं उनको मालूम होना चाहिए कि उनका क्या भाव चल रहा है। तो जब हम बात करते हैं सेब की, तो सेब का भाव चल रहा है 100 रुपए से लेकर 120 रुपए प्रति किलो। केले का भाव है 20 से 25 रुपए किलो। अमरूद की बात करें 60 से 75 रुपए किलो। और पपीते की अगर हम बात करते हैं उसका भाव है 25 से 30 रुपए किलो।
1: और कमलेश ये थे आजादपुर मंडी से फल और सब्जियों के भाव।
0: और जब हमें अपने किसान मित्रों को ये कहना है कि उनको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, और ये तभी पता चलेगा जब वो अपने सुझाव हम तक पहुंचाएंगे।
1: और भाई देखिए उनके फीडबैक जो भी आते हैं हम उनको अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और अपने कार्यक्रम को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो अपना फीडबैक हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं feedback@gmail.com।
0: आज के कार्यक्रम का सफर यहीं तक। हमारे सभी भाई बहनों को नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान।

0: आपकी है बारी।
1: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
0: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। आइए अब सुनते हैं गजलें जगजीत सिंह जी के स्वरों में।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे गजलें जगजीत सिंह जी की आवाज में। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। अठारहवीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए राष्ट्रीय राजधानी तैयार, वैश्विक नेताओं का आगमन कल से शुरू। दिल्ली सरकार आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों को तेजी से संचालित करने के लिए राज्य आपदा मोचन बल का गठन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सुरक्षा उपायों की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। तो की गई गाड़ी की ट्रैकिंग, चालान भुगतान और यातायात अपडेट के लिए दिल्ली यातायात पुलिस की नई वेबसाइट शुरू। और 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल से आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय राजधानी पूरी तरह तैयार है और विदेशी मेहमानों का आगमन शुरू हो गया है। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस, यातायात पुलिस और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य सम्मेलन का आयोजन भव्य रूप से संचालित करना और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के करीब 15,000 जवान और पैरामिलिट्री फोर्स की 200 कंपनियां सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगी। साथ ही दिल्ली पुलिस ने सम्मेलन की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुगलक रोड क्षेत्र में लगभग 500 CCTV कैमरे लगाए हैं। सुरक्षा इंतजामों के बारे में जानकारी देते हुए प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के स्पेशल पुलिस कमिश्नर मनीष कुमार अग्रवाल ने कहा कि आने वाले गणमान्य व्यक्तियों की ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा सुनिश्चित करने और साथ ही आम जनता को कम से कम असुविधा पहुंचे, इसके लिए इंतजाम किए गए हैं।
3: कम से कम 16 जो है हेड ऑफ स्टेट या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने बहुत व्यापक अरेंजमेंट किए हैं। इन अरेंजमेंट्स को ड्रॉ करने के लिए दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेकर ट्रैफिक से लेकर लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
2: इसके अलावा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC द्वारा अपने हरित क्षेत्रों के प्रमुख मार्गों, चौराहों, गोलचक्करों और सार्वजनिक स्थलों पर लगभग 15,000 गमलेदार पौधे लगाए गए हैं। वहीं 17 प्रमुख गोलचक्करों पर भव्य सजावटी रोशनी और 11 प्रमुख होटल परिसरों में आकर्षक रोशनी लगाई गई है। 10 NDMC भवनों और स्थलों पर सजावटी प्रकाश व्यवस्था तथा 9 स्थानों पर आकर्षक पुष्प फव्वारे भी लगाए गए हैं। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय, अमृत उद्यान और दिल्ली मेट्रो संग्रहालय रविवार तक बंद रहेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
1: वहीं दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से 14 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया है। एक रिपोर्ट।
4: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफार्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह

0: इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा वीआईपी और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने ये भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि इस शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार अब अपनी राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ का गठन करेगी। इससे आपदा की स्थिति में प्रशिक्षित और विशेषज्ञ बल को घटनास्थल पर शीघ्र पहुंचाने, राहत तथा बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने और जान माल के नुकसान को कम करने में सहायता मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसडीआरएफ गठन करने का निर्णय लिया गया। इसमें अधिकतम 1100 जवान होंगे। यह बटालियन राज्य सरकार के अधीन कार्य करेगी और आपदा की स्थिति में घटना स्थल पर तेजी से पहुंचकर प्रभावी राहत तथा बचाव कार्य कर सकेगी। इसके गठन के साथ ही दिल्ली सरकार अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों और सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को भी विशेष प्रशिक्षण दिलाएगी। इसका उद्देश्य आपदा की स्थिति में उपलब्ध स्थानीय मानव संसाधन, आवश्यक कौशल और बेहतर समन्वय के साथ राहत तथा बचाव कार्यों में योगदान देना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में एसडीआरएफ का गठन लंबे समय से अपेक्षित था और ऐसे में प्राकृतिक तथा मानवीय आपदा की स्थिति में गंभीर क्षति की आशंका को देखते हुए पहले से मजबूत तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र जरूरी है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: दिल्ली सरकार में उद्योग मंत्री मनचंदर सिंह सिरसा ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम के अधिकारियों के साथ मास्टर प्लान और पारगमन उन्मुख विकास नीति को लेकर बैठक की। श्री सिरसा ने बताया कि बैठक का उद्देश्य मेट्रो और रैपिड रेल जैसे सार्वजनिक परिवहन के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करना है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को बेहतर संपर्क मिलेगा और रोजमर्रा की जरूरतों तक पहुंच सुविधाजनक होगी। बैठक में गैर मानक औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्विकास, बाजारों और गोदामों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करने पर भी चर्चा की गई। दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा आज मदनलाल खुराना चौक दुर्घटना संभावित क्षेत्र पर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि इस कार्यक्रम में लगभग 2000 लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया और यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिगों के सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के लिए सुरक्षा उपायों की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। याचिका में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को अनुबंध करने से रोकने की मांग की गई है।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर केंद्र और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री पर रोक के लिए कड़े कानून होने के बावजूद इंटरनेट प्लेटफॉर्म ऐसी सामग्री की स्वचालित निगरानी और उपयोगकर्ताओं की उम्र की पुष्टि की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। याचिका के अनुसार फेसबुक और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म 13 वर्ष की उम्र से खाते बनाने की अनुमति देते हैं, जबकि भारतीय कानून में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति नाबालिग माने जाते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: दिल्ली विधानसभा के युवा संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने आज दिल्ली विधानसभा का दौरा किया। इनमें करोड़ीमल कॉलेज, सुखदेव कॉलेज, लॉ सेंटर 1 और 2 तथा शहीद भगत सिंह कॉलेज के विद्यार्थी शामिल हुए। विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आए विद्यार्थियों को लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों, सार्वजनिक जीवन तथा युवाओं की जिम्मेदारियों से जुड़े विषयों पर विधानसभा अध्यक्ष से संवाद का अवसर मिला। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने आज सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एससीएल दास को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। श्री दास ने पद और गोपनीयता की शपथ ली।

0: पुलिस ने आरोपी के पास से चार पहिया वाहन भी बरामद किया है। मामले की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: रणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली यातायात पुलिस की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया है। इस वेबसाइट के जरिए लोग टो की गई गाड़ी की ट्रैकिंग, चालान की स्थिति और उसके भुगतान तथा यातायात अपडेट आसानी से देख सकेंगे। लोगों की मदद के लिए इसमें ट्रैफिक सारथी नाम का AI चैटबॉट भी शुरू किया गया है, जो तुरंत जानकारी और सहायता देगा। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि यह वेबसाइट सिर्फ सरकारी सेवाओं तक सीमित न रहे, बल्कि लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने और उनकी भागीदारी बढ़ाने का भी माध्यम बने। उन्होंने कहा कि तकनीक और नागरिकों को साथ लेकर चलने से दिल्ली को और सुरक्षित, स्मार्ट और बेहतर बनाया जा सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल रणजीत सिंह संधू ने आज टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि क्षय रोग से प्रभावित लोगों के संपर्क में आए पात्र परिवारों में क्षय रोग से बचाव के इलाज का दायरा 55% और डिफ्रेंशिएटेड टीबी केयर 74% तक पहुंच गया है। साथ ही 9,80,000 से ज्यादा चेस्ट एक्सरे किए गए हैं और निक्षय मित्रों के जरिए 1,15,000 से अधिक फूड बास्केट बांटी गई है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बचाव के लिए इलाज को तय समय सीमा में हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन आकलन के क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने के साथ साथ नवीनतम तकनीकों के इस्तेमाल पर बल दिया। श्री यादव ने आज नई दिल्ली में वन और वृक्ष संसाधनों के आकलन में नवीनतम तकनीकों के उपयोग विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित किया। श्री यादव ने कहा कि मनुष्य प्रकृति से ऊपर नहीं है और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के लिए उसका सम्मान करना जरूरी है। उन्होंने स्वदेशी तकनीकों और वन कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के महत्व पर भी बल दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। डॉ सिंह ने आज नई दिल्ली में इमर्जेंट साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डॉ सिंह ने कहा कि सम्मेलन में स्टार्टअप, वैज्ञानिक, उद्योग, उद्यमी और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारक एक मंच पर आएंगे। उन्होंने कहा कि आज विज्ञान केवल वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं रह सकता, वैज्ञानिक अनुसंधान को सफल, टिकाऊ और व्यावसायिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए संचार, प्रबंधन और कार्बन सिंक बनाने के देश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तकनीकी नवाचार के साथ मजबूत संस्थागत क्षमता भी जरूरी है। इस कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के वन विभागों, वैज्ञानिक संस्थानों, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसमें वन सीमाओं के डिजिटलीकरण, वन और वृक्ष आवरण के आकलन तथा कार्बन भंडार के अनुमान पर 3 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए राष्ट्रीय राजधानी तैयार, वैश्विक नेताओं का आगमन कल से शुरू। दिल्ली सरकार आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों को तेजी से संचालित करने के लिए राज्य आपदा मोचन बल का गठन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सुरक्षा उपायों की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। तो की गई गाड़ी की ट्रैकिंग, चालान भुगतान तथा यातायात अपडेट के लिए

0: दिल्ली यातायात पुलिस की नई वेबसाइट शुरू और 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओ, आइए चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम गीत मालिका। श्रोताओ, मैं हूँ रचना अग्निहोत्री और आज की गीत मालिका लेकर आई हूँ एक ऐसे छोटे से शब्द की बड़ी सी दुनिया जिसका नाम है काश। काश वो शाम फिर लौट आती, काश वो इंसान फिर मिल जाता, काश कहे बिना ही दिल की बात समझ आ जाती, काश बीता हुआ कल आज की तरह हमारे सामने बैठा होता। मगर जिंदगी में कुछ चीजें सिर्फ याद बनकर रह जाती हैं और फिर वही यादें कभी गीत बनकर कभी खामोशी बनकर हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक देती रहती हैं। तो आज के ये गीत सिर्फ गीत नहीं है, ये उन तमाम काश की आवाज है जिन्हें हमने कभी कहा ही नहीं, बस महसूस किया। चलिए शुरुआत करते हैं उस एहसास से जहां कुछ पल कुछ बातें आज भी दिल में वैसी ही ठहरी हुई हैं।

कुछ लम्हे गुजर जाते हैं लेकिन उनका असर नहीं गुजरता। वक्त आगे बढ़ जाता है मगर दिल कभी कभी वहीं खड़ा रह जाता है और फिर मन पूछता है, काश उस वक्त हम थोड़ा और ठहर जाते, काश जो कहना था उसी वक्त कह देते। लेकिन मोहब्बत में सबसे मुश्किल बात शायद यही है, हम अक्सर उस पल की कीमत तब समझते हैं जब वो पल हमारे पास नहीं रहता। और अब अगला गीत उसी टूटे हुए दिल की आवाज है जो बहुत कुछ सहकर भी उसी शख्स को याद करता है।

दोस्तों जिंदगी का सबसे खूबसूरत और शायद सबसे मुश्किल सच ये है कि समय कभी वापस नहीं आता। बचपन के दिन, पुराने दोस्त, पहली बारिश, पहली मोहब्बत और वो शामें जिनसे किसी का नाम शामिल हो। आज सब कुछ बदल गया है, बस कभी कभी मन कहता है काश आने वाला पल नहीं, जाने वाला पल रुक जाता। इसी एहसास के साथ सुनिए एक बेहद खूबसूरत गीत।

दोस्तों, कभी आपने गौर किया है, किसी की याद कितनी अजीब चीज होती है। वो सामने नहीं होती, फिर भी हर जगह दिखाई देती है। किसी गीत में, किसी खुशबू में, किसी रास्ते में, और कभी कभी बिना किसी वजह के। और तब दिल बस इतना कहता है, काश वो एक बार सामने आ जाए। इसी याद को लेकर अगला गीत, एक ऐसी पुकार जिसमें प्रेम भी है और इंतजार भी।

दोस्तों, शाम का अपना ही जादू होता है। सूरज ढलता है, आसमान का रंग बदलता है और मन के किसी कोने में दबी हुई पुरानी यादें जागने लगती हैं। शायद इसीलिए कुछ शामें हमें आज भी याद रहती हैं और हम सोचते हैं, काश वो शाम कुछ और देर ठहर जाती। तो आइए उस अजीब सी खूबसूरत शाम को फिर महसूस करते हैं।

तो कुछ स्वामी सचमुच अजीब होती हैं। ना कोई खास वजह, ना कोई खास बात, बस दिल थोड़ा सा उदास होता है और यादें थोड़ी ज्यादा करीब। कभी किसी की कमी महसूस होती है।

0: कभी अपने पुराने रूप की ही कमी महसूस होने लगती है और दिल धीरे से कहता है, काश हम फिर उसी शाम में लौट पाते। आइए सुनते हैं इसी एहसास से भरा ये गीत।
1: वो शाम

लेकिन दोस्तों, हर काश का मतलब सिर्फ पछतावा ही नहीं होता। जब कोई दिल को छू ले तो भी तो इंसान कह उठता है, काश ये एहसास कभी खत्म ना हो। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जिसमें मन को छू लेने वाली सादगी है।

दोस्तों, जिंदगी भी कितनी अजीब पहेली है। कभी लगता है सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है, और कभी लगता है कि हम लाख कोशिश करें फिर भी कोई जवाब नहीं। कुछ रिश्ते मिलते हैं, कुछ छूट जाते हैं, कुछ सवाल रह जाते हैं, और फिर दिल पूछता है, काश जिंदगी की इस पहेली का जवाब थोड़ा पहले मिल जाता। सुनते हैं अब वही गीत जो जिंदगी को एक मासूम सा सवाल बना देता है।

0: कभी तो हंसाए
1: कभी ये रुला। श्रोताओ, और फिर आता है वो काश जो सबसे ज्यादा मासूम होता है। काश मुझे भी कोई प्यार करता, कभी किसी की आंखों में अपने लिए मोहब्बत ढूंढना, कभी किसी के संदेश का इंतजार करना, और कभी अकेले में मुस्कुराकर सोचना, क्या मुझे प्यार है। इसी खूबसूरत उलझन के साथ अगला गीत।

दोस्तों, आज की हमारी गीत मालिका अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। आज हमने कई काश महसूस किए। काश वो लम्हे लौट आते, काश वो शाम फिर आ जाती, काश कोई अपना फिर मिल जाता, काश वक्त थोड़ा ठहर जाता, काश कुछ बातें कह दी जाती। लेकिन शायद जिंदगी का नाम ही आगे बढ़ते रहना है। हर बीती हुई चीज को वापस पाना जरूरी नहीं, कुछ यादों को बस अपने दिल में सम्मान से रखना भी जरूरी होता है। और अगर कभी मन में कोई पुराना सवाल उठे तो खुद से नाराज मत होना, क्योंकि कुछ रिश्ते हमें खुशी देते हैं, कुछ सबक देते हैं और कुछ हमें खुद से मिलवा जाते हैं। आज की आखिरी पेशकश शायद इसी भावना की सबसे खूबसूरत आवाज है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। तो आइए आज के सारे काश को एक तरफ रखकर जिंदगी को फिर से थोड़ा प्यार करें।

श्रोताओं, मैं हूं रचना अग्निहोत्री और आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। फिर मिलेंगे किसी एक नए एहसास, किसी नई कहानी और कुछ पुराने प्यारे गीतों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और हाँ, जो आज आपके पास है उसकी कद्र कीजिए, क्योंकि कल शायद उसी के लिए आपका दिल कहे काश।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। आइए अब चलते हैं समाचार संध्या की ओर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुम्बकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
2: इंडियाज अप्रोच इज रूटेड इन वसुधैव कुटुम्बकम, दैट इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। दिस स्पिरिट मस्ट नाउ ट्रेवल बियॉन्ड अर्थ। वी सपोर्ट अ सेफ, सिक्योर, पीसफुल एंड सस्टेनेबल स्पेस डोमेन एंकर्ड इन इंटरनेशनल लॉ, डायलॉग एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। साइंटिफिक डेटा मस्ट सर्व द कॉमन गुड विद ओपननेस एंड इंटीग्रिटी। इंडिया स्पेस जर्नी रिफ्लेक्ट दिस फिलोसॉफी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ संपूर्ण मानवता तक पहुंचने चाहिए।
2: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar south pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity.
1: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफ्रॉन स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध भी शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेक्वी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत इस शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का संदेश देंगे। उनका कहना है कि इन संस्थाओं में आज की वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं।
3: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
4: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेकर ट्रैफिक से लेकर लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
3: भारत की अध्यक्षता 4 प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। प्रस्तावित समझौतों में पिनकल एयर, एयर केरल और स्लीक एविएशन सहित भारतीय विमानन कंपनियों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति और इससे जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। 2 दिन का इनोप्रोम इंडिया कार्यक्रम कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक रूस और भारत की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन टू लर्न। learn to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nation

0: योजना, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और अब किसी के हताहत न होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की 3री बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार 3 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है, जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और किसी के हताहत न होने देना। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आपदा रोधी गांव और शहर तैयार करना है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। नए नियमों से ई कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: Salamander Day, Ashley Kumar Universal
1: छत्तीसगढ़ तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज एक स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक जीते। मोना अग्रवाल, अग्नि लेखरा, मिली शाह की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। उधर दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन एक स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9.

सामिन अदर्स, ये आकाशवाणी है। शब के 9:15 बज चुके हैं। उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशियात का अब आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामिन का खैर मकदम है। उर्दू सर्विस की नशियात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर के अलावा डीडी फ्री डिश पर। आइए एक नजर डालते हैं इस मजलिस में नशो नाले प्रोग्रामों पर। बजकर 20 मिनट पर एक फनकार प्रोग्राम पेश किया जाएगा। 9:45 पर खबरें नश होंगी और 9:55 पर मशवरे सेहत के। इस सिलसिले के तहत कुछ बातें होंगी आपकी सेहत के हवाले से। शब के 10 बजे मार्केट मंत्र प्रोग्राम का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुनेंगे और 10:30 पर पेश किया जाएगा फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिले इरशाद। तामिले इरशाद प्रोग्राम जारी रहेगा 11:30 तक। दौरान प्रोग्राम 11 बजे आप सुनेंगे खबरें बरे सगीर से का उर्दू न्यूज बुलेटिन। साढ़े 11 बजे प्रोग्राम पेश होगा सुर्खियों में और 11:45 पर क्लासिकी मौसीकी के प्रोग्राम बज़्म मौसीकी में आप सुनेंगे विदुषी रोमा रानी भट्टाचार्य का गाया राग दरबारी कानाड़ा में ख्याल। शब के 12 बजे आलमी खबरें नश की जाएंगी और 12:10 पर क्लासिकी मौसीकी में आप सुनेंगे गुलाम दस्तगीर खान का सितार पर बजाय राग गोपी का बसंत और राग भैरवी में एक धुन। आखिरी शब के 12:30 इस प्रोग्राम में हम आपकी नजर करते हैं चंद सदाबहार पुराने फिल्मी नगमे। 12:50 पर खबरें नशर की जाएंगे और शब के 1 बजे उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पसीर हो जाएंगी। सामने ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशो नाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

एक फनकार प्रोग्राम में आज आप महसूस हो रहे हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गाए चंद गैर फिल्मी गजलों से। यह है इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश।

0: एक फनकार प्रोग्राम में आज आप महसूस हो रहे थे उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की गाए चंद गैर फिल्मी गजलों से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रेडिश पर हमारी नशियात जारी हैं। शब के 9:45 हुआ चाहते हैं। अब खबरें नशे की जाएंगी।
1: अब असगर अली से

ज्यादा कैलोरीज, प्रोटीन, विटामिन और ज्यादा गजाइत वाली अज्जा जो है उनकी दरकार होती है। गजाइत से भरपूर गजा अगर आपको मिल जाए तो आप बेहतर महसूस करते हैं और जल्दी ठीक होने में ये गजा आपकी मदद कर सकती है। तो आज हम बात करना चाहेंगे बीमारी के दिनों में, जब आप बीमार होते हैं तो उन दिनों में किस तरह की गजा का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। कहा तो जाता है कि बहुत हल्की गजा लेनी चाहिए, जुद हजम होनी चाहिए और ताकि जल्दी आप ठीक हो जाएं। लेकिन गजा एक ऐसी होनी चाहिए जो मुतवाजन होनी चाहिए, यानी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। और जब आप बीमार होते हैं तो कुछ ऐसे खानों को आप सोच सकते हैं या अपने गजा में शामिल कर सकते हैं, जैसे चिकन सूप है, शोरबा है, नारियल का पानी है, गर्म चाय है, शहद है, अदरक है, ओटमील है, दही, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियां, और जो लोग मछली पसंद करते हैं उनके लिए मछली भी बड़ी उम्दा है। तो दोनों का यहां हम जिक्र करना चाहेंगे, चाहे आप वेजिटेरियन हैं चाहे आप नॉन वेजिटेरियन, दोनों तरह के गजाएं जो हैं उनके मुतालिक हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम चिकन सूप की बात कर लेते हैं। बहुत ही हल्का होता है और इसमें चूंकि विटामिन्स और मिनरल्स और कैलोरीज होती हैं, प्रोटीन भी है जो आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है, तो आपके जिस्म के लिए इसकी जरूरत भी पड़ती है। तो बीमारी से उबरने के दौरान जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और चिकन सूप चूंकि जाहिर सी बात है सूप है, तो ये मशरूब के तौर पर आप इसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, अच्छा सोर्स है ये इलेक्ट्रोलाइट का। और जब आपके लिए खास तौर पे ये मददगार होता है जब आप पानी की कमी का एहसास करते हैं, क्योंकि जब बीमार आप होते हैं तो आपका जायका भी तब्दील हो जाता है, हर चीज आपको कड़वी लगती है। अब चाहे आप बुखार में मुब्तला हो या उल्टी दस्त हो जाए या फिर नजला जुकाम हो, खांसी हो या कोई दीगर बीमारी हो, और ऐसे में आप कुछ हल्का खाना पसंद करते हैं और कई बार जब जायका आपका अच्छा नहीं होता तो कुछ ऐसी चीजें खाने का दिल भी करता है। चूंकि सूप से गर्माहट तो मिलती है और बस यह है कि मसाले जो है थोड़ा सा कम इस्तेमाल करने चाहिए। और इसके अलावा अब हम बात करना चाहेंगे पतले शोरबे की। चाहे आप सब्जी बना रहे हो या फिर नॉनवेज बना रहे हो, लेकिन पतला शोरबा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स का बेहतरीन जरिया हो सकता है, जो बीमारी के वक्त मददगार साबित हो सकता है। गर्म होने पर ये साइनस की जकड़न को भी दूर करने में मुआविन साबित होता है। कई बार होता है अगर खांसी, नजला जुकाम हो गया, नाक आपकी बंद है, बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इस तरह के अगर आप शोरबा इस्तेमाल करेंगे पतला शोरबा, तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा लहसुन का इस्तेमाल जो है वो बहुत उम्दा रहता है, और चूंकि इसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है, तो लिहाजा किसी न किसी तौर पे आप लहसुन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नारियल पानी, बीमार होने पर नारियल पानी एक बेहतरीन मशरूब है और जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कमी है उसको भी ये पूरा करता है। खासतौर पर अगर उल्टी दस्त है, पसीना ज्यादा आता है और बुखार वगैरह में, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और गर्म चाय, अगर सर्दी जुकाम है और खांसी भी है, गले में खराश है, तो आप गर्म चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें अदरक भी डालकर या दालचीनी डालकर अगर इस्तेमाल करें तो ये और भी मुआविन साबित हो सकता है। और शहद की अगर बात की जाए दोस्तों, बीमारी में शहद का इस्तेमाल भी आमतौर पर किया जाता है, क्योंकि ये इसे एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और जब खांसी होती है तो खांसी में खासतौर पर शहद के साथ थोड़ा सा अदरक का रस और इसमें दखनी मिर्च या फिर काली मिर्च मिलाकर आप इस्तेमाल करें। और हमने चाय के साथ अदरक का तो इस्तेमाल बताया, लेकिन अदरक का वैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी तौर पर इसका इस्तेमाल किया सकता है। चाय के अलावा इसे आपके अपने खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और कभी कभी ये होता है बीमारी के दिनों में कुछ अच्छा चटपटा सा खाने का भी दिल करता है, क्योंकि जायका आपका इतना खराब हो जाता है, तो ऐसे में

0: कुछ मसालेदार खाना खाया जा सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो फिर पेट आपका गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जायका ठीक करने के लिए या उसे बेहतर करने के लिए ये मुआविन साबित हो सकता है। और फलों की अगर बात की जाए तो केला बहुत अच्छा है, इसमें नरम और सादा होता है और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, खास बात यह है, और तेजी से हजम होने वाले कार्बोहाइड्रेट इसमें मौजूद होते हैं, पोटेशियम होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स का तो यह खजाना है ही जनाब। तो इसका इस्तेमाल आप बीमारी के दिनों में कर सकते हैं, दलिया है, ओटमील वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, गेहूं का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, सेवैयां हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, दही का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपके इंटेस्टाइन को यानी आंतों को जो है बेहतर बनाते हैं। और फलों का इस्तेमाल आप कस्सब के साथ कीजिए, जो फल आपको फायदा करते हैं, मौसम के हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं इनका सूप इस्तेमाल कर सकते हैं और गजा के तौर पर भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग मछली पसंद करते हैं तो सैलमन मछली जो है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स कहलाती है, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चंद गजाएं थी जो बीमारी के दिनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और तवानाई हासिल कर सकते हैं और बीमारी से जल्द निजात पा सकते हैं। तो मशवरे सेहत के सिलसिले में आज बस इतना ही। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत प्रोग्राम मार्केट मंत्रा।
1: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओ, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडस्ट्रीज राइज मार्जिनली, सेंसेक्स एड्स ओवर 100 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबाउट 23,450। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा सेज फिनटेक कंपनी शुड ट्रीट कस्टमर डेटा एज अ फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर दैन एज अ बिजनेस एसेट। एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस सर्ज अराउंड 4% व्हेन क्रूड ट्रेड्स अबाउट $100 अ बैरल।
1: घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त, सेंसेक्स में 100 से अधिक अंकों की तेजी, निफ्टी 23,450 के ऊपर बंद हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने फिनटेक कंपनियों से कहा कि उन्हें कस्टमर डेटा को एक व्यावसायिक संपत्ति के स्थान पर अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में करीब 4% का उछाल, ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर।
0: And before we take our main stories in detail, here is a very important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 0.2% की बढ़ोतरी हुई, जिससे लगातार 3 दिन की गिरावट का सिलसिला थम गया। सेंसेक्स 138 अंक बढ़कर 74,903 पर बंद हुआ। निफ्टी 46 अंक ऊपर आकर 23,478 पर पहुंच गया। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक 0.4% नीचे आया और स्मॉल कैप सूचकांक 0.1% गिर गया। इससे पहले बाजार आज सपाट स्तर पर खुले और पूरे सत्र के दौरान उतार चढ़ाव का दौर चलता रहा। हालांकि क्लोजिंग ऑक्शन सत्र के दौरान सूचकांक गिरावट से उबरकर बढ़त की स्थिति में देखे गए।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेज एंडेड 0.2% हायर टुडे, स्नैपिंग अ 3-डे लूजिंग स्ट्रीक। सेंसेक्स गेन 138 पॉइंट्स टू क्लोज एट 74,903। निफ्टी एडेड 46 पॉइंट्स टू सेटल एट 23,478। However, in the broader market on the NSE, the mid-cap 100 index declined by 0.4% and the small-cap 100 index dipped by 0.1%. Earlier, the markets opened on a flat note and oscillated between gains and losses throughout the session. However, during the closing auction session, the indices rebounded from the red into positive territory.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 15 कंपनियों के शेयरों में आज बढ़त दर्ज की गई। सबसे ज्यादा उछाल वाली कंपनियों में पावरग्रिड 2.3%, एक्सिस बैंक 1.6% और अल्ट्राटेक सीमेंट 1.4% ऊपर चढ़े। वहीं दूसरी तरफ एशियल टेक में 2.4%, टाटा स्टील में 1.4% और ट्रेंड में 1.1% की गिरावट देखी गई।
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 18 out of the 28 sectors edged downward. Among the top underperformers, capital goods lost 1%, telecommunications dropped 0.9% and metals fell by 0.7%. In contrast, insurance advanced at 0.6%, top 10 banks gained 0.5% and BankEx added 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,502 companies declined, 1,826 companies advanced and 199 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के तुलना में 34 पैसे गिरकर 95.45 रूपये पर बंद हुआ। पुनीत, कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज देखा हमने कि शेयर बाजार में 3 दिनों की गिरावट का सिलसिला थमा और 0.2% की बढ़ोतरी हुई। क्या ये मरहम का काम करेगा या और कोई स्थिति हम सामने देख पा रहे हैं या और जो वैश्विक परिस्थितियां हैं कैसा असर उस पर डालेंगी?
2: तो निखिल, हालांकि मैं कहना चाहूंगा कि मरहम का अगर काम करे आज का बाजार की थोड़ी जो मामूली बढ़त थी, पर ऐसा नहीं है। बाजार आज काफी वोलेटाइल था, ऊपर नीचे का दौर रहा बाजार में और जो हम बढ़त देख रहे हैं वो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में थोड़ा टेक्निकली बाजार ऊपर बंद हुआ। लेकिन जो आपने आंकड़े पढ़े उसमें जो ब्रॉडर मार्केट की जो ब्रेथ की बात करी, यानी ज्यादातर अगर आप देखें तो शेयर्स में गिरावट थी और बहुत कम शेयर्स में बढ़त थी। तो कुल मिलाकर जो अंडरलाइंग ट्रेंड है अभी भी बाजारों में वो वीक है, कमजोर है। अभी बहुत बड़ा हम निवेश नहीं देख रहे हैं, पर्टिकुलरली जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं दोबारा से उन्होंने काफी बड़े पैमाने पे सेलिंग शुरू कर दी है। और उसका मुख्य कारण देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो फैक्टर्स हैं, खासतौर से मैं कहूंगा जो कच्चे तेल की कीमतें हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, वो काफी बढ़ रही हैं। और जब तक वो कंट्रोल में नहीं आएंगे और उसकी वजह से जो एक तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दूसरा जो बॉन्ड यील्ड्स हैं यानी इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो कुल मिलाकर सारे फैक्टर्स इस वक्त बाजार पर दबाव डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है जो अंडरलाइन ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म में वीक ही रहेगा।
1: लेकिन इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में जो गिरावट आई उसके लिए आप क्या कहेंगे?
2: देखिए पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी बढ़त थी और वो आउट परफॉर्म कर रहे थे लार्ज कैप्स को। इनफैक्ट हेडलाइन नंबर्स जब भी हम देखते थे, जो निफ्टी और सेंसेक्स के नंबर्स देखते थे, तो वहां पर हम देखते थे कि गिरावट होती थी, लेकिन तब भी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में बाइंग होती थी। पर्टिकुलरली अगर हम देखें, आप आगे आंकड़े देखेंगे तो जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ रुझान उनका है। तो पर मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग हुई उसके अंदर, क्योंकि काफी शेयर्स में हम देख रहे थे काफी गेन्स आ रहे थे, तो नेचुरली जो अंडरलाइन ट्रेंड है अगर वीकनेस का है तो प्रॉफिट बुकिंग होगी और मिड कैप में आज वही था।
0: वी आर सीइंग दैट डीआईआईज हैव कंटिन्यूड टू सपोर्ट द मार्केट। देयर इज ऑल्सो द स्टोरी ऑफ द एम्फी डेटा फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट वेयर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैव इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय 19%. So we see institutional investors play a very important role in supporting the market right now. But the biggest concern is its overall sentiment, basically on inflation, especially imported inflation, what's going on in the Strait of Hormuz. How do you see the market changing? Because Jefferies is saying that, you know, India is just waiting for the opportunity really to break out of this. How will you explain what's happening in the market in the short term?
2: So, Arjun, in fact, there are two, I would say, counter trends underlying in the market. One, of course, is a macro trend, which is the global factors, political factors, economic factors, inflation that you are importing via high crude oil prices, higher interest rates. So that is one trend which is overlying in terms of market trends. The other thing is, of course, the internals of the Indian economy. So we see that while all these pressures were there, the Indian economy has continued to do very well. We've grown at a robust 7.8% rate in second quarter GDP numbers. We also have seen that investors, domestic investors, they continue to be positive and bullish about the markets. And you mentioned that DIIs have seen inflows of funds, and that is the reason that we find that the domestic investment institutions, they have been doing they have been supporting the market because they have fund flows from investors. My guess is that when the macro situation, the international situation, it stabilizes, we will see Indian markets outperform.
0: FIIs returning to the market, is that possible in the short to medium term, especially with the bond yields in the US? Because hedge funds will look at where the returns are maximum, especially in their own currency. They don't have to go through the process of buying rupees to invest in our market and then once again buy dollars really to convert it and then reinvest it back into the markets. Where do you see the FIIs, FPIs returning really?
2: So, traditionally, if US interest rates start going up like they're happening right now, if you look at the 10-year bond yield in USA, it is about 4.85%. Usually, if that happens, then FIIs would pull money out of emerging markets and take that money back to America because they would like to invest in American
0: arbitrage.
2: Bonds. Arbitrage. The interest rates are there. However, if you look at what has happened in India vis-a-vis the FCNRB deposits, then you will realize that foreigners still have a lot of faith in the Indian economy. We have seen approximately $125-127 billion flow into Indian economy via the FCNRB route. So I think that while FIIs may be tempted to take out money in the short term, in the longer term they want to put money in India because that is where the growth opportunities are. So my guess is that, again, I circle back to the same point. The moment we find that global macro situation improves or it stabilizes, I think we will see FIIs come back to India, which may be hopefully not towards the end of this year.
0: So we're talking about interest rates being offered by FCNR deposits versus what the treasuries in the US offer to investors there on government debt itself, but there is clearly a difference on which paper inspires more confidence for hedge funds.
2: So, see, we cannot compare FCNRB flows with 10-year bond yields, because FCNRB facility was available only to NRIs. It wasn't available to, let's say, foreign investors or foreign institutions. Whereas any investor in the world can go to US markets, invest in government bonds and get that kind of a yield. So, however, I'm looking at these numbers only as a pointer to the confidence in the Indian economy vis-a-vis the foreign investors. So, clearly, I think while the interest rates we offered on FCNRB deposits were much higher, in the range of about 6.5%, I think the broader message was that foreign investors will put in money into India if they have the opportunities. And for that, they need the global situation to stabilize.
1: Puneet, I would like to take a little bit of IT sector. What do you want to tell us about this? What kind of approach should we take to the IT sector? Especially in such a time, when we are seeing that large cap is different, mid cap and small cap is different, how can we make a relation between the two?
2: But look, in the IT sector, the contribution in the Indian economy is quite significant. In terms of exports, in terms of corporate earnings, in terms of जो भारत का जो एक साख है पूरी वर्ल्ड में वो आईटी सेक्टर से बनी है. पिछले दिन हमने देखा कि आईटी सेक्टर में जो थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से थोड़ा वहां पर हमने कुछ कमी देखी है वहां पर कॉन्फिडेंस में, और हम देख रहे हैं कंपनियों के शेयर्स में भी गिरावट आई है. कुछ हद तक रेवेन्यूज में भी थोड़ा चैलेंज रहा है. तो एक कंसोलिडेशन का फेज है, एक थोड़ा सा मॉडरेशन का फेज है आईटी सेक्टर में. मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपका मेन मुख्य सवाल था कि इन्वेस्टर्स का क्या रुख रहना चाहिए आईटी सेक्टर के शेयर्स की तरफ, तो मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस भारत के आईटी सेक्टर में रखना चाहिए. लॉन्ग टर्म के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और मुझे आई थिंक वी शुड कंटिन्यू टू इन्वेस्ट ग्रेजुअली एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म पोजीशंस इन आईटी.
1: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं. भारतीय इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगस्त महीने के दौरान निवेशकों का भरोसा और बढ़ा है. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI के आंकड़ों के अनुसार अगस्त में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करीब 19% बढ़कर 29,329 करोड़ रूपये पहुंच गया, जबकि जुलाई में यह 24,697 करोड़ रूपये था. वहीं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के जरिए निवेश ने भी नया रिकॉर्ड बनाया, और अगस्त में यह बढ़कर 32,297 करोड़ रूपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है. इक्विटी फंड की श्रेणियों में स्मॉल कैप फंड निवेशकों की पहली पसंद रहे, जिनमें करीब 8,000 करोड़ रूपये का निवेश आया. इसके बाद मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड का स्थान रहा. हालांकि लार्ज कैप और इक्विटी फंड सेविंग स्कीम यानी ईएलएसएस फंड से 1,000 करोड़ रूपये से ज्यादा की निकासी दर्ज हुई. दूसरी ओर गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी गोल्ड ईटीएफ में निवेश भी 66.6% से ज्यादा बढ़ा, और इसमें लगातार तीसरे महीने निवेश सकारात्मक रहा. हालांकि डेट फंड में तस्वीर इसके उल्टी रही, जहां जुलाई में 1,87,000 करोड़ रूपये का भारी निवेश आया था, वहीं अगस्त में डेट फंड से 8,127 करोड़ रूपये की निकासी हुई है. कुल मिलाकर अगस्त के आंकड़े ये बताते हैं कि निवेशकों का रुझान इक्विटी, एसआईपी और सोने जैसे विकल्पों की ओर मजबूत बना हुआ है. पुनीत, जिस तरह के आंकड़े हम देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले भी इस पर हमने बात की थी, अगर देख रहे एक महीने के अंदर 19% की बढ़ोतरी बहुत कुछ कहती है.
2: देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा नहीं है, क्योंकि पिछले महीने के जो आंकड़े थे उसमें थोड़ी गिरावट हमने देखी थी. तो जून से जुलाई में थोड़ी गिरावट आई थी, और अगस्त के महीने में वो जो लॉस हुआ था वो हमने एक तरह रिकवर किया है इनफ्लोज में. कुल मिलाकर जो म्यूचुअल फंड के जो फ्लोज हैं वो मेंटेन हो रहे हैं, और यही सबसे बड़ी बात है भारतीय बाजारों के लिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं खो रहे हैं, वो लगातार म्यूचुअल फंड पैसा डाल रहे हैं. देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आज भारत में करीब करीब 80 लाख करोड़ रुपया टोटल हम मैनेज जो एयूएम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हम कहते हैं, करीब 80 लाख करोड़ रुपए की एयूएम है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करीब करीब 40 लाख करोड़ रुपया अभी मैनेज कर रहे हैं. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर है अब ये पूरे अर्थव्यवस्था के लिए. और जो इसमें भी जो खास बात है, आपने जो बात बताई कि 32,000 करोड़ रुपया SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी जो हर महीने निवेशक एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड स्तर पर है वो, तो ये मुझे एक बहुत पॉजिटिव एक खबर लगती है इसमें, और आई होप कि दिस कंटिन्यूज, और ये एक हमारा स्ट्रेंथ रही।
1: इसमें एक चीज ये भी आई है सामने निकल करके कि इक्विटी फंड की श्रेणी में स्मॉल कैप फंड जो है वो निवेशकों की पहली पसंद रहे, जिनमें लगभग 8,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। इसके बाद मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड आते हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं?
2: देखिए, बहुत एक अलग चीज है, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो कन्वेंशनल विजडम है वो ये है कि ज्यादातर पैसा लार्ज कैप्स में जाता है या इंडेक्स फंड में जाता है, और स्मॉल कैप्स और मिड कैप जो कि ज्यादा खतरनाक है, जो ज्यादा खतरा जिसमें रहता है उसमें ज्यादा रिस्की है, वहां पर कम निवेश होता है। पर जैसा हमने अभी यहां पर हम बात कर रहे थे पहले कि जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स हैं वहां पर निवेशकों ने ज्यादा पैसा डाला है पिछले दिनों, वहां पर ज्यादा अट्रैक्टिव उनको लगता है, तो वो ये ट्रेंड देख रहे हैं। पर ये देखिए, लॉन्ग टर्म ऐसा रहता नहीं है, लॉन्ग टर्म में तो लार्ज कैप्स और जो फ्लेक्सी कैप्स जो फंड हैं वो ज्यादा नेचुरली
1: है। इसमें एक और दिलचस्प बात सामने आई कि गोल्ड ETF में भी निवेश बढ़ा है, 66.6% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई।
2: ये गोल्ड की चमक तो बनी हुई है भारतीय निवेशकों के लिए, इसमें कोई शक नहीं है।
0: वेल, गोल्ड प्राइसेस इंटरनेशनली एज अराउंड 4,400 US dollars पर ट्रॉय आउंस व्हेन इट हैड टच 4,000, येट देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ इंटरेस्ट इन ETF रिगार्डिंग गोल्ड, बट डेट फंड्स देयर इज एन आउटफ्लो इन इट एंड इनफ्लो इन ETF गोल्ड। व्हाई इज दैट द केस? बिकॉज देयर इज सो मच मनी नाउ ऑल्सो गोइंग इन टू ट्रेजरीज, फॉर इंस्टेंस वी मेंशनड अबाउट दैट अर्लियर। Why is it that debt funds are seeing an outflow?
2: So debt funds usually see a very volatile flow, because depending on the money, because mostly debt funds come from corporates. So whenever they have surplus cash lying in the banks, for short term they put money into debt funds. Of course, in the month of September we have advance tax payments made out. So I believe that a lot of liquidity would have gone to advance tax payments, and therefore the flows in debt funds were lower.
0: In more news, RBI Governor Sanjay Malhotra said that fintech companies should treat customer data as a fiduciary responsibility rather than as a business asset. The RBI Governor stressed that fintech companies must act as partners in responsible financial innovation and handle customer data responsibly. He emphasized that technology has made banking faster, cheaper and more secure, and noted that India is now the world's third largest fintech ecosystem. SEBI Chairman Tuhin Kanta Pandey stressed that technological innovation should not compromise investor protection, market integrity and financial stability.
3: Our security markets has grown rapidly and technology has been central to that growth. Digital onboarding, electronic payments, robust clearing and settlement, and the ability to trace transactions to the ultimate investor have made participation wider and more secure. But as markets become larger, faster, and more interconnected, regulatory risk also changes. A vulnerability in one part of the ecosystem can travel much faster. This calls for resilient infrastructure and a regulatory approach that can identify such risks.
0: So when you talk about fintech companies, NBFCs, banking sector, today for instance, BankEx actually went up. Their business is booming really, because capital and finance is a very important requirement in people's everyday lives, including the operations of companies. Fiduciary responsibility regarding customer data. How do you see privacy playing a important role here versus using customer data as a means really to approach customers and sell loans?
2: So Arjun, you know, the problem is, of course, there is this lot of intrusion by in the name of financial inclusion. There's also intrusion by financial people who are sellers of products. However, you will realize that trust is the central pillar of any financial system. Whether we have the old system or we have the new fintech driven system, it is the customer's trust in the institution where they have put their money, which is central to, you know, conducting transactions. So while we have this new technology available, which has made things much faster, much better, far more transparent, no doubt about it, the central requirement that it continues to be trustworthy, people have faith where their money is safe, and there are no instances of fraud or money being lost through these new technology tools, I think Therefore, this kind of question is very important. So while we advance on fintech front, we need to be careful about regulation. We need to be careful about what is the safety of people's money in the system.
0: Let's move on to the crude oil market now. Global crude oil prices surge around 4% today, with Brent crude remaining above $100 a barrel. Traders brace for deeper supply disruptions after Iran and the US launched their largest attacks on shipping since the conflict began. By the time of the latest report, Brent crude was trading 4% up at $105.25 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 4.3% higher at $100.18 per barrel. Meanwhile, US President Donald Trump yesterday predicted that the war with Iran would end immediately after the US midterm elections in November, adding that oil prices would fall sharply once elections are over. How optimistic are you about this latest projection by US President Donald Trump regarding the midterm elections? Because right now, Iran may attack a carrier of the U.S. and the U.S. is then attacking Iran's oil refineries. It seems to have taken a very ugly turn now, especially when you're talking about crude oil and its extraction from the earth, refining of it, the actual business of crude itself.
2: So, Arjun, it seems that the entire war in the Middle East has boiled down to control of the oil trade, and Iran of course is interested that the oil trade is disrupted, and if the oil prices go up, then it increases pressure on the US to wind down its campaign. America has been claiming that they will bring the oil prices down, they'll bring inflation down. They haven't succeeded so far. As you have just read out, Brent crude prices are once again at $105 per barrel level. It is a matter of great concern for India, because India of course is the world's second largest importer of crude oil, and a huge amount of external resources are now committed to importing energy for us in terms of crude oil, in terms of LPG, LNG. We import this whole gamut of energy products.
0: So, and sulfur as well for fertilizers.
2: Sulfur for fertilizers, and in fact, and many of the products which are linked to crude oil as an input. So I think it's a matter of great concern for us. I hope, it's very difficult to predict what will happen, because this is such a volatile situation. Nobody can predict what will happen tomorrow morning. But I hope that oil prices come down. $105 is very difficult for India. And I think we are seeing the impact of that in terms of inflation.
0: In more news, Chinese President Xi Jinping will visit India this week to attend BRICS summit in New Delhi. Chinese Foreign Ministry today announced that at the invitation of Prime Minister Narendra Modi, President Xi will attend the 18th BRICS summit from the 12th to the 13th of this month. The visit is expected to be a high-profile diplomatic engagement for BRICS cooperation amid a volatile global situation, ongoing conflict in West Asia, and the Russia-Ukraine war. This will be Xi's first visit to India in nearly 7 years. It's a fully loaded story because, you have a border dispute with China. They have been partnering Pakistan in their geopolitical

0: politics against India. India is buying oil from Russia at a discount, which is advantageous to India, and that's been opposed by the US. And Prime Minister Modi has been pleaded by global leaders that please mediate the Russia-Ukraine war. How do you see the BRICS summit here in India?
1: So BRICS summit in India really comes at an extremely important point, because this, like you said, I mean, this story has so many subtexts, so many, you know, things that you can read between the lines, because India has a very difficult relationship with China. While we have a very large trade with them, our economies are interdependent in many ways, and yet we have a difficult situation with them on borders. There's a lack of trust between the countries. We have a very long-standing dispute, border dispute with between the two countries. So it's a very difficult relationship which operates at many layers. Hopefully, our leaders are able to resolve these differences for betterment of communities on both sides of the border. And India, China, Russia, I think there's, and Brazil particularly lately, I think these four countries really comprise a very significant part of global economy, and therefore the BRICS summit, I think, at this point of time, being held in India, and all the top leaders attending that summit, I think that is very, very significant, and hopefully something better will come out of this.
2: एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया कोस्पी में आज 34% की गिरावट आई, जबकि जापान का निक्केई 225.02% की बढ़त के साथ बंद हुआ। अपनी थोड़ा सा बढ़ करके दायरे में अगर देखें तो बैंक ऑफ जापान की नेक्स्ट वीक जो मीटिंग होनी है 17 और 18 सितंबर को, उस पर निगाहें जरूर रहेंगे क्या होगा अगर रेट बढ़ाए जाते हैं उनकी तरफ से। और दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं, पूरे एशिया और यूरोप के मार्केट में महंगाई का दबाव आपको महसूस हो रहा है या ब्याज दरों का कोई दबाव महसूस हो रहा है जिसका असर मार्केट पे पड़ेगा?
1: बिल्कुल निखिल, अगर आप देखिए बैंक ऑफ जापान की आपने बात करी, तो जापान में जो 10-year बॉन्ड यील्ड है सबसे महत्वपूर्ण बॉन्ड होता है, बिकॉज से लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स का ट्रेंड हमें मालूम चलता है, वो अब 3% के आसपास, करीब 3% 10-year बॉन्ड यील्ड जापान में हो गई है। ये 0.25 से ऊपर बहुत दशकों तक, कई डिकेड तक ये ऊपर नहीं गई, और अब अचानक अगर जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, और बैंक ऑफ जापान के ऊपर भी ये काफी दबाव पड़ेगा कि वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएं, और यदि जापान में इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ जाते हैं तो मुझे लगता है कि पूरे अर्थव्यवस्था को, विश्व की अर्थव्यवस्था को असर पड़ेगा। कारण यह है कि जापान से काफी बड़ा करेंसी ट्रेड होता है, जापान से करेंसी मिलती है लोगों को, देशों को, निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और यदि जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वो इन्वेस्टमेंट फ्लोज डिस्टर्ब्ड होंगे, वो इन्वेस्टमेंट फ्लोज में रुकावट आएगी, अमेरिका में भी इसका असर पड़ेगा और भारत पर भी असर पड़ेगा। सो वी शुड रियली वॉच बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट्स वेरी केयरफुली।
0: इवन द यूरोपियन सेंट्रल बैंक व्हिच हैज रेज्ड इट्स इंटरेस्ट रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स टू 2.5%, बैंक ऑफ जापान इज एट 1%, एंड दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, एनर्जी constituting 14.3% rise as far as Europe is concerned.
1: Absolutely, Arjun. I think the elephant in the room really is the inflation, and inflation which has been caused by high energy prices. So central banks have limited choices. Let's see what they do.
0: In more news, global investment bank Jefferies has said that India's new industrial revolution is being driven by a large domestic market, rising private sector participation, and sustained policy support. In a report published yesterday, it pointed to measures such as opening space to private players, tax holidays for data centers, incentive schemes for semiconductors, electronics and solar localization measures, and government GPU purchases as key enablers of growth across emerging sectors.
2: भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.1% गिरकर 1,53,287 रूपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, जबकि चांदी 0.7% घटकर 2,33,642 रूपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। पुनीत, गोल्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि खासतौर पर ऐसे स्थिति में हम देख रहे हैं कि ईटीएफ में निवेश लोगों का बढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि गोल्ड खरीदने के बजाय लोग निवेश करने में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं? अब
1: देखिए, निवेश तो गोल्ड में कर ही रहे हैं, लेकिन यदि इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ते हैं यहां से, तो आप देखेंगे कि गोल्ड पर प्रेशर आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से गोल्ड में के ऊपर सेलिंग प्रेशर आता है। तो मैं अपने जो नजर है वो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर रखूंगा आने वाला सप्ताह, उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और एनी मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट इंटरेस्ट रेट्स विल पुट डाउनवर्ड प्रेशर ऑन गोल्ड, तो गोल्ड एक नाजुक मोड़ पर अभी खड़ा हुआ है।
2: पुनीत जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद निखिल।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मार्केट मंत्रा, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। پیش خدمت فرمائش فلمی نغموں کا پروگرام تعمیر

ले इरशाद, आज का ये प्रोग्राम लेकर आपका दोस्त आपका होस्ट नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश आप तमाम सामिन के नजर।

रमन फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, मौसीकी शंकर जयकिशन की थी। सुनने के ख्वाहिशमंद थे हमारे बहुत सारे सामने। थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं मैसेजेस को, ईमेल्स को आपके, और उसके बाद फिर इनको शामिल किया जाएगा। आप तो जानते हैं एक झड़ी सी लग जाती है जैसे ही 10:30 बजते हैं जनाब। तो चलिए जनाब पहला ईमेल शामिल कर लेते हैं, और ये पहला ईमेल घंटाघर चौक खंडवा से मिला है, संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, संप्रीत पंचोलिया का। और आप हैं ऊंचे गांव नांदेड़ महाराष्ट्र से देवन शिंदे पाटिल, और चंडीगढ़ सिटी से फरमाइश की बिमला नेजा और सतीश अनेजा ने। सिद्धेश्वर के वर्तमान से सुनना चाहते थे इस नगमे को पंजाब राम टेके, यशवर राम टेके, शव्या राम टेके। अलीगढ़ डब्वाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार कुलदीप गांधी की फरमाइश भी थी। और आप हैं उमरकोट मोहल्ला चाकुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज अब्बासी और शब्बीर हुसैन मुज्जू बाबा शहजाद की फरमाइश थी सब्जी मंडी बुलडाना से। कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज भी सुनना चाहते थे इसी नखमे को, और इसी नखमे की फरमाइश की थी। आखिरी दीवान एमपी से रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी, काजल मीनाक्षी ने। और आप हैं अनवर साबरी, मुदस्सिर साबरी।

फैमिली सेट प्रोग्राम की अगली पेशकश है माँ बेटा फिल्म का दुगाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, और इस नगमे को कलमबंद किया प्रेम धवन ने, मौसीकी तरतीब दी हेमंत कुमार ने। इस दुगाने को सुनने के मुंतजिर हैं मजनू कटीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा, शाहरुख अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, तस्लीम अंसारी की फरमाइश है हररपुर मटकली जिला बरेली से, और आप हैं पिंजौर से चंद्रमोहन और इंद्र मोहन, शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल दुर्गेश्वरी की फरमाइश है नांदेड़ येताला से। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं रोशनलाल देवांगन, कौशल्य देवांगन, हेमलता और अहले खाना। और अगले नगमे को आपकी नजर में करते हैं आप करनाल से बलविंदर सिंह सोढ़ी, और ये फरमाइश ईमेल मिला है किशोर नगर अमरावती महाराष्ट्र से हीरामन शिंदे, शीला देवी शिंदे का, और मुल्लापुर दाखा से सुनना चाहते हैं इस नगमे को राजेश जैन, बिट्टू जैन और साथ में है संजीव जैन, देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अनिकेत की फरमाइश है मानेवाड़ा रोड नागपुर से, और आप हैं सुमित कुमार दामोदर, शशिकला दामोदर, सहदेव दामोदर बुल्डाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से, बुधराज खोरवाल, कमला रानी, साथ में गीतिका खोरवाल उत्तम नगर दिल्ली से। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं ओम गायकवाड़, आविष्कार गायकवाड़, अनामिका गायकवाड़, आपने तंसा रोड हदगांव से फरमाइश इरसाल की है, और राहुल मनवर, सलम अनवर, साथ में बेबी प्रियांशी, शाहू नगर यवतमाल महाराष्ट्र से, और मधुबनी बिहार के नाहर मंटोला से फरमाइश की है मोहम्मद साबिर परवाना, मोहम्मद साजिद अली ने। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं सहारनपुर कुमार हेड़ा से सैयद मसूद, शाहीन हसन, नाजिया इब्राहिम, और आप हैं नबी हसन अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी और सुहेल हसन अब्बासी, मारहरा दरवाजा एटा से। अगला ईमेल गुन्नौर से मिला है फारूक अली खान, फैजी फराज हैं, और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी, अनिल जैन, संयम जैन, मास्टर जीवीएम की फरमाइश है मलिया सदरा मेरठ से, और सलीम अख्तर के साथ में रेशमा बेगम अलीगढ़ से सुनने के मुंतजिर तालिशात प्रोग्राम का अगला नगमा। बबलेश पवार, डैनी पवार, मास्टर मनीष की फरमाइश गांधी चौक बाड़ में राजस्थान से मिली है, और आप हैं सलाई सोकनाह नेपाल से अरुण कुमार शर्मा, रेणदेव शर्मा, राहुल कुमार शर्मा और अहले खाना, रमेश कटांगर, वैशाली कटांगन, धनंजय की फरमाइश गांधी बाग अकोला से मिली है। अगले नगमे को आप भी सुनना चाहते हैं इम्तियाज इमाम आतिश, ताहिरा परवीन आतिश, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा गिरिडीह झारखंड से।

और गंज टंडवाड़ा कासगंज से मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिर बेगम अंसारी, मोहम्मद एयान अंसारी की फरमाइश भी है। अगला मेल रिपीट है, इसको करते हैं जल्दी से साइड लाइन। और कासगंज यूपी से सुनने के मुंतजर इस नखमे को योगेंद्र नायक, गीता नायक और अहले खाना और मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इसार की फरमाइश है, गांव दुलापुर मुरादाबाद यूपी से। 52 मंजिल छोटी बलिया से हैं नूर आयशा अहमद बागबान, अखलाक अहमद बागबान, रुबीना रफत बागबान और अहले खाना। और गन्नूलाल रजक के साहू अश्वनी वर्मा की फरमाइश देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से मिली है। और दिलावा खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब है रघुवीर नगर दिल्ली से। और अगला ईमेल रिपीट हो गया, इसको भी करना पड़ेगा साइड लाइन। राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश हैं छत्रपति संभाजी नगर से। और ये फरमाइश मिली है पंचकुला सेक्टर 9 से अश्वनी चुक, आशु चुक और गोविंद चुक की। इसी नकबे को सुनना चाहते हैं वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं, तो आप थोड़ा सा साइड लाइन हो जाइए, उसके बाद एक और ईमेल शामिल होगा। गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर, प्रदीप यमेकर मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं। और मंदसौर एमपी से हैं, भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा। अब देखिए आपने दूसरी जगह नाम भी लिखकर भेजा है, ये नाम पहले ही शामिल हो चुके हैं। आप तो इतने सीनियर हमारे लिसनर हैं मुकेश शर्मा साहब, थोड़ा सा ख्याल रखिए इस बात का। एक ईमेल आईडी से बस एक ही जगह की फरमाइश आप इस्तेमाल कीजिए, शुक्रिया जनाब आपका। और राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, बुल्के वाली फल ना जाए, गोकुल चौक गंग जला सहरसा से। अगला मेल फिर रिपीट हो गया, इसको भी करना पड़ेगा साइड लाइन। रजाक मोहम्मद शमीम बेगम इमरान खान है हनुमानगढ़ राजस्थान से। तो चलिए सिलसिला ई मेल्स का यही रोकते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन नगमा सुनते हैं।

अली हसन ने सेहरा फिल्म का दो गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ रामलाल की मौसीकी में। और नगमा निगार कौन है ये आप सब बखूबी जानते हैं, शायद बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, बताने की जरूरत अगर है तो ये कि ये नगमा कौन कौन सुनना चाहता है। शिव मंदिर, हकीकतपुरा, मऊसे, मुन्ना भाई, स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन और उनके बहुत सारे साथी। और ये फरमाइश मिली है सुब्रत चौधरी साहब के कोलकाता से, और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं शम्सुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान और अहले खाना। और आप हैं निखिल कुमार निषाद, महेश कुमार निषाद और रंभा रानी, मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से, जिला मोहला जगह का नाम लिखा है आपने। और गणेशपुर गंज टंडवार से फिरासत हुसैन, अलकमर जहां और शिफा सिमरन। गंज टंडवारा यूपी से एक और फरमाइश है मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनाज और नवाजिश शेख के। और नूर महल मैसौल सीतामणि बिहार से हैं मुस्तरद जहानाज, सलत जहानाज और फरत जहानाज। और ये ईमेल वैष्णव कॉलोनी सनावत से मिला है मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शादाब खत्री का। अगले नगमे को आप भी सुनना चाहते हैं, दिलीप मालका, सुनीता मालका, योगेश मुस्कान, यादव मोहल्ला से आपने फरमाइश में इरसाल की है। और अगला ईमेल टीवी टावर नागपुर महाराष्ट्र से नाना डोंगर दीवे, राहुल डोंगर दीवे और रामाताई डोंगर दीवे का, बहुत पुराने सामीन हमारे, काफी दिनों के बाद मुझे लगता है आप तशरीफ लाए, खुश आमदीद कहते हैं आपको। वो जमाना था जब खतों के जरिए आप फरमाइश इरसाल किया करते थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है वो जमाना भी। और उमाली महाराष्ट्र से अनूप कुमार उद्धव पाटिल, इसी नगमे को सुनना चाहते हैं, बुडगहन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, राम शरण, चंद्रेश कुमार और अहले खाना। और अगला ईमेल मिला है नारायण इंगले, मंगला इंगले और राजकुमार खर्चे का, मलकापुर बुलढाणा महाराष्ट्र से। और आप है विनायक बेंडे, शुभम बेंडे और साथ में उनके हैं मंगला बेंडे, आकोट से आपकी फरमाइश में मौसूल हुई है। चंद्रेश गौर, वंदना गौर, जयपाल यादव हैं सागर एमपी से, इसी नगमे को सुनना चाहते हैं, बगबुड़िया पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम और कुसुम नेताम। और अगला ईमेल, जी हाँ ये रिपीट हो गया, इसको साइडलाइन करना पड़ेगा, स्टेट बैंक ईश्वर कॉलोनी नांगली टेरी नजफगढ़ से मैथिली कुमारी, लड्डू कुमारी और साथ में है टुक टुक। तो आइए सुनते हैं नगमा, जब वक्त रहेगा तो कुछ और नाम जरूर शामिल किए जाएंगे, फिलहाल तो खूबसूरत दो गाना।

भारतीय ऑपरेटर्स को 105 इलाकाई टर्बो प्रॉप तैयारों की मुमकिना फ्राहमी के सिलसिले में पेशरफ्त की है। जनूबी कोरिया में जारी आलमी पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने शानदार आगाज करते हुए 4 तमगे हासिल किए, जिनमें सोने का 1 तमगा भी शामिल है। और खवातीन के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत रिकॉर्ड 0 के मुकाबले 19 गोल की जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बैन अल-अक़वामी कानून, बातचीत और कसीर मुल्की ताउन पर मबनी एक महफूज, पुरामन और पायदार खलाई शोबे की हिमायत करता है। उन्होंने कहा है कि साइंसी डेटा को खुलेपन और दयानतदारी के साथ पूरी इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने यह बात आज फ्रांस के शहर पेरिस में मुनाकिदा बैन अल-अक़वामी खलाई समिट से वर्चुअल तौर पर खिताब करते हुए कही। वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि जैसे जैसे खलाई मदार ज्यादा गुंजान होता जा रहा है और खलाई सरगर्मियों में शामिल ममालिक और इदारों की तादाद बढ़ रही है, टकराव के बजाय ताउन, मुख्तसर मुद्दती फायदे के बजाय पायदारी और इखराज के बजाय शमूलियत को तरजीह दी जानी चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि भारत का खलाई सफर इसी फलसफे की अक्कासी करता है। भारत के खलाई सफर में होने वाली नुमाया पेशरफ्त का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 ने भारत को चांद के कुतुब जनूबी के करीब उतरने वाला दुनिया का पहला मुल्क बनाया, जबकि आदित्य L1 सूरज के राजों से पर्दा उठाने के अमल में मसरूफ है। वज़ीर आज़म ने खलाई सफर में इसरो के रोल की सताइश करते हुए कहा कि इसरो ने अपनी शानदार कारकर्दगी और कम लागत वाले खलाई मिशनों के जरिए आलमी सतह पर काफी तारीफ हासिल की है। उन्होंने कहा कि इसरो की सलाहियतें किसानों और माहीगीरों की मदद, मौसम की पेशगोई, कुदरती आफात से निमटने और जहाजरानी समेत मुख्तलिफ शोबों में काम आ रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि 34 ममालिक के 430 से ज्यादा सैटेलाइट भारतीय रॉकेटों के जरिए खला में भेजे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसरो की टेक्नोलॉजी और बैन अल-अक़वामी शराकतदारी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है। जनाब मोदी ने भारतीय साइंसदानों, इंजीनियरों और तकनीकी माहिरीन की कई नस्लों की खिदमात, लगन और मेहनत को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इसरो ने मिशन दर मिशन और कामयाबी दर कामयाबी अपनी साख कायम की है और भारत को खलाई सफर करने वाले मुल्कों में 22 से इफ्तखार बनाया है। नई दिल्ली इस हफ्ते के आखिर में 18वीं ब्रिक्स समिट मीटिंग की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। कौमी राजधानी में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया गया है और वसी पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। भारत मंडपम में हफ्ते के रोज शुरू होने वाली 2 रोजा सरबराह मीटिंग दुनिया की 11 बड़ी उभरती और तरक्की पदीर मईशतों को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा करेगी। इब्तदा में ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल थे। 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान, मुत्तहद अरब अमारात और सऊदी अरब को शामिल किए जाने के बाद ब्रिक्स में तौसी हुई, जबकि इंडोनेशिया 2025 में इसमें शामिल हुआ। बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम ब्रिक्स शराकतदार ममालिक की हैसियत से सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। ब्रिक्स ममालिक मजमूई तौर पर दुनिया की तकरीबन 49% आबादी और आलमी मजमूई घरेलू पैदावार GDP के तकरीबन 40% की नुमाइंदगी करते हैं। चीन की वजारत खारजा ने आज ऐलान किया कि सदर शी जिनपिंग इस हफ्ते वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए भारत पहुंचेंगे। उनका यह दौरा आलमी सतह पर गैर मुस्तहकम सूरत हाल, मगरबी एशिया में जारी तनाजा और रूस यूक्रेन जंग के दरमियान हो रहा है। तकरीबन 7 वर्षों में यह सदर शी जिनपिंग का भारत का पहला दौरा होगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की तवक्को है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग 2026 के पेश नजर राष्ट्रपति भवन, म्यूजियम और अमृत उद्यान कल से 13 सितंबर तक आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। संघ जमहूरिया के सेक्रेटरियट ने कहा है कि इस हफ्ते राष्ट्रपति भवन के सदरदार में चेंज ऑफ गार्ड तकरीब भी मुनाकिद नहीं की जाएगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि नरेंद्र मोदी की क्यादत वाली हुकूमत ने मुल्क के कुदरती आफात से निमटने के निजाम को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है और इसका हदफ जानी इतलाफ को 0 तक लाना है। जनाब शाह नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM की गवर्निंग बॉडी के तीसरे इजलास की सदारत करते हुए खिताब कर रहे थे। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत 3 बुनियादी सुतूनों पर तवज्जो मरकूज कर रही है, जिनमें खतरात में कमी,

ये था रूप सुंदरी फिल्म का तुकाना, सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। मौसीकी की जहां तक बात है तो सरदार मलिक ने इसे तरतीब दिया, भरत प्यास ने इस नगमे को लिखा और फरमाइशें काफी है हमारे पास, उनको शामिल करना चाहेंगे। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कुकनेजा, पूनम कुकनेजा, विशाल प्रिया और आप हैं, नासिर शेख नादेना से साजिद शाहिद, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी नियति कुमारी की फरमाइश बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से मिली है और मिश्रीलाल विश्वकर्मा, निरादी विश्वकर्मा, चेतन विश्वकर्मा तख्तपुर छत्तीसगढ़ से सुनना चाहते थे इस नगमे को। कुंडलवाड़ी रामरतन टॉकी से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर भी साथ में हैं और ये फरमाइश मेल मिला है राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता और रानी मुकेश गुप्ता का। और आप ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, कोटवा, नारायणपुर, बापट्टी, बलिया से सुशांत प्रिया, मास्टर निवेश कुमार और लड्डू कुमारी, टिम्बर मार्केट, कीर्ति नगर, नई दिल्ली से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो, करिश्मा शेख, हिप्पर सोगा, लातूर से। और ये फरमाइश ई मेल मिला है तम्बरम चेन्नई से शाहिद अली, इफ्फत फारूकी और साथ में है इनकी बेटी हिफ्जा अली। सल्लर पैगाम कश्मीर से सुनना चाहते थे इस नगमे को पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन और कैसर उद्दीन, मोहम्मद उस्मान अंसारी, साथ में उनके कौन कौन है, मोहम्मद वो नाम है जो शामिल नहीं हो सकते चूंकि वो अलग अलग ईमेल में भी मौजूद हैं, इसलिए आप ही का नाम शामिल होगा। उस्मान साहब सावर रोड गंज टंडवारे से आपने ईमेल हमें रिसाल किया है। भोपाल के राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार और कर्नाटक स्टेट चेन्नई तिरुपति से हैं प्रकाश श्यामला और इसी नगमे को सुन रहे थे। नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर चरादा बालोदा बाजार से और आप हैं संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, नसवाला चौक मलकापुर से, बुलडाना बरसिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभता मानकर और श्लोक कुमार की फरमाइश भी थी और बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया रजत हैं झज्जर हरियाणा से और ये फरमाइश मिली है रावल करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया की जानिब से। और आप भी हमारे बहुत पुराने सामने में से हैं, किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, हर्षद देवी, वर्षा सुमन और कुछ और साथी भी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले एक नगमा आपकी नजर कर दी जाए, उसके बाद फिर बारी है आपके नामों के। और ये जो नगमा है लता मंगेशकर की आवाज में है, फिल्म है बगदाद की रातें।

इस हार में भी जीत का मजा है दोस्तों, क्योंकि मोहब्बत में बाजी जीती नहीं हारी जाती है। और अगला नगमा है अशरफ असलम मोहम्मद रफी की आवाजों में, सचिन देव बर्मन की मौसीकी और मजरू सुल्तानपुरी ने इस नगमे को कलम बंद किया है। और जहां तक फरमाइश की बात है, स्वर्ण सिंह गांव दौलेवाला जिला मोगा पंजाब से सुनना चाहते हैं इस नगमे को। और अगला ईमेल रिपीट हो गया है, इसको साइड लाइन कर देते हैं। कुमार गली कुलगांव से पांडु चंदन उषा चंदन, साथ में प्रतीक्षा और बड़े देवी वाराणसी चौरा हंसे हैं अरुण कुमार मालवीय, दर त्रिभुवन नाथ मालवीय, साथ में अनमोल मालवीय श्लोक भी हैं। और जीवत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता थाना रोड बक्सर से आपकी फरमाइश में मिली है। इंदिरा भैया दिल्ली से, बेबी अंसारी, निशा परवीन और डब्लू अंसारी और अहमद भाई फूल वाले, जो ही इकबाल इमरान अहमद, छोटू बलिया करजत मुंबई से। और अगला ईमेल है 15 कावड़ा से अनिल उषा बुरांडे अनुश्री धनश्री बुरांडे का, और ये फरमाइश उन दोस्तों की जो हो चुके हैं शामिल, इम्तियाज इमाम आतिश, तायरा परवीन आतिश, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा है बिशनपुर गेटी झारखंड से, और यहां भी थोड़ा सा डाउट होता है कि शायद ये शामिल तो नहीं हुए, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, साथ में विलिस। और ये फरमाइश में सतप्रकाश सनोटिया गए रोहिणी से आपने ये फरमाइश हमें साल की है। और अगला ईमेल भेरूलाल वाक्तरिया और साथ में भोला वाक्तरिया, प्रवीण वाक्तरिया, उन्हेल उज्जैन एमपी से आपने फरमाइश हमें साल की है। वर्डिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी और लवली और उनके कुछ और साथी।

0: और मोहम्मद करीम जख्मी, नजमा बेगम नाज, बेबी फातिमा गाजी की फरमाइश, रेलवे रोड गंज टंडवारा से, जसबीर सिंह अरोड़ा साथ में, करमजीत कौर और लवप्रीत कौर हैं, निम्नाबाद जींद से आपने फरमाइश है मेरे साल की, मल्लारपुर चंद्रपुर से हेमंत कुमार भाषंकर, प्रिया भाषंकर, मास्टर ओमी भाषंकर, पीएस ना होकर निर्मल ना होकर विशाल हैं, नरेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, और वेदिका मिड्डा अलिका मिड्डा की फरमाइश, हनुमानगढ़ राजस्थान से मिले, गांव नायवाला से, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा साथ में, योगेश और उनके कुछ और साथी, कादरगंज रोड गंजे टनवारे से सुनना चाहते हैं अगला नगमा, शादाब शमशाद, अंदलीब खानम, सारा फातिमा शेख, और ये फरमाइश मेल मिला है मोहनपुर कमालगंज फरुखाबाद से तस्नीम अहमद फारूकी का। अगले नगमे को आप भी सुनना चाहते हैं, भोपाल के राजस्थान के सामीन, धरन छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, छोटे अंसारी, आलम अंसारी, असद अंसारी, पंजूसराय संबल से, और ये फरमाइश मेल मौसूल हुआ है गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और प्रथम सोनी का, और अलीम पटेल, मास्टर अलीम पटेल, इनका पूरा नाम है मुजाहिद पटेल, लदीम पटेल, नर्मदा पाक मंगलपेटा महाराष्ट्र से, अजमेर शरीफ राजस्थान से फरमाइश किया सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा हाशमी, मोहम्मद आलम हाशमी ने, और आप हैं नरोत्तम गौड़, हिमांशु गौड़, यश गौड़ उदयपुर से, इसी नगमे को सुनना चाहते हैं मेरठ कैंट से शोभापुर गांव से हैं दिग्दर्शन और कविता गौर और अहले खाना, मनोज जेठवा, हर्ष जेठवा बुराव के नगर से हैं, और ये फरमाइश मिली है तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम रावे शेख, शेख रहीम मुन्ना की। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा।
1: जो इजाजत हो तो एक बात कहूँ, जो इजाजत हो तो एक बात कहूँ, सुनो सुन जाने मन,
2: कहो कहो जाने।
0: हम बताते हैं ये क्या कहना चाहते हैं, दिल तुम्हारा है हमेशा तुम्हारा होगा, कौन कहता है मुझे इश्क दोबारा होगा।

0: Mann?
1: आपके कफन सुनिए नाम भी शामिल कर लेते हैं और गन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली और साथ में मुजफ्फर अली गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी पुष्पेंद्र कुमार डूडी अशोक दलैनी तदरिस और सविता हैं कुमार गली श्रीरामपुर से ये फरमाइश मिली है दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी हेमलता और सी आर कुलकर्णी की और इसी नगमे को सुन रहे हैं प्रभुदास कोटेचा हंसा कोटेचा और आशीष कोटेचा जंक्शन पोर्ट राजकोट से मेहनगर मुख्य महाराष्ट्र से अभिजीत गौनकर है सरिता गौनकर अर्जुन कुमार डुग्गू अर्जुन गोहान का डुग्गू दरअसल का नाम है और राठगांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से दिलीप रामेकर हर्ष रामेकर और अक्षय और अगला ईमेल मिला है शंभू दयाल खटक विमला देवी और पूजा का गांव जाखोस से और भोजपुर तगा सहारनपुर से है मोहम्मद इंतजार मोहम्मद जावेद और राहत अली और उनके कुछ और साथी अगला ईमेल हो गया है रिपीट इसको भी करना पड़ेगा ड्रॉप और सुरेश नारंग आशु नारंग विनोदपुरी हैं सहारनपुर से इसी नगमे को सुन रहे हैं एम ए वहीद रुमानी डॉक्टर मोहम्मद जमीर मोहम्मद फसीफ औरंगाबाद तेलंगाना से और ये फरमाइश मिली है कलानौर से नरेंद्र शर्मा किरण शर्मा मयंक शर्मा की और आप हैं अनिल ताम्रकार संजीव शर्मा विपिन गुप्ता और उनके बहुत सारे साथी शिवाजी चौक कटनी से और अगला ईमेल कमल सानी और पिंकी सानी का है नागपुर महाराष्ट्र से और आप है मास्टर अलीम रजा सिद्दीकी मास्टर मुनवर हुसैन अंसारी फैजुल अलीम सिद्दीकी पश्चिम थोकगंज टंडवारा से और गोविंद प्रास सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत संगीता कंवर तुषार सिंह और उनके अहले खाना और सेक्टर 5 जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान की फरमाइश भी हो रही है मुकम्मल

और अब सुनिए अपना बना के देखो, फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी का गाया हुआ, रवि की है मौसीकी। सुनना चाहते हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कागड़ा, बबीता बोट और निखिल कागड़ा। तिलक राणा, रोबिन राणा नेपाल पैलेस सागर से हैं और ये फरमाइश मिली है मदरसा गेट भोपुर मड़िया हु जौनपुर से इशादे मदन सारी कामरा निषाद तबस्सुम की जानिब से। और ये फरमाइश ईमेल नई बस्ती गंजे टंडवाला से मोहम्मद यासीन हाशमी, मोहम्मद तसीफ हाशमी और नजमा बेगम हाशमी और अहले खाना की जानिब से। कभी कभी लगता है कि नामों को इधर उधर करके थोड़ा सा दोबारा शामिल होने की कोशिश लोग करते हैं। लसुड़िया पाटा तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ एमपी से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन और कोमल और उनके बहुत सारे साथी, के संजीव डाबेराव, डॉक्टर रसिका डाबेराव, डॉक्टर कौस्तुम डाबेराव की फरमाइश विदर्भ आकोट से मिली है। बाबूभाई भारती देवी है जवाहर नगर उदयपुर से और ये फरमाइश मिली है। सत्य प्रकाश गोयल, रेणु गोयल, विदित गोयल की रोहिणी दिल्ली से आपने फरमाइश है मेरे साल की और अगला मेल हो गया रिपीट, इसको भी कर देते हैं ड्रॉप। नवीन मिर्गे, प्रियदर्शन मिर्गे, डॉक्टर प्रियंका काल पांडे साईनगर आरवी महाराष्ट्र से, विजय महोबिया, कविता महोबिया और पेंटर बाबू है रामगंज खंडवा से ये फरमाइश मेल। अनिल वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा का सदर बाजार कुरावली से, निशा सलवानी, बेबी आलिया और नौशाद सलवानी है, आपने धनौरी तेलीवाला से फरमाइश मेरे साल की है। मोहम्मद यूस खत्ती, साथ में उनके सादिक खत्ती और यूसुफ खत्ती भी हैं, खेपा कॉलोनी खंडवा से आपके फरमाइश मेरे साल हुई है। दमदर में रिपोर्ट कोलकाता से रेखा बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, बेबी अन्विका, तनुश्री गुप्ता। और ये ईमेल पश्चिमपुरी दिल्ली से मिला, उत्तम सिंह जुनेजा, भूपेंद्र जुनेजा, सीमा जुनेजा का कुछ और नाम भी शामिल है इसमें। मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत राशि रक्षित हैं, राजावत कॉम्प्लेक्स शाजापुर नई सड़क एमपी से, सुखिंदर सिंह जोड़ा सिटी देवाना कृष्णा पार्क दिल्ली से और बाबा साहेब बड़ोदे आदि चरपे चंद्र प्रभा बड़ोदे जरूड़ वरूर से सुन रहे इस वक्त तामिल एशियात प्रोग्राम। और जाते आते एक और नगमा छोटा सा आपकी नजर करना चाहेंगे, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में ये नगमा है और फिल्म का नाम है मैं शादी करने चला, चित्रगुप्त की है मौसीकी।

और आखिरी नगमे की फरमाइश के बालकेश्वर कॉलोनी आगरा से सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया और वीर चौरसिया की जानिब से, और आप हैं संतोष कुमार रजक, रौनक रजक, समर्थ रजक, आपने डैम कॉलोनी जबलपुर से फरमाइश हमें साल की, और अगला ईमेल रिपीट हो गया है, इसको भी ड्रॉप कर देते हैं। पुरानी बागपसी लियास मुस्कान कुरैशी, ईरानी कुरैशी और बाबा जैद कुरैशी, शाहजी बोट के, नंदा बोट के, उत्तम जमधाड़े हिंगोली महाराष्ट्र से हैं, और असरतपुरा मरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी, मोहम्मद तनवीर आलम अंसारी की फरमाइश भी है, राशिद हुसैन अंसारी, आस्था अंसारी और कैफ हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से, और ये फरमाइश मिली है जगदीश धाकड़ नायमा, रंजू भाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ हैं, हिंगड़ी आलोट से आपने फरमाइश हमें साल की, और फहीम मंसूरी अदी, फातिमा मंसूरी हैं बांदा यूपी से, और इसी नगमे को सुन रहे हैं नरोत्तम गौड़, हिमांशु गौड़, नहीं ये पहले शामिल हो चुके हैं तो इसको ड्रॉप करना पड़ेगा जनाब। अगला ईमेल धर्मपुरी से मिला, शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख और मुजफ्फर शेख का, इसी नगमे को सुनने की फरमाइश की तंगौरी मोहाली पंजाब से, गुरप्रीत तंगौरी, जसबीर कौर और महकप्रीत कौर ने, और बाबा साहेब सरगर, ज्योति सरगर, गार्डन रोड पैठण से, श्याम किटे, बंदरा किटे, कार्तिक किटे, राहड गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से, और अगला ईमेल है बेडी एमपी से, हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक तन्नू और उनके

साथियों का, और वलीउल अंसारी अस्मरान अंसारी मोहम्मद सुल्तान पुराना तालाब डुमराव से, और ये फरमाइशी ईमेल उन दोस्तों का जो हो चुके हैं शामिल। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर, विविधा वंडलकर रायपुर से आपने फरमाइश मिसाल की, और एनुद्दीन बनट्टी, मुमताज बनट्टी, रियाज बनट्टी, गढ़ मोहल्ला महालिंगपुर से।

राजकोट से फरमाइश की रश्मि और जरना ने। नाला मछरट्टा फरुखाबाद यूपी से संजू चौरसिया, शेष चौरसिया, साथ में कुशाग्री चौरसिया।

0: मोहम्मद शराफत रंगरेज, आसिफ रंगरेज और सातिक रंगरेज वसाई ईस्ट मुंबई से आपने ये फरमाइश हमें इरसाल की है। और ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिराई, मीरा जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से और मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से लगता है शायद ये शामिल हो चुके हैं। सोपान ताड़े चलिए शामिल करें, कहते हैं कि आपने हमें ब्लॉक कर दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से निर्मोहन, उषा मोहन और मधु नायक। प्रोग्राम की आखिरी पेशकश ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर हमारी नशात जारी है।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत श्रीलंका रक्षा सहयोग से मजबूत होती क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अर्जुन जी चौधरी।
2: हमारे साथ जुड़े हुए हैं विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, जो रक्षा के विषयों के विश्लेषक हैं। और आकाशवाणी में सर आपका स्वागत है।
3: जय हिंद अर्जुन जी।
2: जय हिंद सर। और आज हम बातचीत करेंगे इंडिया श्रीलंका के साझेदारी को लेके। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, हम शुरुआत करते हैं, किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो दर्शन हुआ है श्रीलंका में इसी महीने, ये 38 साल बाद हुआ है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है सर?
3: अपने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी जो श्रीलंका, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 38 साल के बाद गए हैं। श्रीलंका और भारत के जो रिश्ते हैं बहुत बहुत पुराने हैं, 2500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ऐसा कोई हिंदुस्तान में आदमी नहीं होगा जो श्रीलंका के बारे में नहीं जानता है। और यही कारण है कि श्रीलंका के साथ एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते, और जिस प्रकार से श्रीलंका में भी उड़ाव चढ़ाव होता रहता है, तो उसमें जिस प्रकार से भारत ने उनकी मदद की, वो भी इस बात के उनको एहसास है कि भारत एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते भारत ने उनको जबरदस्त सहायता की। और यही नहीं कि इकोनॉमिकली जब इवन जब साइक्लोन आया उधर भी की। तो ये ऐसे संदर्भ में जब हम देखते हैं कि अपने रक्षा मंत्री जी जब गए तो उन्होंने कुछ एक डिफेंस एमओयू दस्तखत किए, और वो बहुत जरूरी है। और जो कैपेसिटी और जो कैपेबिलिटी हमने अपने L-70 को दी, वही उनको देने की कोशिश की। जैसे हम लोगों ने उसको ड्रोन किला अपग्रेड किया है, अब ये कह करके कि भाई 1960 की पुरानी गने इसको आउट कर देना, उसको जबरदस्त इस्तेमाल किया और उसका हम लोगों ने बहुत फायदा देखा। तो श्रीलंकन एयरफोर्स ने भी अपने एयर डिफेंस के लिए इन गन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उन्हें अपग्रेड करने के लिए कहा है कि हम उन्हें अपग्रेड करके देंगे, उन्हें मेंटेन करेंगे हमारे द्वारा, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो इनको अपग्रेड करेगा। तो जैसे मैं बता रहा था ड्रोन के लिए इलेक्ट्रिक ड्राइव, जैसे कि जल्दी एंगेजमेंट करने में फायदा हो जाए, तो उसको डिजिटल ब्रेन, हम लोगों ने इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम किस प्रकार से उसको एक रियल टाइम में लाना, जैसे कि जब सिर्फ आदमी काम करता है तो थोड़ा वक्त लगता है, तो अगर तरीके से

0: डिजिटल ब्रेन, इलेक्ट्रिक ड्राइव, उसमें डे एंड नाइट विजन कैपेबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करना, तो ये सब चीजें जो है हम लोगों ने कहा है हम उनको मेंटेन करेंगे और हम उन्हें प्रदान करेंगे जिससे कि उनका जो एयर डिफेंस है वो और सुदृढ़ हो जाए। और इतना ही नहीं, हम लोगों ने उनके साथ यूथ एक्सचेंज यानी कि एनसीसी, इस प्रकार से दोनों देशों के जो एनसीसी कैडेट्स हैं आएंगे जाएंगे एक दूसरे से मिलेंगे, जो हम लोग करते हैं एनसीसी में, ये एक ऑफिशियल हो जाएगा तो अच्छा है। और जो यूथ एक्सचेंज के द्वारा जो कैडेट्स हैं जो आदान प्रदान एनसीसी के होगा उसके द्वारा दोनों देशों के बीच में और संबंध अच्छे बढ़ेंगे। उतना ही नहीं, जो एनडीसी है जिसमें श्रीलंका के ऑफिसर इधर आते हैं उनका भी नेशनल डिफेंस कॉलेज है, तो दोनों कॉलेजेस है मिल करके किस प्रकार से शेयर देयर स्ट्रेटेजिक विजन एंड हाउ टू गो अबाउट इट, तो ये देख करके होगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब जो है वो श्रीलंका में हम लोग लगाएंगे जिससे कि जो आधुनिकरण है अपने इक्विपमेंट का उसमें इस प्रकार से इसको इंकॉर्पोरेट और फिर इसका कैसे इस्तेमाल होगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका की अपनी 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के तहत कोलंबो में INS उदयगिरी पर आयोजित डेक रिसेप्शन को संबोधित किया। उन्होंने भारत और श्रीलंका की रक्षा प्रणालियों के बीच चल रहे परियोजनाओं और समझौतों ज्ञापनों MOUs पर बात की। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
2: आफ्टर अवर डिस्कशन वी कंक्लूडेड 3 मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द डिफेंस डोमेन, नेमली MOU ऑन अपग्रेडेशन ऑफ द L-70 guns फॉर SLAF, MOU ऑन NCC कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, MOU ऑन कोऑपरेशन बिटवीन NDC इंडिया एंड NDC श्रीलंका।
1: लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, आपने हमें बताया कि किस तरीके से MOUs के हस्ताक्षर हुए हैं और इसमें L-70 guns और उसके साथ विद्या संबंधी के भी कई चीजें आई हैं, नेशनल डिफेंस कॉलेजेस का इंस्टीट्यूशनल टाई अप्स हुई हैं, बांधे हुए NCC दोनों देशों के, और स्थापना हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब का जिसमें भारतीय टेक्नोलॉजी असिस्टेंस सहायता का प्रयोग हुआ है। अब आप बात करिए सर मैरिटाइम सिक्योरिटी के बारे में, जहां पे ड्रग ट्रैफिकिंग और पायरेसी जैसे महत्व इश्यूज को भी एड्रेस किया गया है और यहां पे कुछ प्रोग्राम्स हैं, कार्यक्रम पहले से स्थापित की गई हैं, ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और जो महासागर विजन है वो क्या है सर?
0: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैरिटाइम को लेकर के भारत और श्रीलंका के बीच में जबरदस्त एक सहयोग है और ये जो सहयोग है जिसे प्रधानमंत्री ने उन्हें नाम दिया महासागर, यानी कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, और ये बहुत जरूरी है ये महासागर, और खासकर जब श्रीलंका भी एक आइलैंड पूरा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, हम लोगों का भी जो कोस्ट तकरीबन 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है अपनी, तो उसको देखते हुए और बहुत जरूरी है कि दोनों देशों के बीच में अगर मैरिटाइम सर्वेलेंस होगा, दोनों देशों के बीच में ट्रेनिंग होगी इसको लेकर के, तो चाहे फिर वो डोमेन में आते जैसे इलीगल फिशिंग हुआ, सस्पिशियस वेसल्स को देखने के लिए कोई स्मगलिंग कर रहा है, कोई नार्कोटिक ट्रैफिक कर रहा है, तो इन सबको देखते हुए तो बहुत जरूरी है। और इतना ही नहीं है, क्योंकि एक आइलैंड होने के नाते कहीं ना कहीं कहीं साइक्लोन या कुछ ऐसे बहुत पहले सुनामी आई थी, तो हमने देखा कि अगर दोनों देशों के बीच में संबंध बहुत अच्छे हैं और हमारा पड़ोसी है, तो वी शुड बी द फर्स्ट रेस्पॉन्डर, और फर्स्ट रेस्पॉन्डर सिर्फ यही नहीं कि उनको इकोनॉमिकली मदद करें, पर हर चीज में उनको लगना चाहिए कि अभी जैसे हम लोगों ने देखा जब वहां पे आर्थिक श्रीलंका में बहुत खराब हो गई थी, तो भारत ने IMF के लोन देने से पहले, वो तो एक साल के बाद आया, उससे पहले ही उनकी मदद की और उनको जो चाहा, चाहे वो खाने के मामले में है, दवाइयां हो या कैश हो, जो भी उनको चाहिए था क्रेडिट लाइन दिया। तो ये जो बातें है वो भी छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, $4 अरब था। अगर हम देखें तो IMF का जो लोन आया था वो तकरीबन $2.5 बिलियन का था, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, फर्स्ट रिस्पॉन्डर, क्योंकि हम आपके पड़ोसी हैं और हमारी जिम्मेवारी बनती है और हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, और ये जो मदद है दोनों के लिए, इस मदद से जो इंडियन ओशन रीजन है, सिक्योर सी लेन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन,

0: रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, एक दूसरे के बारे में समझना, काउंटरिंग टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, स्मगलिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम, ये जो है अगर छोटी मोटी बोटें जो इधर उधर घूम किया पता नहीं चलता है, या फॉरेन रिसर्च वर्सेस आकर के डॉक कर जाती है उसके बारे में पता नहीं चलता है। तो कम से कम ऐसे नहीं होना चाहिए कि श्रीलंका को कल कोई ऐसा खतरा हो, या वहां पर कोई आए जिससे भारत को उसका खतरा हो। तो दोनों मिल करके यकीन करेंगे कि कम से कम इंडियन ओशन रीजन के लिए ये बहुत जरूरी है कि इट शुड बी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, वहां पे कोई ऐसे ना हो कि हम किसी दूसरे देश के ऊपर निगरानी रख रहे हैं, ऐसे नहीं। हम यकीन कर रहे हैं ये जो इलाका है इंडियन ओशन रीजन, उसमें दोनों मिल करके हम काम करेंगे। एक तो ये हो गया, और दूसरा जैसे आप कह रहे थे जो A-70 गन्स है उसका भी मकसद वही है कि एयर डिफेंस प्रोवाइड करना श्रीलंकन फोर्स को, और किस प्रकार से हमने उनकी मदद करनी है, अपडेट करना है। तो बेसिकली क्योंकि रक्षा मंत्री गए हैं, तो खासकर जो रक्षा को लेकर के जो हम लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट हुए हैं भारत और श्रीलंका के बीच में, उसको लेकर के चाहे वो मैरिटाइम सर्वेलेंस के लेकर के हो, या डिजास्टर के रिस्पांस लेकर के हो, या ज्वाइंट एक्सरसाइज को लेकर के हो, या मिलिट्री ट्रेनिंग को लेकर के हो, तो ये सब है। या आईएनएस उदयगिरी जो है अभी वहां पे डॉक है, और वो आईएनएस उदयगिरी डॉक होने का मकसद ही है कि वहां के जो श्रीलंकन नेवी के जो सदस्य हैं, तो उनके आर्मी है, एयरफोर्स के, वो आकर के देखें कि वो किस तरह का आईएनएस उदयगिरी जो डॉक है उसमें क्या क्या आयु लगे हैं, किस प्रकार से ब्रह्मोस की मिसाइलें लगी हुई है, क्या है ये, वो सीखे देखे। तो एक दूसरे को दोनों आर्म फोर्सेस के बीच में एक भरोसा बढ़ता है, और वो भरोसा बहुत जरूरी होना चाहिए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट, एक दूसरे के ऊपर भरोसा, और किसी के बरकलाप नहीं, दोनों के फायदे के लिए। इट हैज टू बी अ विन विन सिचुएशन। तो यही कारण है कि हम देखते हैं कि अपने रक्षा मंत्री जब उधर गए और उनके राष्ट्रपति से भी मिले, उनके प्रधानमंत्री से भी मिले, और इस तरह की जो एग्रीमेंट साइन हुए, खासकर 3 डिफेंस MOU जो दस्तखत हुए, मुझे लगता है दोनों देशों के बीच में अपने संबंध और मजबूत होंगे।
1: केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बेली ब्रिजेस के उद्घाटन और श्रीलंका सेना की रक्षा क्षमता के लिए एक AI लैब की स्थापना पर भी बात की। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
2: वी ऑल्सो वर्चुअली इनॉग्रेटेड 3 बेली ब्रिजेस बिल्ट बाय द इंडियन आर्मी इंजीनियरिंग टीम इन क्लोज कोऑपरेशन विद श्रीलंकन आर्म्ड फोर्सेस। गोइंग अहेड वी विल ऑल्सो बी वर्किंग टूगेदर फॉर क्रिएशन ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब फॉर श्रीलंकन आर्मी फॉर इट्स कैपेबिलिटी एनहांसमेंट।
1: सर, आपने भरोसे की मजबूती की बात की, इसी संदर्भ में MRCC मैरिटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, जहां पे वार्षिक तौर से ट्रेनिंग दी जा रही है 1200 श्रीलंकन डिफेंस पर्सनल को, और जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी की जा रही हैं मित्रा शक्ति आर्मी के लिए और सिनेक्स नेवी के लिए, इसके बारे में बताइए सर।
0: ये जो ज्वाइंट एक्सरसाइजेस होते हैं मित्र शक्ति हुआ बिटवीन श्रीलंकन आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में, ये सालाना होते हैं, और श्रीलंका के साथ ही नहीं, ये काफी देशों के साथ करते हैं, रूस के साथ करते हैं, चीन के साथ करते हैं, अमेरिका के साथ करते हैं, बाकी सिंगापुर के साथ करते हैं, नेपाल के साथ करते हैं, बहुत देशों के साथ हम इस तरह का एक्सरसाइजेस करते हैं। मकसद ये कि दोनों देशों के बीच में, अभी हम देखते थे जापान के साथ हो रहे हैं, तो ये जो दोनों देशों के बीच में, खासकर अपने और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति, मित्र और शक्ति, और शक्ति में शांति बोलते हैं, तो यही कारण है कि मित्र शक्ति दोनों देशों के बीच में जो संबंध है, एक दूसरे के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के बीच में जो सोच विचार है वो एक जैसा हो, और जो नॉर्मल वर्किंग पैरामीटर्स हैं वो एक दूसरे को समझे। तो ये सब जो चीजें हैं भारत और श्रीलंका, अब क्या है इस तरह के जब डिफेंस MOU दस्तखत होते हैं तो इट बिकम्स ऑफिशियल। ये अभी कोई ये नहीं, हम लोग दोनों देशों ने दस्तखत किए हैं और हम दोनों देशों ने माना है ये बहुत जरूरी है। ये जो सी लेंस है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, डिजास्टर रिस्पॉन्स है, हम दोनों मिल करके काम करेंगे, जिसके लिए भारत ने उन्हें डॉर्नियर मैरिटाइम रिकॉग्निशंस एयरक्राफ्ट दिया है, और वो मैरिटाइम डॉर्नियर मैरिटाइम रिकॉग्निशंस एयरक्राफ्ट जो भारत में बनता है वो हम नया एक देंगे, उससे पहले जो अपनी इन्वेंट्री में एयरक्राफ्ट था वो हमने उन्हें दिया, कहा कि 2-3 साल आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, हमारे जो क्रू है उनके साथ काम करते रहिएगा, जैसे

0: भी एक दूसरे के साथ जब मिल करके काम करेंगे और जब वो नया जहाज उनको मिलेगा तो वो उसका अच्छा तरीके से उपयोग में ला सकेंगे फॉर मैरिटाइम सर्वेलेंस। तो दिस कॉन्टेक्स्ट मिलिट्री ट्रेनिंग को लेकर के इसलिए ज्वाइंट एक्सरसाइजेस को लेकर के जैसे INS उदयगिरी वहां पे डॉक है उसको आकर के देखने के लिए, और जैसे इस बार जब वहां पे जबरदस्त तूफान आया तो हम लोगों ने किस तरीके से उनको बेली ब्रिजेस दिए, बेली ब्रिजेस का उद्घाटन अभी क्या रक्षा मंत्री ने होगा, तो ये किस प्रकार से जो वो भी मदद हम श्रीलंका की कर सकते हैं वो हम करेंगे, और इसका जरूर अब श्रीलंका को भी लगता है कि एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर भारत एक उभरता हुआ एक कार्ड है या एक उभरता हुआ एक रिस्पॉन्सिबल देश है जिसके ऊपर सबका भरोसा है, और खासकर जो अब हमारे पड़ोसी हैं उनका भरोसा बढ़ाने के लिए हम लोग इस तरह की एक्सरसाइजेस एक दूसरे के साथ मिलकर के हर साल करते हैं।
1: लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और बड़ी गहराई से आपने हमारे साथ बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप हमारे प्रोग्राम में आए।
0: जय हिंद।
1: जय हिंद सर।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत श्रीलंका रक्षा सहयोग से मजबूत होती क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अर्जुन जी चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। बज़्म मौसीकी, क्लासिकी मौसीकी इस प्रोग्राम में लीजिए। सुनिए विदुषी रोमा रानी भट्टाचार्य का गाया राग दरबारी कानाड़ा में ख्याल।

0: बजनी मौसीकी में अभी आप सुन रहे थे विदुषी रोमा रानी भट्टाचार्य का गाया राग दरबारी कानड़ा में ख्याल। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब्द 12 बजे हैं, अब आलमी खबरें नशे की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप हबीब रहमान से आलमी खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक महफूज और पायदार खलाई शोबे की हिमायत करता है। उन्होंने वर्चुअल तौर पर पेरिस में मुनाकदा पहले बैनुल-अक़वामी खलाई समिट से खिताब किया। नई दिल्ली इस हफ्ते के आखिर में होने वाली 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में आलमी रहनुमाओं की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग आज भारत पहुंचने की तवक्को है। वज़ीर दाखला अमित शाह ने कुदरती आफात से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कोई भी हलाकत न हो के नजरिए के तहत आबो हवा की तब्दीलियों का मुकाबला करने वाले मजबूत गांव और शहर बनाने पर जोर दिया। भारत और रूस ने सिविलियन मुसाफिर तैयारों की मुश्तरका तैयारी और भारतीय ऑपरेटर्स को 105 इलाकाई टर्बो प्रॉप तैयारों की मुमकिन फराहमी के सिलसिले में पेशरफ्त की है। जनूबी कोरिया में जारी आलमी पैराशूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने शानदार आगाज करते हुए 4 तमगे हासिल किए, जिनमें सोने का एक तमगा भी शामिल है। अखवातीन के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत रिकॉर्ड 0 के मुकाबले 19 गोल की जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बैनुल-अक़वामी कानून, बातचीत और कसीर मुल्की तआवुन पर मबनी एक महफूज, पुरअमन और पायदार खलाई शोबे की हिमायत करता है। उन्होंने कहा है कि साइंसी डेटा को खुलेपन और दयानतदारी के साथ पूरी इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात कल फ्रांस के शहर पेरिस में मुनाकदा बैनुल-अक़वामी खलाई समिट से वर्चुअल तौर पर खिताब करते हुए कही। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि जैसे जैसे खलाई मदार ज्यादा गुंजान होता जा रहा है और खलाई सरगर्मियों में शामिल ममालिक और इदारों की तादाद बढ़ रही है, टकराव के बजाय ताउन, मुख्तसर मुद्दती फायदे के बजाय पायदारी और अखराज के बजाय शमूलियत को तरजीह दी जानी चाहिए।

0: मोदी ने कहा है कि भारत का खलाई सफर इसी फलसफे की अक्कासी करता है। भारत के खलाई सफर में होने वाली नुमाया पेशरफ्त का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि चंद्रयान 3 ने भारत को चांद के कुतुब जनूबी के करीब उतरने वाला दुनिया का पहला मुल्क बनाया, जबकि आदित्य L1 सूरज के राजों से पर्दा उठाने के अमल में मसरूफ है। वजीर आजम ने खलाई सफर में इसरो के रोल की शताइश करते हुए कहा कि इसरो ने अपनी शानदार कारकर्दगी और कम लागत वाले खलाई मिशनों के जरिए आलमी सतह पर काफी तारीफ हासिल की है। उन्होंने कहा कि इसरो की सलाहियतें किसानों और माहिगीरों की मदद, मौसम की पेशगोई, कुदरती आफात से निमटने और जहाजरानी समेत मुख्तलिफ शोबों में काम आ रही हैं। वजीर आजम ने कहा कि 34 ममालिक के 430 से ज्यादा सेटेलाइट भारतीय रॉकेटों के जरिए खला में भेजे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसरो की टेक्नोलॉजी और बैन अल-अक़वामी शराकतदारी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है। जनाब मोदी ने भारतीय साइंसदानों, इंजीनियरों और तकनीकी माहिरीन की कई नस्लों की खिदमत, लगन और मेहनत को सराहा। वजीर आजम ने कहा कि इसरो ने मिशन दर मिशन और कामयाबी दर कामयाबी अपनी साख कायम की है और भारत को खलाई सफर करने वाले मुल्कों में बाईस इफ्तखार बनाया है। नई दिल्ली इस हफ्ते के आखिर में 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। कौमी राजधानी में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया गया है और वसी पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। भारत मंडपम में हफ्ते के रोज शुरू होने वाली दो रोजा सरबराह मीटिंग दुनिया की 11 बड़ी उभरती हुई और तरक्की पदीर मईशतों को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा करेगी। इब्तदा में ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल थे। 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान, मुत्तहिद अरब अमारात और सऊदी अरब को शामिल किए जाने के बाद ब्रिक्स में तौसी हुई, जबकि इंडोनेशिया 2025 में इसमें शामिल हुआ। बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाखिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम ब्रिक्स शराकतदार ममालिक की हैसियत से सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। ब्रिक्स ममालिक मजमूई तौर पर दुनिया की तकरीबन 49% आबादी और आलमी मजमूई घरेलू पैदावार GDP के तकरीबन 40% की नुमाइंदगी करते हैं। चीन की वजारत खारजा ने आज ऐलान किया कि सदर शी जिनपिंग इस हफ्ते वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दावत पर सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए भारत पहुंचेंगे। उनका यह दौरा आलमी सतह पर गैर मुस्तहकम सूरत हाल, मगरबी एशिया में जारी तनाजा और रूस यूक्रेन जंग के दरमियान हो रहा है। तकरीबन 7 वर्षों में यह सदर शी जिनपिंग का पहला भारत का दौरा होगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग के आज दिल्ली पहुंचने की तवक्को है। इस दौरान दो रोजा ब्रिक्स सरबराह मीटिंग से कबल दिल्ली पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर आइंदा पीर तक कौमी राजधानी में ड्रोन्स और दीगर छोटे फजाई प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग 2026 के पेश नजर राष्ट्रपति भवन म्यूजियम और अमृत उद्यान आज से 13 सितंबर तक आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। सदर जमहूरिया के सेक्रेटरियट ने कहा है कि इस हफ्ते राष्ट्रपति भवन के सब्जाजार में चेंज ऑफ गार्ड तकरीब भी मुनाकिब नहीं की जाएगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की क्यादत वाली हुकूमत ने मुल्क के कुदरती आफात से निमटने के निजाम को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है और उसका हदफ जानी नुकसान को सिफर तक लाना है। जनाब शाह नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM की गवर्निंग बॉडी के तीसरे इजलास की सदारत करते हुए खिताब कर रहे थे। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत 3 बुनियादी सुतूनों पर तवज्जो मरकूज कर रही है, जिनमें खतरात में कमी, कबल अज वक्त इंतबाही निजाम और सिफर जानी नुकसान शामिल हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिफर जानी नुकसान का नुक्ते नजर सिर्फ कुदरती आफत के मकाम तक महदूद नहीं रहना चाहिए बल्कि आफात की रोकथाम पर भी तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फैसला किया है कि कुदरती आफात से मुतालिक फंड्स की तकसीम भी साइंसी तरीकेकार के मुताबिक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुदरती आफात से निमटने के रियासती फंड SDRF के तहत मुख्तस रकम में तकरीबन 4 गुना इजाफा हुआ है, जबकि कुदरती आफात से निमटने के कौमी फंड NDRF के तहत मुख्तस रकम में तकरीबन 3 गुना का इजाफा हुआ है। भारत और रूस ने कल सिविलियन मुसाफिर तैयारों की मुश्तरका तैयारी और भारतीय ऑपरेटर्स को इलाकाई परवाजों के लिए 105 टर्बो प्रॉप तैयारों की मुमकिन फराहमी और उससे मुतालिक इंतजाम पर बातचीत की। शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में सनअत और तजारत के रूस के वजीर एंटोन अलीखानोव के साथ मुल्क में इलाकाई फदाई राबते की बढ़ती हुई जरूरत को पूरा करने के लिए सिविलियन मुसाफिर तैयारों की मुश्तरक तैयारी के सिलसिले में तबादले ख्याल किया। आर्मी पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने जनूबी कोरिया के चैंगोन में पहले दिन एक सोने का, दो चांदी का और एक कांस्य का तमगा जीता है। मुना अग्रवाल, अरुणी लखेरा और मिली शाह पर मुश्तमिल भारतीय खवातीन टीम ने सोने का तमगा जीता। अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत मोना अग्रवाल साल 2028 के लॉस एंजलिस पैरालंपिक गेमों में जगह बनाने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बन गई हैं। खवातीन के जूनियर हॉकी एशिया कप में भारत आज चीन के मोकी में पाकिस्तान को 19-0 से जबरदस्त शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारत ने शुरुआत से ही अपना दबदबा बरकरार रखा और इस टूर्नामेंट में बड़ी जीत दर्ज की। भारत ने 19 गोल किए, उसे 18 पेनाल्टी कार्नर और एक पेनाल्टी स्ट्रोक मिला, जबकि पाकिस्तान एक भी गोल नहीं कर सका। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक महफूज और पायदार खलाई शोबे की हिमायत करता है। उन्होंने वर्चुअल तौर पर पेरिस में मुनाकिदा पहले बैन अल-अक़वामी खलाई समिट से खिताब किया। नई दिल्ली इस हफ्ते के आखिर में होने वाली 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में आलमी रहनुमाओं की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग के आज भारत पहुंचने की तवक्को है। वज़ीर दाखला अमित शाह ने कुदरती आफात से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कोई भी हलाकत न हो के नजरिए के तहत आबोहवा की तब्दीलियों का मुकाबला करने वाले मजबूत गांव और शहर बनाने पर जोर दिया। भारत और रूस ने सिविलियन मुसाफिर तैयारों की मुश्तरक तैयारी और भारतीय ऑपरेटर्स को 105 इलाकाई टर्बो प्रॉप तैयारों की मुमकिन फराहमी के सिलसिले में पेशरफ की है। जनूबी कोरिया में जारी आलमी पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने शानदार आगाज करते हुए 4 तमगे हासिल किए, जिनमें सोने का एक तमगा शामिल है। और खवातीन के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत रिकॉर्ड 0 के मुकाबले 19 गोल की जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसी के साथ आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTV रेडियो पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। क्लासिकी मौसीकी मेले जब सुनिए गुलाम दस्तगीर खान का सितार पर बजाय राग गोपिका बसंत और राग भैरवी में एक धुन।

0: खेलों में जगह बनाने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बन गई हैं। खवातीन के जूनियर हॉकी एशिया कप में भारत आज चीन के मोकी में पाकिस्तान को 19-0 से जबरदस्त शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारत ने शुरुआत से ही अपना दबदबा बरकरार रखा और इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक महफूज और पायदार खलाई शोबे की हिमायत करता है। उन्होंने वर्चुअल तौर पर पेरिस में मुनाकिदा पहले बैन-उल-अक़वामी खलाई समिट से खिताब किया। नई दिल्ली इस हफ्ते के आखिर में होने वाली 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में आलमी रहनुमाओं की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग के आज भारत पहुंचने की तवक्को है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कुदरती आफात से निमटने की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कोई भी हलाकत न हो के नजरिए के तहत आबोहवा की तब्दीलियों का मुकाबला करने वाले मजबूत गांव और शहर बनाने पर जोर दिया। भारत और रूस ने सिविलियन मुसाफिर तैयारों की मुश्तरक तैयारी और भारतीय ऑपरेटर्स को 105 इलाकाई टर्बोप्रॉप तैयारों की मुमकिन फराहमी के सिलसिले में पेशरफ्त की है। जनूबी कोरिया में जारी आलमी पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने शानदार आगाज करते हुए 4 तमगे हासिल किए, जिनमें सोने का एक तमगा शामिल है। और खवातीन के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत रिकॉर्ड 0 के मुकाबले 19 गोल की जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रेडरिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब का एक बजा चाहता है हमारी तीसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। सुबह 9:30 पर आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे पहली मजलिस की नशरियात के साथ। उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाववाद के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
3: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
2: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। कल से शुरू हो रहे 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात यूएई सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही

केंद्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपद अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद मिलने वाली 60 दिन तक की राहत अवधि समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है। मौजूदा नियम के तहत नौकरी जाने के बाद कर्मचारी को नया नियोक्ता तलाशने या इमिग्रेशन का दूसरा विकल्प अपनाने के लिए 60 दिन तक अमेरिका में रहने की अनुमति होती है। गृह सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलने पर यह सुविधा खत्म हो सकती है। महाराष्ट्र में नांदेड़ भोकर मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सीताखंडी घाट के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक टाटा मैजिक यात्री वाहन को टक्कर मार दी। टाटा मैजिक नांदेड़ से भोकर जा रही थी। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। दुबई में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 149 रन बनाए। शैफाली वर्मा ने 40 गेंदों पर 64 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। ये मुकाबला आज रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को फाइनल में भारत से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम अपनी दोस्त सरिता के साथ। लीजिए सुनिए अगला गीत फिल्म तुम बिन से। आवाजें चित्रा की है और संगीत दिया है निखिल विनय ने।

दोस्तों, गीत सुनेरे कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पहले हम एक संदेश ले लेते हैं। भेजने वाले हैं छोटे अंसारी और आलम अंसारी। कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म मासूम से। आवाजें हैं अनूप घोषाल की, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और गीतकार हैं गुलजार।

दोस्तों गीत सुनहरे कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अब अगला गीत। गीत से पहले इस गीत की फरमाइश की है समता सिंह ने द्वारका से, तो फिल्म ब्लैकमेल का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत से गीत को। और इसी तरह से आप जुड़ी रहिए हमारे साथ अपने ईमेल्स के जरिए। हमारा मेल आईडी है iprediodelhi@gmail.com। जी हाँ, iprediodelhi@gmail.com ये वो माध्यम है जिसके जरिए आप अपने दिल की बात हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल ये खूबसूरत सा म्यूजिकल ट्रैक आपके लिए।

लीजिए सुनिए अगला गीत फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से। आवाज है लता मंगेशकर और मुकेश की। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

दोस्तों गीत सुनहरे कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लीजिए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है अपनापन। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: गीत सुनहरे कार्यक्रम में लीजिए पेशकश अगले अंतिम गीत की है। फिल्म का नाम है अराउंड द वर्ल्ड, आवाजें मुकेश और शारदा सिन्हा की हैं, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और गीतकार हैं हसरत जयपुरी।
1: चले जाना
0: दोस्तों, इसी गीत के साथ अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए AI Live News 24x7 चैनल के साथ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत सुनहरे कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का AI लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 2 बजने को है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
1: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। शनिवार से शुरू हो रहे 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात UAE सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान शामिल होंगे। ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में ब्राजील के विदेश मंत्री का स्वागत किया। मंत्रालय ने कहा है कि भारत और ब्राजील के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और दोनों देश ग्लोबल साउथ के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेंगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड

जनपद अशोका रोड, मलखंबा रोड, नीति मार्ग, पंशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और रूस के बीच आर्थिक और औद्योगिक साझेदारी को तेज करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर और निवेश को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलीखानोव के साथ इनोप्रोम इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही। नौसेना का पोत आईएनएस मैसूर मलेशिया के लुमुट पहुंच गया है। पोत भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच चौथे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में शामिल होगा। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र दोनों स्तरों पर पेशेवर गतिविधियां होंगी। इनमें एक दूसरे के पोतों का दौरा, संचालन संबंधी गतिविधियां और खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जी, खड़े खड़े क्या देख रहे हैं?
1: कमाल, उस चांद को घंटों देखता रहा, उसने एक बार भी नहीं टोका।
0: तो चांद को ही देखिए ना।
1: मगर वो सांस नहीं लेता।

0: श्रोता, इसी गीत के साथ है गीत बहार नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अपने दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। जुड़े रहिए एआई लाइव न्यूज 24x7 के साथ। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाववाद के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
1: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। शनिवार से शुरू हो रहे 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात यूएई सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया है। IMF के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ी है, जो उम्मीद से बेहतर है। IMF के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि भारत के बेहतर आर्थिक प्रदर्शन में सेवा क्षेत्र और निर्यात का प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि ऐसे समय में हासिल हुई है जब अर्थव्यवस्था को ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा। नौसेना का पोत IMS मैसूर मलेशिया के लुमुट पहुंच गया।

श्रोताओं, गजलों की दुनिया में पंकज उदास साहब का भी बहुत नाम है। उन्होंने गजलों की दुनिया में एक अलग ही मुकाम बनाया था। आइए सुनते हैं उनकी प्यारी सी आवाज में ये प्यारी सी गजल।

0: श्रोताओं, अगली गजल आइए सुनते हैं भूपेन हजारिका साहब की आवाज में।
1: भूपेन दा का परिचय कराना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इस एक शख्सियत में, इस एक पर्सनैलिटी में बहुत सी शख्सियतें। वो संगीतकार भी हैं, गायक भी हैं और शायर भी हैं। ये सारे गीत जिनका मैं हिंदी में परिचय कराने की कोशिश कर रहा हूं, ओरिजिनली उन्होंने असमिया भाषा में लिखे थे। इनके बंगला अनुवाद भी वो गा चुके हैं और अब ये हिंदी अनुवाद मैं पेश कर रहा हूं। भूपेंद्रा के गीत निजी कम हैं और आवाम के ज्यादा हैं, लोगों के ज्यादा हैं। उनकी धुनों में वहां के लोक गीतों की खुशबू बसी हुई है, इसलिए इनका अनुवाद और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने कोशिश की है कि जबान और अल्फाज का मुहावरा ज्यादा से ज्यादा उनके ओरिजिनल एक्सप्रेशन के पास पास रहे, क्योंकि ये ना हुआ तो ये गीत आसाम के बजाय किसी और इलाके के महसूस होंगे, जैसे पहाड़ी चढ़ते हुए पालकी उठाने वालों की हैयाना में वहां के मजदूर की फूली हुई सांस भी सुनाई देती है और इस शायर के सीने में उठती हुई टीस भी।

0: श्रोताओं, अगली गजल भी आइए सुनते हैं भूपेन हजारिका साहब की ही आवाज में।
1: वह शायर जिसका नाम भूपेन हजारिका है, कितनी आसानी से आवाम के दिलों की आहट सुन लेता है। ये रात जो लोगों के दर्द की रात है, आवाम के गम की रात है, जब उसके सीने में गूंजती है तो वो तलाश करने लगता है यह आवाज कहां से आ रही है, इंकलाब किस रास्ते से आ रहा है और दर्द किस रास्ते से आगे बढ़ रहा है। वो कान लगाए सुन रहा है और वक्त से पूछ रहा है कि किसकी सदा है।

श्रोताओं, इसी के साथ गजलों और गीतों के कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये अंतिम गजल भूपेंद्र साहब की आवाज में।

0: आप सुन रहे हैं
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर।
0: अभी 4 बजे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं EIR लाइव न्यूज 24/7। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 4:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 सितंबर सन 2026। सुबह के 4:54 हुए हैं, हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में ठीक सुबह 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। सुबह 5:10 का समय होगा कार्यक्रम आओ योग करे का। आओ योग करे कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग गोमुखासन। 5:20 पर समय होगा देशभक्ति गीतों का। सुबह 5:30 पर आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय कार्यक्रम का हिंदुस्तानी शास्त्रीय कार्यक्रम स्वररंजनी। सुबह ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सुबह 6:10 का समय होगा कार्यक्रम भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। 6:40 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चिंतन और 6:45 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस। रामचरितमानस में आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 45। सुबह 6:55 पर आप सुन सकते हैं संस्कृत में समाचार। सुबह 7 बजे समय होगा हिंदी समाचारों का और 7:05 पर आप अंग्रेजी समाचार सुनेंगे। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत का। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों भरी। 8 बजे समय होगा हिंदी समाचार प्रभातों समाचार प्रभात का। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार और 8:30 पर आप उर्दू समाचार सुन सकते हैं। सुबह 8:45 पर समय होगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा का और 9:15 पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा। सुबह 9

कर 30 मिनट का समय होगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का, और सुबह 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।

अमृत छाट बिखै देख खाई माया मोह परम पुले सत धारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुने हो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरनाई सुख तल गुरु सेवियन सहज दर्शन प्रसाद गुरु का जन्म मरण दुख हो सिफत खसामी नूर अरसों कुरसों तब दिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजन सच्चा पातशाह सिर सांद जिस पास बैठिया सोहिया सब नांद सजन सच्चा पातशाह सिर सांद जिस पास बैठिया सोहिया सब नांद सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी कनासरी हर हर हर और तारी

में सत में अच्छे साथ रहे, सबको सत सुनावे, रिग कहे रहे भरपूर, राम नाम देवा महसूर, नाय लय प्राप्त जाहे, नानक तो मुखम त्रपाहे। दुज में जोर शली चंद्रावर कान कृष्ण जादम भया, पार जात गोपी ले आया,

कपड़े पहरे तुरक पठानी अमल किया सदाए पाओ नानक मुख अंतर पाए पौड़ी सतगुरु तुम आ रहा।

अनहद पूरे बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फातह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती स्मृत गुरु नानक लंते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंदनो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरे कर नौ निदया वैताय सब थाई हुई सहाय दसवीं पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुई सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जापिया तपिया जिना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अण डिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान तर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघनिया ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आर्या नाल चिराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नाही हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निवाही ਪਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ।